ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के बैसाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2000

2026 सुबह के 5:13, माफ कीजिएगा, 5:53 और 13 सेकंड्स हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:05 पर होगा कार्यक्रम सुप्रभात, साथ रहेंगे मुनीश जौली। 7:05 से लेकर 9 बजे तक आपके लिए रहेगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, जिसमें साथ होंगे सोनू भट्ट और मुनीश जौली एक बार फिर से, जिसमें आप जानकारी ले सकते हैं अपने आसपास के वातावरण के बारे में जो कि है दिल्ली और NCR। और इसके ठीक बाद 9 बजे दिल के तराने गाने नए पुराने में लीजिएगा आनंद कुछ खूबसूरत गीतों का।

पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम आपके लेकर आपके साथ होंगी शालिका कपूर मैचलेस म्यूजिक आर में 10:05 पर, और 11:05 का वक्त रहेगा बॉलीवुड ट्रेल्स का, साथ रहेंगी रश्मि गुप्ता। और 1:05 पर आप ले सकते हैं जानकारी कुछ लीगल सॉल्यूशंस के बारे में जो कि जुड़े हुए हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के साथ, साथ रहेंगी रश्मि गुप्ता एक बार फिर, और एक्सपर्ट होंगे सैयद रेहान साहब।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: 6 बजने को है, अब से कुछ ही पल में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और हम यहां दिल्ली में बैठे हुए स्टूडियो से आपसे कह रहे हैं सुप्रभात।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप, आकाशवाणी एफएम रेनबो है हम। हम अकेले नहीं है ना, क्योंकि हम अकेला होता ही नहीं है। हम बनती हैं वो पांच उंगलियां एक साथ। मैं नहीं, हम हैं। उस हम में आप हैं और बहुत सारे आप हैं, और मैं भी हूं। हमारा ये परिवार भी है, इस परिवार के साथ आपका परिवार भी है। इतने सारे लोगों का मिलन, वो जोड़ साधारण नहीं है। रेडियो की तरंगे यहां दिल्ली के इस स्टूडियो से निकलकर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है ना, दिल्ली के आसपास के इलाके, देश भर का वो हर कोना जहां आकाशवाणी की ये तरंगे पहुंच रही हैं। प्यार इतना कि हम अपनी सरहदों पर भी अपने फौजी भाइयों के साथ हैं। सरहद के पार भी विश्व के हर कोने में हम आप तक पहुंच रहे हैं, है ना। भारत की सुबह का नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। न्यूज ऑन AIR इस ऐप के माध्यम से आप हमें जहां कहीं भी सुन रहे हैं। भारत की सूरज की पहली किरण का

आज सुप्रभात में हम फिर उस आधुनिक गुरु के पास चलेंगे जिनके पास आधुनिक काल के वो शिष्य आते हैं जो बहुत संस्कारी हैं, वो लोग जो अपने गुरु से ये जानना चाहते हैं कि जीवन की किस दिशा में जाना मान्य होगा, सरल नहीं कठिन रास्ते, फूलों के नहीं कांटों के पथ, जिस पे चल के वो उस पथ को स्वीकार करें और आधुनिक काल की भाषा में जिसे सक्सेस कहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज आधुनिक काल के इस गुरु के पास उनकी एक शिष्या है जिसका नाम है सिद्धि। सिद्धि ये जानना चाहती हैं कि आधुनिक काल में भी लोग भगवान के प्रति इतना कैसे जुड़े हैं और भगवान की भक्ति का मान क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। आधुनिक काल के गुरु हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराते हुए सिद्धि को अपने ही अंदाज में उसके सवालों का उत्तर देते हैं। आधुनिक काल के गुरु सिद्धि की तरफ देखते हैं जो हमेशा मुस्कुराती रहती है। सिद्धि की तरफ देखकर वो कहते हैं, तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं कहानी सुनाकर दूं। सिद्धि एक बहुत ही अच्छी लड़की है जिसकी आवाज बहुत सुरीली है। जितनी सुरीली आवाज उतना ही मुख में वो तेज, वो मुस्कुराहट, दुखों को पीड़ाओं को आगे छोड़कर सिद्धि अपनी राह पे चल रही है। सिद्धि एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अपना योगदान दे रही है और जब वो अपने गुरु से पूछती हैं कि गुरुजी आज के इस युग में भगवान की भक्ति का अर्थ क्या होता है, तो आधुनिक काल के गुरु ने सिद्धि को एक कहानी सुनाई और उस कहानी के जरिए आधुनिक काल के गुरु जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं वो कहते हैं, देखो एक लड़की की कहानी सुनाता हूं। एक लड़की ने एक संत जी के पास जाने का फैसला किया क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार थे और वो अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते थे। इसलिए उन संत जी के पास, जिनकी बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि उनमें प्रभु का आभार है, प्रभु की शक्ति है, ये लड़की उस संत से मिलने गई और अपने पिता का हाल बताया और पूछा कि क्या आप मेरे पिता से मिलने आ सकते हैं जो पलंग से उठ भी नहीं सकते। संत जी ने कहा, बेटी मैं जरूर आऊंगा। जब संत जी उनसे मिलने आए तो देखा कि एक बीमार और लाचार आदमी पलंग पर दो तकियों पर सिर रख कर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। एक खाली कुर्सी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वो वृद्ध व्यक्ति बोला, संत जी अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी संत जी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बीमार व्यक्ति बोला कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज

मैंने आज तक भी किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। दरअसल अपनी पूरी जिंदगी में मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं हर रोज मंदिर जाता जरूर था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया और उसने मुझे बताया। उस दोस्त ने क्या बताया उस वृद्ध व्यक्ति को, ये जानेंगे हम थोड़ी देर में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप, और हम यहां आपसे उस आधुनिक काल के गुरु के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी एक शिष्या है सिद्धि, जिन्होंने उनसे सवाल किया कि आज के इस आधुनिक दौर में भी भक्ति का मान कैसे रखा जाए और भक्ति का अर्थ क्या होता है। आधुनिक काल के गुरु ने हमेशा की तरह एक कहानी का उदाहरण देकर सिद्धि का जवाब देने की कोशिश की। कहानी अभी उस मध्य स्तर पर ही है और कहानी शुरू होते ही आधुनिक काल के गुरु ने बताया कि किस तरीके से एक लड़की एक संत जी के पास जाती है। वो संत से गुजारिश करती हैं कि उसके पिता बीमार हैं, पलंग से उठ नहीं सकते, तो क्या वो उन्हें देखने आ सकते हैं, शायद उनके पिता की तबीयत ठीक हो जाए। संत जी इस बात से राजी हो जाते हैं और घर जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि उनके वृद्ध पिता लेटे हुए हैं बिस्तर पर, लेकिन सामने खाली कुर्सी है। उस खाली कुर्सी होने का अर्थ वो पूछते हैं। इस पर उस लड़की के वृद्ध पिता जो बीमार हैं वो कहते हैं कि आप इस कमरे का दरवाजा बंद कर दें, और फिर वो कहते हैं कि ये खाली कुर्सी इसलिए है क्योंकि लगभग 4 साल पहले उनका एक दोस्त उनसे मिला और उसने बताया। अब आगे सुनते हैं कि उस वृद्ध व्यक्ति के दोस्त ने उनसे क्या कहा। लड़की के पिता जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, उन्होंने कहा, संत जी मैं हर रोज मंदिर जाता जरूर था लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग चार साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रख

ये विश्वास कर कि भगवान खुद उस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं, उसी कुर्सी पर जो खाली थी। हर रोज ये विश्वास रख कि भगवान तेरे सामने है। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू कर जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। वृद्ध व्यक्ति ने आगे बताया, संत साहब, जब मैंने ऐसा ही करके देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं हर रोज दो दो घंटे तक ऐसी ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का खास ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो मुझे देख लेती तो लगता कि मैं शायद पागल हो गया हूं। इसलिए मैंने खास ध्यान रखा कि मेरी बेटी मुझे बिल्कुल ना देखे ऐसा करते हुए। ये सुनकर संत जी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। प्रेम और भाव से आंसू बस छलकने ही वाले थे कि संत जी ने कुछ साहस जुटाकर उस लड़की के वृद्ध पिता से कहा, आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन प्रभु अपने भक्तों को, हमसे बहुत बड़े भक्तों को किसी ना किसी रूप में हमसे मिलवा ही देते हैं। आप बहुत ऊंची भक्ति कर रहे हैं। फिर उस वृद्ध बीमार व्यक्ति के सर पर संत जी ने हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को आप जारी रखें। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन के बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बहुत खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बेटी ने बताया संत जी कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे, हां खुद अपने बिस्तर पर बैठकर इस मुद्रा पर थे, जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा ही हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? संत जी उस युवती से कहते हैं, शायद उन्हें परमात्मा दिख गया हो। सामने इस वो बेटी रोते हुए संत जी की आज्ञा लेकर उस आश्रम से जाती है और यह एहसास लेकर कि इस जिंदगी में कितना कुछ अच्छा है जो दिखता नहीं। आपके पास, मेरे पास, हमारे पास। संत जी उस दिन फूट फूट कर रोए और परमात्मा के आगे फरियाद करने लगे कि हे प्रभु, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। आप मुझ पर ऐसी ही कृपा करना। संत जी आंसुओं के बीच में खुश भी बहुत थे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी कोई
सच्चा भक्त है जिसे आप शायद देख नहीं पा रहे, उसे पहचानिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सुप्रभात, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर और भारत की सरहदों के पार, फिजी के आइलैंड्स हों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के देश, हम जानते हैं कि आप हमें न्यूज ऑन AIR के माध्यम से सुन पा रहे हैं। भारत की सुबह का नमस्कार स्वीकार करें।

तो आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जहां आधुनिक काल के गुरु ने अपनी शिष्या सिद्धि से बताया कि भक्ति का महत्व क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, कि आज के इस आधुनिक काल में भी लोगों को उम्र के उस पड़ाव पर जाना ही है, ये सत्य जितनी जल्दी पता लग जाए उतना अच्छा है, और धन्य है वो लोग जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपनी माता पिता की चिंता कर रहे हैं। सुप्रभात, सुन रहे हैं आप। जानते हैं आधुनिक काल के गुरु ने अपनी शिष्या सिद्धि की मुस्कान देखने के लिए फिर आगे क्या कहा? उन्होंने सिद्धि से कहा, सिद्धि एक और कहानी सुनना चाहोगी? सिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, हां गुरुजी।

जी ये क्या बात हुई, कहानी मिलती भी है और नहीं भी मिलती। तो आधुनिक काल के गुरु ने कहा, ठीक है सुनो, एक बार एक व्यक्ति अपने आप को कोसता रहता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं सफल नहीं बन पा रहा, मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। और बार बार वो देवी मां को बोलता कि देवी मां आप कुछ मेरे लिए कीजिए। देवी मां जानती थी कि ये बच्चा मेरा है और इसके जीवन में इसके सफर की जिम्मेदारी मैंने ली है, लेकिन फिर भी ये निराश क्यों है, मेरे प्रति विश्वास नहीं है इसे। इसलिए मां ने सोचा कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए और इसको जीवन का एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया जाए। बार बार ये कहना कि मैं सफल नहीं हो पा रहा, मैं सफल नहीं हो पा रहा, दरअसल वो इंसान बहुत और बेहद ही लेजी जिसे कहते हैं ना, वो था ना, कुछ खुद प्रयास करना, लोगों से अपेक्षाएं करना और कोसते रहना कि मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए देवी ने एक भेष बदला और उस व्यक्ति के सामने से गुजरने लगी। दरअसल ये देवी थी मृत्यु की देवी, और आकर उस व्यक्ति से पूछा, तुम इतना उदास क्यों हो? उस व्यक्ति ने पूरा हाल बताया कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मैं जिंदगी में सफल नहीं बन रहा, आप कौन है? देवी ने बोला, मैं मृत्यु की देवी हूं, क्यों ना मैं तुम्हें एक वरदान दूं जिससे तुम सफल बन जाओ। वो व्यक्ति खुश हो गया, बोला, हां मां क्यों नहीं। तो मृत्यु की देवी ने उसे वरदान दिया कि तुम बेहद सफल वैद्य बनोगे, लेकिन सबका इलाज मत करना, जो भी बीमार होगा उसके पास जाकर आंख बंद कर लेना, ठीक है? वो व्यक्ति बोला, जी मां आगे बताएं। मृत्यु की देवी ने कहा कि तुम्हें अगर मैं मरीज के पैर की तरफ खड़ी देखूं तो समझ जाना कि यह ठीक हो जाएगा, अगर मैं उसके सिर की ओर देखूं तो जान लेना कि कुछ ही दिनों में मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, ऐसे मरीज का इलाज करने से बिल्कुल मना कर देना। उस नौजवान ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, वैद्य बन गए, और जब जब वो आंखें बंद करके किसी बीमार व्यक्ति के पास खड़ा होता और जिस दिशा में भी मृत्यु की देवी को देखता, वो उसी हिसाब से उसके परिवार को बता देता। जब नौजवान ने ऐसा करना शुरू किया तो दूर दूर तक एक सफल वैद्य के रूप में उसकी कीर्ति फैल गई, वो जिस मरीज को हाथ लगाता वो ठीक हो जाता, वो सफल और धनवान बन गया। लेकिन एक रोज उसी राज्य की राजकुमारी बीमार पड़ गई और राजा ने घोषणा करवाई कि जो इसका इलाज कर देगा मैं इस राजकुमारी की शादी उसी से करवाऊंगा। जगह जगह से वैद्य बुलाए गए, लेकिन सबने हाथ जोड़ दिए कि इलाज नहीं हो सकता। नौजवान वहां पहुंचा, उसे पहली ही नजर में राजकुमारी से प्रेम हो गया, लेकिन उसने देखा कि मृत्यु की देवी उसकी सिर की ओर खड़ी है। वो कुछ देर तक सोचता रहा, वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को खोना नहीं चाहता था। उसने चार नौकर बुलाए और बिजली की तेजी से पलंग की दिशा बदल दी। अब मृत्यु की देवी राजकुमारी के पैरों की ओर खड़ी थी। उस नौजवान ने इस चतुराई से वो दिशा तो बदल दी, लेकिन मृत्यु की देवी बहुत क्रोधित हुई और पैर पटक कर वहां से चली गई। राजकुमारी ठीक हो गई, लेकिन उसी रात से उस नौजवान को सपने आने लगे कि मृत्यु की देवी उसके सिरहाने खड़ी है। वो पूरी रात सिरहाने को
बदलता रहा।

करवटें लेता रहा, लेकिन देवी हर बार उसके सिर की ओर ही रहती। इससे वो इतना आतंकित रहने लगा कि कुछ ही रातों बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसके बाद हर रोज वो अपने आप को ठेस पहुंचाने की कोशिशें करता, लेकिन हर बार बच जाता। कुछ लोगों का मानना था कि वो अभी भी परेशान है, कहीं जंगल में भटकता है, नई नई तरकीबें अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब मृत्यु नाराज होती है तो जीवन ऐसा ही हो जाता है। आधुनिक काल के गुरु ने अपनी शिष्या सिद्धि को बोला, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे उठा लो, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जीवन के हर मोड़ में, हर सांस में परमात्मा ने उसके लिए कोई ना कोई काम बचा के रखा है। इसलिए अपने आप को कोसना छोड़ो और विश्वास रखो कि परमात्मा हैं, अगर आलस भी दे रहे हैं तो सामर्थ्य भी देंगे एक दिन। जय माता दी।

0: तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, से कुछ ही देर में हिंदी में समाचार होंगे और उसके बाद 7:05 से सोनू भट्ट आपके साथ होंगी गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में। इस प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा जब 8 मैं आपके बीच आऊंगा गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर की दूसरी कड़ी लेकर। सुबह के 9 सोनू भट्ट के साथ आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 हिंदी में समाचार होंगे। दस बजे के समाचारों के बाद वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा मैचलेस म्यूजिक आवर, जिसे पेश करेंगी शालिका कपूर। 11 हिंदी में समाचार और उसके बाद बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर आएंगी रश्मि गुप्ता। 12 हिंदी में समाचार होंगे, फिर वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल शालिका कपूर के साथ आप सुन सकते हैं। 1 हिंदी में समाचार और उसके बाद रश्मि गुप्ता लेकर आएंगी रेनबो हेल्पलाइन। टॉपिक है लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। एक्सपर्ट हैं सैयद रेहान, जो एक एडवोकेट हैं। 2:00 संतोष राव प्रोग्राम लेकर आएंगे आशियाना। उसके बाद आप सुन सकते हैं रेडियो डॉक्टर, जो एक फोन इन प्रोग्राम है और आज स्पेशल है वर्ल्ड आईबीएस डे पर। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कुणाल दास सीनियर गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट। शाम के 4 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद अल्फा जैन संतोष राव के साथ। 5 शाम को हिंदी में समाचारों के बाद सिटी लाइट्स लेकर आएंगी सुषमा शर्मा। 6 हिंदी में समाचारों के बाद मैसेज मसाला मिक्स लेकर आएंगी सीमा सती। 7 हिंदी में समाचार और उसके बाद लिपिका दास लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट। 8 से लेकर 9 रात्रि को म्यूजिक मस्ती ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सीमा सती के साथ। रात्रि के 9 से लेकर 10 तक वीर दमन सिंह लेकर आएंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही। रात्रि के 10 हिंदी में समाचार होंगे और उसके बाद 11 तक वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा म्यूजिक मिक्स, जिसे लेकर आएंगी लिपिका दास। रात्रि के 11 हिंदी में समाचार और उसके बाद रंगे महफिल, ये प्रोग्राम लेकर आएंगे वीर दमन सिंह।

90 साल का साथ आप सभी के साथ, आपको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। अब से कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के

अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और सलाम के साथ ही आ गई हूँ मैं सोनू भर। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग में और 19 मई 2026 के इस खूबसूरत से दिन की खूबसूरत से सुबह में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो 5:29 पर सूर्योदय के साथ ही एक नए दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है और बाहर का तापमान जो इस समय है वो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और गर्मी आज बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। धूप बिल्कुल पूरे उस पर अपने जोश के साथ चमकने वाली है और 44 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर। यही संभावना है आज के पूरे दिन की। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि बदलते हुए मौसम में अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये जो मौसम में बदलाव है और गर्मी में बिल्कुल ये जो चढ़ाव आया है उसके चलते आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, आपको अपने आप को सिक्योर रखना है, आपको धूल और मिट्टी वाली जगहों पर अगर आप का जाना आना होता है तो आप मास्क पहन के ज़रूर निकलिए ताकि आप जो कोल्ड एंड कफ है उससे भी बच सकें और अदर बैक्टीरिया से भी बच सकें। स्कार्फ को आप कैरी कर सकते हैं अपने आप को कवर करने के लिए, अपने अपने हेड को और अपने फेस को आप अम्ब्रेला ले सकते हैं और साथ ही साथ आप पानी की बॉटल या फिर जो भी आपको लगता है कि जो चीज़ आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है वो उसको आप लेकर चल सकते हैं साथ में। उस ड्रिंक को पीने से क्या होगा कि आप हाइड्रेट रहेंगे और हाइड्रेट रहना इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि गर्मी बिल्कुल अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है। 44 डिग्री बहुत टेम्परेचर होता है। ध्यान रखिए अपना और सुनते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो दिल्ली एनसीआर में 102.6 MHz पर, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के जरिए भी आप हमें सुन रहे हैं और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप वेव्स पर भी हम पहुँच रहे हैं दिल से दिल तक।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। श्रोताओं, आज बात होगी राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की ऐतिहासिक शुरुआत के बारे में। 20 जुलाई 1952 को ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक का प्रसारण शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करना और उसे आम जनमानस तक पहुँचाना था। लगभग 90 मिनट के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों का अद्भुत संगम पेश किया जाता था। अक्टूबर 1952 में दिल्ली में नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर ने किया। बाद में प्रख्यात कर्नाटक वायलिन वादक टीके जयराम अय्यर भी इस ऑर्केस्ट्रा से दूसरे संचालक के रूप में जुड़े। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी

0: किसी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

के और सुनिधि की आवाज़ में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी खट्टा मीठा. और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर. और अब टाइम हो गया है आपको ये बताने का कि ये जो दिन है बेहद खूबसूरत सा शुरू हुआ है और उम्मीद है कि गुजरेगा, लेकिन इतिहास में क्या मायने रखता है, इतिहास में क्या कुछ दर्ज हुआ आज के दिन के नाम, ताकि आपकी और हमारी जानकारी में इजाफा हो सके. तो इतिहास में बहुत सी घटनाएं छुपी होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं, बहुत कुछ बताती भी हैं. तो 19 मई को भी देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी कुछ हुआ. तो सिलसिला मैं शुरू कर रही हूँ 1743 से, जब तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंटीग्रेड पैमाने के विकास की दिशा में एक अहम कदम दर्ज हुआ. आज का दिन था 19 मई. फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन पेयर क्रिस्टीन ने 19 मई 1743 को सेंटीग्रेड तापमान पैमाने को विकसित करने का काम किया. इस प्रणाली ने तापमान मापने के तरीके को और भी ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया और उसको एक वैज्ञानिक आधार भी प्रदान किया. और उसी हिसाब से हम आज भी तापमान को मापते हैं. एक मानक हमको वहां से मिला जिसको फॉलो किया जाता है. अब आते हैं हम 1936 में, जब ब्रिटेन के आविष्कारक रॉबर्ट डेटसन वॉट ने एक रडार बनाया. और ये जो प्रणाली थी वो आज ही के दिन सबसे पहले ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर स्थापित की गई थी. अब बात होगी INS वीरबाहु की, जो कि भारतीय नौसेना का एक प्रमुख पनडुब्बी अड्डा है. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है और पूर्वी नौसेना कमान के अधीन ये काम करता है. 19 मई 1971 को, यानी कि 1971 को कमीशन किया गया और ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा का परिचालन और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने वाला प्रमुख केंद्र बना. इसे होम ऑफ द डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है. और अब हम बात करेंगे 1904 की, जब टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा ने इस दुनिया से विदा ली. आज का दिन था, आज इनकी पुण्यतिथि है. इनका जन्म हुआ था 3 मार्च को 1839 गुजरात में. भारत के विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक रहे और भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता. बहुत ही अमूल्य और महत्वपूर्ण इनका योगदान माना गया. भारतीय उद्योग के जनक भी इन्हें कहा गया और आज हम इन्हें याद कर रहे हैं. और इसी तरह से हम याद करते हैं विजय तेंदुलकर साहब को, जो कि 19 मई 2008 को इस दुनिया से विदा ले चुके, लेकिन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय नाटककारों और पटकथा लेखकों में से एक रहे. महज 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी और 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नाटक लिखा. थिएटर और पत्रकारिता के एक बहुत ही मजबूत ये स्तंभ रहे

और मराठी पत्रकारिता से करियर की शुरुआत की और बाद में रंगायन नाम से जो इनका थिएटर समूह था उसके जरिए बहुत से नए नए प्रयोग किए इन्होंने और उन प्रयोगों के माध्यम से अपने नाटकों के अपने लेखनी के माध्यम से नई ऊंचाई पर इन्होंने पहुंचाया मराठी भाषा के साहित्य को और भारतीय रंगमंच को। इनको भी याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम में जो कि है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली एनसीआर में और भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए। ये आपका मॉर्निंग मैगजीन शो है जिसमें बहुत कुछ होता है आपके साथ बांटने के लिए। चलिए इस गाने के बाद फिर बात करेंगे एक ऐसी महान हस्ती की।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो। मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट, और अब बात करने जा रहे हैं हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की, जिनका जन्म तो हुआ 19 अगस्त 1907 को, लेकिन आज ही के दिन यानी कि 19 मई को उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। साल था 1979। हिंदी के महान साहित्यकारों में से एक रहे, उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता रहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका व्यक्तित्व बहुत ही गरिमामयी था और इनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही उदारवादी था। द्विवेदी जी की जब हम रचनाओं की बात करते हैं तो उनकी रचनाओं पर उनका उनके जो व्यक्तित्व है उसकी छाप आसानी से देखी जा सकती है। अनेक भाषाओं के वो ज्ञानी थे। उनकी उनको हिंदी के अलावा संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, पाली, प्राकृत, अभ्रज भाषाओं की बहुत ही समझ थी और उनमें वो ज्ञानी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब हम बात करें तो उनकी रचनाएं कबीर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही, और ये जो रचना है महान संत कबीर के कार्य और विचारों पर ही आधारित थी। साहित्य अकादमी अवार्ड से इन्हें 1973 में और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से 1957 में सम्मानित किया गया, साहित्य जगत में इनके योगदान के लिए।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक।

0: लौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: 4 धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का पहला हिस्सा चल रहा है, आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो है और अब आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी की, एक भारतीय राजनीतिज्ञ जिन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इनके जीवन काल के बारे में अगर बताएं तो स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ एक लंबे राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। डॉक्टर रेड्डी छोटी सी उम्र में ही भारत की आज़ादी के लिए कार्य करने के लिए महात्मा गांधी के आह्वान से अत्यंत प्रेरित हुए। 1989 में उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी विदाउट फेयर एंड फेवर, उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनके नाम पर अनेक उपलब्धियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके। वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर रेड्डी संयुक्त आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और दो बार मुख्यमंत्री और बने और एक वो दो बार लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए और एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कई प्रमुख कार्यालय उन्होंने संभाले। बहुत से कामकाजों में उन्होंने अपना योगदान दिया। डॉक्टर रेड्डी हमेशा कहा करते थे कि स्वतंत्र भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के लिए मिलकर काम करना होगा और ये भारतीयों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो सब मिलकर काम करें ताकि हमारा जो ये स्वतंत्र भारत है एक आधुनिक राष्ट्र बन सके। और 1 जून 1996 को उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। हमें उनके इन प्रेरणादायक विचारों को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और देश हित में अपना योगदान देते रहना चाहिए।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेल प्यार पॉसिबल हो या ना हो, इम्पॉसिबल हो या ना हो, देखिए ये तो अपना अपना कॉल है, अपनी अपनी जजमेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होती हैं जो लोग अपने टैलेंट से पॉसिबल करते हैं, लेकिन उसको पॉसिबल करने के लिए भी वो बहुत बहुत मेहनत करते हैं। और उन्हीं में से एक नाम ऐसा ही है जिनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, गिरीश कर्नाड। इनका नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक ये रंगमंच के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता के तौर पर इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। गिरीश कर्नाड सिनेमा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में वो गए वो शीर्ष पर रहे। महाराष्ट्र में जन्मे गिरीश कर्नाड एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली लेखक भी रहे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक जाने माने आर्टिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ एक बहुत ही उम्दा निर्देशक भी वो रहे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को माथेरान महाराष्ट्र में हुआ और उनका पूरा नाम गिरीश रघुनाथ कर्नाड था। उन्होंने स्वतंत्र लेखन की जब उन्होंने शुरुआत की तो उनका जो पहला नाटक उन्होंने लिखा वो था ययाति, 1968 में छपा और ये चर्चा का विषय बन गया। 26 साल की उम्र में ही उन्होंने 1964 में अपना दूसरा नाटक तुगलक लिखा और कन्नड़ साहित्य में गिरीश कर्नाड ने बहुत बड़ा योगदान भी अपना दिया। साहित्य जगत का तो एक नामचीन चेहरा वो बन चुके थे और बतौर लेखक उन्होंने जब फिल्मों में कदम रखा तो 1970 में बतौर स्क्रीन राइटर संस्कारा से इन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद कन्नड़ फिल्म के लिए कर्नाड को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल भी किया था। और टीवी सीरीज के एक बहुत ये जाने माने प्रेजेंटर भी रहे। 19 के दशक में कर्नाड का जो शो आता था वो दूरदर्शन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनके हिस्से आया 1992 का ही, 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1998 में हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जिससे उन्हें नवाजा गया और इसी साल में उन्हें कालिदास सम्मान भी दिया।

0: गया। सिनेमा और साहित्य के योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्मश्री और 1992 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया, और इसके साथ ही साथ उन्हें बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला, और उनकी उनको बेस्ट फीचर फिल्म कदू के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला, और कन्नड़ बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड था 1977 का, वो भी उनके हिस्से ही आया। गिरीश कर्नाड साहब ने इतना कुछ किया अपने जीवन काल में, और वो पॉसिबल करके दिखाया जो उन्होंने सोचा था कि वो करेंगे सिनेमा और साहित्य के लिए। उन्हें याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम में, जो कि है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। सुनते रहिए, आप इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी बातें भी आप हम तक भेज सकते हैं। 9868107070 ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर चलकर आप हम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि इसके साथ ही साथ आप ट्रैफिक की अपडेट भी हम तक पहुंचाइए, अगर आपको लगता है कि कहीं पर ट्रैफिक जो है वो परेशान कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक कहीं पर स्मूथ भी है तो भी देखिए, अच्छी खबरें भी तो पहुंचानी चाहिए, है ना। सुनते रहिए इसी तरह।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं, और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, जहाँ जहाँ आप जाएंगे हमें ही पाएंगे। और अब आपका और मेरा ये जो मुलाकात का सिलसिला था गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के पहले हिस्से का, वो यहीं पर कुछ ही मिनटों में पूरा होने जा रहा है। मुनीश ज्वाली लेकर आएंगे आपके लिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा हिस्सा, तो बने रहिए हमारे साथ। उनके पास बहुत कुछ आपके साथ बांटने के लिए, और आपकी मेरी मुलाकात 9 से 10 के बीच में दिल की तरह गाने नए पुराने में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी आपके लिए रेट्रो फ्लेवर के साथ ही साथ नए जमाने के बहुत ही खूबसूरत से गाने। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरा नाम है मुनीश जाली।

हैदराबाद ने 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया, लेकिन सीएसके का ये आखिरी गेम था अपने होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में, और वहां पे महेंद्र सिंह धोनी ने लिया लैप ऑफ ऑनर। इस लैप ऑफ ऑनर में बहुत इमोशनल फेसेस, इमोशनल मोमेंट्स, थल्ला थल्ला और कमबैक धोनी धोनी धोनी, बहुत सारे चैंट्स सुनाई दिए। ये होता है फीवर स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का। वो लैप ऑफ ऑनर क्यों लिया गया था, क्या धोनी दोबारा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो भी सस्पेंस है।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और जानते हैं कि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज और चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कई क्षेत्रों में तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी जा चुकी है। हम तो दिल्ली में बैठे हैं जी जी, और पिछले 24 घंटों में राजस्थान के बाड़मेर में 45 से ऊपर का तापमान दर्ज किया गया और दिल्ली में भी 43-44 आज रहने का अनुमान है। गर्मी बढ़ रही है लेकिन दिल्ली वालों को गर्मी से जूझना और उससे निपटना आता है।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली। छोटा सा प्रमोशनल और कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में कुछ बातें कुछ गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
6: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर सुन रहे हैं आप। गाड़ी चला रहे हैं तो ये बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है, करीब 90 पैसे प्रति लीटर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण।

0: लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बम्बई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। आज 19 मई है और जानते हैं कि अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो कौन कौन सी फिल्म्स यहां पर रिलीज हुई थी आज ही के डेट में गुजरे जमाने में। आज से अगर लगभग 3 साल पहले जाएं तो कटहल अ जैकफुट मिस्ट्री ये रिलीज हुई थी, और उससे पहले अगर हम थोड़े पन्ने पलटें, क्योंकि जिस फिल्म के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वहीं पर आ रहा हूँ, 2017 में हिंदी मीडियम जहाँ इरफान खान और सबा कमर थे और ये मूवी यहाँ पे रिलीज हुई थी। एंड ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की तो एक कॉमेडी थी, है ना?
1: पिया, she is everything a parent could want, bright, industrious, but most importantly to us, honest and humble. We are very blessed to have Pia as our daughter.

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। और दोस्तों यहाँ पर एक रिसर्च निकली है एंड ऑफ कोर्स उस रिसर्च के बारे में ये बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो मोबाइल फोन्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चों में तेजी से बढ़ रहे मायोपिया के मामलों को देखते हुए ऑल इंडिया ऑप्थोल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने इसके बचाव और प्रबंधन को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। और वो कहते हैं कि छोटे बच्चे दो दो साल के, तीन तीन साल के जब मोबाइल लेके बैठते हैं तो उनको मायूपिया से जूझना पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसके बचाव के लिए स्क्रीन टाइम कम करने के लिए या मोबाइल दूर करने की सलाह दी गई है। ख़ास बात यह है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बच्चों के लिए मोबाइल फोन्स लगभग बैन कर दिए कुछ एज ग्रुप तक, यानी 14 या 16 साल तक। कैसे हो सकता है ये तो बड़ा मुश्किल है, ये सारे सवाल हैं, लेकिन बच्चों को बचाना, उनकी आंखों को बचाना उससे भी बड़ा है, सोचिएगा जरूर।

0: हो गई, अब काम करें।
1: तुम मेरी राखो लाज हरे।
2: हमारे हृदय
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और एक सर्वे हुआ जहां पे ये देखा गया कि साइक्लिस्ट्स कितने हैं दिल्ली के अंदर। वो नहीं जो सैटरडे और संडे इंडिया गेट के आसपास हेलमेट लगा के साइकिलिंग रेसेस करते हैं, वो नहीं, दूसरे जो आम नागरिक हैं वो जब अपने काम के लिए जाते हैं तो द नंबर ऑफ साइक्लिस्ट्स जो दिल्ली में है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। और सर्वे में ये भी पता लगाया गया कि यहाँ फ्यूल की बचत तो होती है, फिटनेस भी मेंटेन रहती है, लेकिन अगर उन्हें डर है तो उन्हें मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स से, तो आपको उसका ध्यान रखना है। एंड ऑफ कोर्स लेट्स कम बैक एंड रिस्पेक्ट द साइक्लिस्ट्स इन दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में, ढेर सारे जो सुबह सुबह निकलते हैं काम के लिए।

एनसीआर सुन रहे हैं आप। आपकी सुबह बहुत सुहानी हो और आपका दिन भी बहुत सुहाना हो, यही दुआ कर रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त मनीष जाली।

सेव पेट्रोल, सेव टाइम, अपना टाइम बचाइए, और इसलिए दिल्ली में मेट्रो चल रही है। लेकिन मेट्रो में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। वो धक्का मुक्की, जमीन पे बैठ जाना, जगह नहीं देना, और उसके बाद तू है कौन? So keep your tempers controlled, है ना? World class एक कन्वेंस की हमारे पास फैसिलिटी।

तो ये था गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश जॉली, इजाजत ले रहा हूं। सोनू भट्ट आ गई है स्टूडियो के अंदर और अगला प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। एक पुराना गाना तो मैं भी रेकमेंड कर सकता हूं, आप भी रेकमेंड कर सकते हैं, सुनेगा जरूर। अगला शो है, शुरू हो रहा है 9 बजे।

दिल के तराने गाने नए पुराने सुन रहे हैं आप, वही प्रोग्राम जिसमें हम हर 15 मिनट में एक रेट्रो गाने को आप तक पहुंचाते हैं, गोल्डन एरा में आपको लेके चलते हैं। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है, नए गानों के बीच पुराने गानों का तड़का भी लगता रहेगा। सुनते रहिए इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो पर, दिल के तराने गाने नए पुराने।

इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद ले चलते हैं आपको गोल्डन ईरा में, और जैसे कि मैंने आपको बताया था हर 15 मिनट के अंतराल पर एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपकी नज़र होगा जो कि हम लेकर आए हैं, चुन कर आए हैं गोल्डन ईरा यानी कि सुनहरे दौर से। तो आज जो मैं आपके लिए गाना लेकर आई हूँ वो 1965 की फिल्म है, फिल्म का नाम है वक्त। इस फिल्म ने हमें बताया कि वक्त कभी भी बदल सकता है, वक्त की बहुत अहमियत होती है और उसकी कद्र करना और उसका सही इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सुनील दत्त नज़र आए, राजकुमार, शशि कपूर, साधना।

शर्मिला टैगोर, बलराज साहनी, अचला सचदेव रहमान और मदन पुरी। मल्टी स्टारर मूवी, मैसिव हिट, सुपर हिट हम इसको कह सकते हैं। यश चोपड़ा साहब ने इसे डायरेक्ट किया और बी आर चोपड़ा साहब ने इसे प्रोड्यूस किया। एक से एक ब्यूटीफुल इसमें गाने सुनने को मिले, और जो गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो गाना आशाताई और महेंद्र कपूर की आवाज़ में आप तक पहुँच रहा है, और इसमें नजर आई शर्मिला टैगोर और शशि कपूर की जोड़ी। दिन है बहार के तेरे मेरे।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ये जनहित की जो बात आप तक पहुंची है कि स्वच्छता बनाए

0: रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आसपास को साफ रखते हैं तब सब कुछ बहुत ही सुंदर लगने लगता है। ठीक उसी तरह सुंदर एक गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, हमारे रेट्रो फ्लेवर को अपने में समेटा हुआ 1970 की फिल्म यानी कि 1970 की फिल्म बेहद खूबसूरत सी प्रेम पुजारी। और प्रेम पुजारी में देवानंद और वहीदा रहमान नज़र आई, साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा, जाहिदा मदनपुरी भी इसमें दिखाई दिए। एस टी बर्मन साहब का म्यूज़िक, नीरज के लिखे हुए गीत, और जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, देवानंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया।
1: टोकरियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने गाने नए पुराने। और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 1981 की फिल्म सिलसिला से, जो कि मेरी एक पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, और इस फिल्म को बनाया यश चोपड़ा साहब ने, और इसे

तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और अब टाइम हो गया है कि मैं आपसे अभी के लिए विदा लूं, फिर मुलाकात होगी आपकी और मेरी किसी और खूबसूरत मोड पर। तब तक के लिए आप सुनते रहिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहिए 9868107070 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हैव अ वेरी गुड डे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज,

0: ओस्लो नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग लवली लिसनर्स। द स्टूडियो क्लॉक इज टेलिंग मी दैट इट इज 5 मिनट्स पास 10 एंड 46 सेकंड्स। यस इंडीड, इट्स दैट टाइम ऑफ द मॉर्निंग बट हियर वी आर गैदर्ड अराउंड द एयरवेव्स ऑफ 102.6 आकाशवाणी रेनबो, ready to take that little musical rest in Retro Town.

0: goodness, enjoying their creation and reliving it every moment, just as we are here on this edition of Akashvani Rainbows MMH, the Matchless Music Hour, where we take a teeny weeny bit of a break and stop a while at Retro Town. And we enjoy doing that, don't we? So what I'll do is, I'll play another track and then your messages. Oh, you wonderful, lovely people, how kind you are with your messages. I've got quite many, so I shall play them. But listen to this and we'll carry on.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: all about mixing together and fusing. So here is that wonderful example. The rag was Yaman, that was a blueprint, rag Yaman. And then Shankar Jaikishan beautifully blended that with the more Western influence orchestra arrangement. So it was classical roots and the more orchestral arrangement of the Western influence music. And there we have this hallmark of the 1960s Bollywood romance from the film Jangli. You liked it? I know that. So do tell me that you liked it on 9868107070. This is the MMH, the Matchless Music Hour, and we're taking a little break.
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: Yes, the messages are coming in slowly but steadily. That's all right, as long as they're coming in. And as long as you're registering your presence here and telling us that you're enjoying the show, it's perfectly all right. Paris has written in again and is enjoying the show because he understands the fabric of the show, the entire mission of creating the MMH, the Matchless Music Hour. He says that it is a super nice selection of Bollywood and Hollywood songs, and it is not completely Western, so it's ideal because it lets us stick to our roots and also learn from other music genres and cultures. Thank you so much, Paris. Your wonderful little words there make a world of difference. And quite ironically now, it's all about music, isn't it? It's all about the sound and the rhythm and the melody. But now we're going into the sound of silence.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार तथा अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में हुई वृद्धि की सराहना।

0: न की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेरल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित मजबूत संबंध साझा करते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला न करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 से अधिक अंक की वृद्धि के साथ 75,706 पर, जबकि निफ्टी 107 अंक बढ़कर 23,760 पर था। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी खबरें, ऐसी खबरें जो शायद थोड़ी बहुत आपको पता होती हैं लेकिन बहुत सारी हम बताते हैं आपको। तो आज बॉलीवुड ट्रेल्स में लाए हैं आपके लिए बहुत कुछ खास। मनाएंगे एक ऐसे एक्टर का बर्थडे जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं, और साथ साथ होगी आपके लिए एक छोटी सी क्विज। जी हाँ, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, हमेशा की तरह प्यारा सा सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और बॉलीवुड सरताज के साथ हम करते हैं बातचीत, करते हैं ना, तो बस रहिए हमारे साथ इस पूरे एक घंटे, क्योंकि यहां पर है आपके लिए बहुत कुछ धमाल कमाल।

0: स्पीकर फट जाए।
1: जी हाँ बिल्कुल, इतना धमाल कर लीजिए कि स्पीकर फट जाए, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा यदि स्पीकर फट गया तो फिर गाने कैसे सुनेंगे। जी तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस बात का कि भले ही स्पीकर फट जाए लेकिन उस बात का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि आपके पास एक स्टैंड बाय स्पीकर भी हो, ताकि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में। भाई सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ उस एक्टर की जो थोड़े समय से मुझे लग रहा है साइलेंट पर चले गए थे, लेकिन अब उनकी बहुत सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं या ये कहीं की आने वाली हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उनकी जिनकी लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे हाथ में है। भाई हम बात कर रहे हैं सलमान खान की। आने वाले सालों में ना बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और इस साल तो सबसे पहले उनकी जो फिल्म थी वो मातृभूमि आने वाली थी। आपको बता दें इसका पहले जो नाम था ना वो था बैटल ऑफ गलवान, इस नाम से चर्चा में थी, जिसका निर्देशन कर रहे हैं अपूर्व लाखिया। और बताया यही जा रहा है कि भाई देशभक्ति और युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और इस फिल्म में इनके साथ है चित्रांगदा सिंह। भाई फिल्म के रिलीज की डेट एक बार फिर से बढ़ा दी है, लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं बैटल ऑफ गलवान को अब बोला जा रहा है मातृभूमि। और आपको ध्यान होगा इसी फिल्म के साथ अरिजीत सिंह का गाना भी एक आया है, बहुत पॉपुलर हुआ है, और साथ साथ जो सुनने में आया था ना कि उनकी और सलमान खान साहब की थोड़ी सी आपस में शायद कुछ टेंशन थी, वो भी अब ख़त्म हो गई है इस गीत के साथ। इसके बाद इनकी एक फिल्म है जिसका नाम अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो डायरेक्टर वामशी पैदीपल्ली के साथ है। जी हाँ, साउथ के बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। फिल्म को दिलराजू प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ख़ास बात ये है कि इसमें इनके अपोजिट हैं नयनतारा। देखिए ना कितनी अच्छी अच्छी हीरोइंस के साथ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है एटली की फिल्म है जिसका बहुत समय से इंतज़ार हो रहा है, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब इसका नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सुनने में यही आ रहा है कि ये एक पैन इंडिया फिल्म हो सकती है। इसके अलावा राज एंड डीके के साथ सुपर हीरो फिल्म है। आपको बता दें द फैमिली मैन और फर्जी जैसी वेब सीरीज़ बना चुकी है ये जो

राजन डीके की और इस बार ये सलमान खान के साथ एक सुपर हीरो फिल्म कर रहे हैं। और चर्चा में ये है कि 2026 के जो अक्टूबर है ना, उसमें ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी और प्रोड्यूस करेंगे इनके जीजा श्री यानी कि अतुल अग्निहोत्री। और कौन कौन सी फिल्में हैं पाइपलाइन में सलमान खान की, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये प्यारा सा ट्रैक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, चिंगारी भड़कती है तब जब हम उसे हवा देते हैं, और हम हवा ये दे रहे हैं कि सलमान खान की बहुत सारी फिल्में हैं जो फ्लोर पर हैं, या फिर कुछ ऐसी हैं जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है लेकिन अभी उनकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। उन्हीं में है कुछ और फिल्में भी जिनके बारे में हम आपको बता सकते हैं, जिसमें है सबसे पहले किक 2। जी हाँ बिल्कुल, किक जो है, किक का अगला जो सीक्वल है वो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि 2027 या 28 में फ्लोर पर चला जाएगा। साथ ही टाइगर वर्सेस पठान फिलहाल होल्ड पर चली गई है, हालांकि ये फिल्म में इनके साथ में शाहरुख खान भी हैं और कैटरीना कैफ भी हैं। इसके अलावा है दबंग 4, जिसके रिलीज डेट फिलहाल फाइनल नहीं की गई है, लेकिन हमने फाइनल कर लिया है आपके लिए एक और प्यारा सा ट्रैक और साथ साथ आज का सवाल। तो यदि आप भी जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज क्वेश्चन में, तो रहना है आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रॉकिंग रश्मि।

वेल दोस्तों, इस समय अजय देवगन के खाते में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका इंतजार भी है और साथ साथ लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही हैं, जैसे धमाल 4 जो है कॉमेडी फिल्म है, गोलमाल 5 भी ऐसी ही है, रेंजर जिसमें जंगल एडवेंचर है, साथ में सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम 3 भी हाथ में है और जल्दी ही शैतान 2, रेड 3, भोला 2, मतलब कैसी कितनी सारी सुपरहिट फिल्मों के सीक्वल में नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त जो चर्चा में है वो इसमें है कि 19 साल के बाद अजय देवगन वापसी कर रहे हैं उनके साथ, जिनसे कभी इनका थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था। 2007 में रिलीज हुई फिल्म कैश में इन्होंने साथ में काम किया था इनके, लेकिन उसके बाद जब फिल्म फ्लॉप हो गई थी तो उसके इनके साथ ना इस डायरेक्टर के साथ इनके रिश्ते थोड़े से ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों ने लंबे समय तक एक साथ काम नहीं किया। लेकिन अब अजय देवगन ने गिले शिकवे मिटाकर इस डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया है और एक फिल्म की एक प्रोजेक्ट को लेकर साथ में मिल गए हैं, और ये कंफर्म किया है किसने? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनुभव सिन्हा की। इन्होंने बिल्कुल इस बात को कंफर्म किया है कि वो अजय देवगन को लेकर एक एक्शन फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली 19 साल के बाद ये जो जोड़ी है हमें नज़र आएगी, और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि भले ही कैश जो है वो उतना ज़्यादा कैश नहीं कमा पाई, लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन इस बार ये जोड़ी डेफिनेटली कमाल कर सकती है। तो बस इंतज़ार रहेगा इस फिल्म की अनाउंसमेंट का कि क्या फिल्म रहेगी, क्या प्रोजेक्ट होगा और क्या इसमें अजय देवगन का रोल होगा। फिलहाल आपको सुना रही हूँ एक और प्यारा सा ट्रैक, और उसके बाद होगा आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूँ कौन, मैं हूँ आपकी अपनी आरजी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों अब जो वक्त आ गया है वो उस पड़ाव का है जब हम आपसे पूछते हैं एक छोटा सा सवाल। तो आज का सवाल है बहुत ही आसान। अभी मैंने आपको बताया कि अजय देवगन की धमाल 4 आ रही है और हालांकि उसकी डेट जो है ना वो भी पोस्टपोन हो गई है। पहले रिलीज होनी थी 3 जुलाई को लेकिन अब होगी वो 17 जुलाई को। कोई बात नहीं, पोस्टपोन होती रहती हैं लेकिन जब रिलीज होती हैं तो लोगों का जो इंतज़ार होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये बताना है आज के सवाल में कि जो धमाल फ्रेंचाइजी है यानी कि धमाल, धमाल डबल धमाल, फिर आई थी टोटल धमाल और अब आ रही है धमाल 4, है ना। तो ये जो फ्रेंचाइजी है इसकी फर्स्ट फिल्म यानी कि धमाल कौन से ईयर में रिलीज हुई थी। बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका सही जवाब लिखकर आपको भेजना है 9868107070 पर अपने नाम और अपने फोन नंबर के साथ। उठा, उठा, उठा।

पहले एक बार फिर से आपको बता दें, बॉलीवुड सवाल जो मैंने आपसे पूछा है बहुत ही आसान है। धमाल फ्रेंचाइजी की जो फर्स्ट फिल्म थी धमाल, वो कौन से ईयर में, कौन से साल में रिलीज हुई थी, आपको बताना है उस साल का, मतलब ईयर बताना है, साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना फ़ोन नंबर लिख कर भेजना है 9868107070 पर। भाई दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की और बहुत सारी बातें आपको बताएं, सलमान खान के अपकमिंग फिल्म्स के बारे में बताया, आपको बताया कि अजय देवगन एक बार फिर से हाथ मिला चुके हैं अनुभव सिन्हा के साथ और लेकर आएंगे एक जबरदस्त एक्शन फिल्म। साथ ही धमाल 4 की जो रिलीज डेट थी वो पोस्टपोन हो गई है और अब जो खबर मैं आपको देने वाली हूँ ना, वो भी है बहुत कुछ खास। भाई आपको ध्यान होगा, स्काई फोर्स में नजर आए थे वीर पहाड़िया और लोगों को काफी पसंद आए थे। हालांकि कहा यह जाता है कि जाह्नवी कपूर के साथ इनका कुछ कनेक्शन है, उनके साथ कनेक्शन है या नहीं ये तो दोनों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन हाँ, लोगों के दिलों तक उनका कनेक्शन डेफिनेटली जुड़ गया था और इसी वजह से लोगों को इंतजार था, ऑडियंस को इंतजार था कि वीर पहाड़िया अब नेक्स्ट किस फिल्म में नजर आएंगे। तो भाई फिल्म का नाम जो है वो है बेनाम और इस फिल्म के साथ एक बार फिर से वीर पहाड़िया चर्चा में है। अब फिल्म के बारे में बहुत कुछ अभी नहीं डिस्क्लोज किया गया है, इसीलिए मैं भी आपको बस इतना ही बताऊंगी कि डेफिनेटली उनकी फिल्म आने वाली है और इस फिल्म का नाम रहेगा बेनाम। लेकिन हमारे साथ एक और जो सॉन्ग है वो लिस्ट में जुड़ चुका है। अब आप ये ट्रैक सुनिए, एंजॉय कीजिए और वापस आइए बॉलीवुड ट्रेल्स में। साथ साथ एंजॉय करते करते आप हमें लिख सकते हैं आज के बॉलीवुड सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब।

बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज है 19 मई और आज किसका बर्थडे है भाई? छोटे मोटे रोल निभाकर बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी मना रहे हैं आज अपना बर्थडे। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना तहसील में इनका जन्म हुआ। किसान परिवार से थे लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थिएटर सीखने और एक्टिंग के सपने को पूरा करने में। भाई किस्मत आजमाई, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम भी किए, चौकीदार की नौकरी भी की, बहुत सारी मुश्किलें झेली और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मिले और जहां उनकी एक्टिंग निखारने का उन्हें मौका मिला। उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट यदि हम कह सकते हैं तो वो है

0: बना दी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। द लंच बॉक्स हो या बदलापुर, बजरंगी भाईजान, माझी या फिर हो सेक्रेट गेम्स, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी वेब सीरीज में उनके एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया और आज हम उनके बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर दे रहे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो हमारी एफएम रेनबो की टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और अपना, अपने ज़िले का, अपने शहर का, अपनी तहसील का नाम यूं ही आगे बढ़ाते रहें।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
0: जी हाँ, बिल्कुल, जनगणना 2026 को सफल बनाएं। और साथ साथ जो हमारा ये प्रोग्राम है ना, इसमें जो हमने आपसे सवाल पूछा है, उस सवाल को पूछने को भी सफल बनाएं। तो जल्दी से लिखकर भेजिए आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। धमाल फ्रेंचाइजी की जो फर्स्ट फिल्म थी धमाल, वो कौन सी ईयर में रिलीज हुई थी? आपको बताना है सही जवाब अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, प्लस आपका फोन नंबर होना चाहिए उसके साथ में, तभी हम आपको कॉल करके बनाएंगे आज का बॉलीवुड सरताज, यदि आपका सवाल होगा बिल्कुल बिल्कुल सही।

और अब वक्त है ये जानने का कि कौन बने हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, तो ये तो लाइन जरूर मिली हुई है, लेकिन जो हमारे कॉलर थे या ये कहिए कि हमारे जो आज के सरताज बने थे, ये थी सुमन शर्मा संतनगर बुराड़ी से। इन्होंने बिल्कुल सही मैसेज लिखा था, और क्योंकि पीछे से आवाज़ किसी और की आ रही है, आई थिंक वो खुद फ़ोन लाइन पर नहीं है, तो हम उन्हें दे रहे हैं बहुत सारी मुबारकबाद। और इसके साथ में पंकज अमरावती से, सलीम मलिक मेरठ से, दानिश खतौली लखीमपुर खीरी से, नूरबी खान, और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनका बिल्कुल सही जवाब आया था, तरुण भारद्वाज थे, रामलाल राज फरीदाबाद से थे, इरशाद नागौर राजस्थान से थे, और इनका बिल्कुल सही सही जवाब आया था हमारे पास, सियाल फुरकान, मोहम्मद फुरकान ग्राम सियाल मेरठ से थे, सुदर्शन मुखी थे, और उमेश कुमार खयाला से थे। इन सभी के बिल्कुल सही जवाब था। और फिलहाल चूंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और ख़ास तौर पे जो हमारे बॉलीवुड सरताज बनते हैं ना, यदि आपसे हम बात कर रहे हैं तो प्लीज़ आप फ़ोन लाइन पर रहिए, इधर उधर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो जो मज़ा होता है ना सरताज बनने का, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो बस इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाज़त, अगला प्रोग्राम होगा प्ले इट कूल, और आपके साथ रहेंगी शालू और रश्मि। फ़िलहाल लेती है आपसे इजाज़त, 1:05 पर रेनबो हेल्पलाइन में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और आज है एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, तो जाएगा कहीं नहीं, रहेगा मेरे साथ 1:05 से 2 बजे तक रेनबो हेल्पलाइन में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री

0: क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गईं, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Well, the time by the studio clock is 20 minutes past 12 and 40 seconds. Yes, right in the middle of the afternoon of the 19th of May 2026, when, yes, it's May, so it's peak summertime, but shouldn't really bother us because we're so, so adamant about playing it cool right here on the airwaves of 102.6 Akashvani Rainbow. So as we play along, maybe we'll take a little break and then be right back on the show.
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा

0: सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें। वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से प्रोग्राम आ गया है रेनबो हेल्पलाइन। और रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, आपकी अपनी आरजी, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजी रश्मि गुप्ता। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल ज्यादातर पति पत्नी दोनों वर्किंग है, समय कम मिलता है आपस में बात करने का, समय बिताने का। किसी ना किसी छोटी मोटी बात पर झगड़ा होता है और बढ़ते बढ़ते बात बिगड़ जाती है और बन जाती है एक विवाद। तो पति पत्नी के बीच बढ़ते विवाद, घरेलू हिंसा, तलाक, भरण पोषण या फिर ये कहें और भी बहुत कुछ, इन सभी के बारे में, महिलाओं और पुरुषों के कानूनी अधिकारों के बारे में, या कोई भी ऐसी बात जो उन दोनों के बीच किसी तरह का विवाद बना सकती है और उन्हें ज़रूरत पड़ती है कानूनी सलाह की, इसे विषय को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं रेनबो हेल्पलाइन में। हमारा आज का विषय है लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। और हमारे आज के गेस्ट हैं श्री सैयद रेहान, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आपका मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
1: तो ये तो है श्री सैयद रेहान जो एडवोकेट हैं, और आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप स्टूडियो में डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 011-234-21080 और 011-234-21084। साथ ही यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी तकलीफ लिखना चाहते हैं, अपना क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप उस पर सलाह मांगना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और ध्यान रखिएगा, आज का विषय है लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स।

0: जी हाँ बिल्कुल, जब शादी होती है तो शुरू शुरू में सब कुछ ऐसा ही लगता है कि दोनों का प्यार जो है अमर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं वो बड़ी बन जाती हैं और फिर एक बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स यानी कि वैवाहिक विवाद क्या है और किस तरह के विवाद इसके अंतर्गत आते हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो जो विवाद होता है स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो आपस के जो अपनी संतुलन एक दूसरे के बीच में और एक दूसरे का को ना समझ पाने में शुरू होता है। और इसमें बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि पेरेंट्स और इन लॉज या कुछ रिश्तेदारों के इंटरफियर की वजह से ये विवाद पैदा होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये विवाद होता क्यों है, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह में सबसे पहले वो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं और इंटरफियर करते हैं पति और पत्नी के एक दूसरे के रिलेशन में।
0: जी
1: नंबर दो, इनकी आपने पूछा कि होता क्यों है, तो होने में एक दूसरे के ईगोज़ क्लैश करते हैं जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। और इसमें मेरा ये एक मानना है कि सबसे पहले इस तरीके के जो विवाद होते हैं इनको काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए, दोनों लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहता हूँ, ये मेरा सजेशन है कि काउंसलिंग पेरेंट्स की, इन लॉज़ की और उन रिश्तेदारों के भी होनी चाहिए जो उनके साथ पति या पत्नी के साथ रहते हैं।
0: जी, तो मतलब कुल मिलाकर बात इतनी है कि यदि कोई भी

0: आपका होता है तो सबसे पहले तो आप आपस में बैठकर सुलझाइए, और नहीं तो आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल।
0: और वहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं कई बार घर वालों के साथ जुड़ी होती हैं और वो पति पत्नी के बीच आ जाती हैं।
1: जी।
0: अच्छा, क्या हर वैवाहिक विवाद का समाधान कोर्ट ही होता है, या मतलब समझौते के रास्ते वाकई में मौजूद होते हैं?
1: जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और ट्रायल कोर्ट तक सबको एक मीडिएशन की सुविधा दी गई है।
0: जी
1: और सबसे पहले इस तरीके के जो भी विवाद आते हैं, कोर्ट का भी यही नज़रिया होता है कि आप सबसे पहले समाधान केंद्र पे जाइए
0: जी
1: और आपस के विवाद जो भी हैं वहाँ बैठ के और उसको निपटाइए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा झगड़े नहीं होते हैं ऐसे कि जो आपस में सेटल ना किए जा सकें, इसलिए कोर्ट पहले भेज देता है सेटलमेंट के लिए मीडिएशन में, और सबको एक चांस ज़रूर देता है, चाहे पति हो या पत्नी हो।
0: जी जी
1: अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्ट जो है पति या पत्नी वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, मुझे समझौता नहीं करना है, मुझे केस लड़ना है। उसमें भी कोर्ट ये सजेस्ट करता है कि नहीं, पहले आपको एक बार सेटलमेंट के टेबल पे बैठना पड़ेगा, मीडिएशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद अगर नहीं बनती है बात तो आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि मीडिएटर अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से और वो ट्रेन मीडिएटर होते हैं और उनका काम इस तरीके के झगड़े को निपटाना होता है।
0: जी
1: तो इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उनके झगड़े का समाधान हो जाता है और फिर वो आके इस बात को कहते हैं, धन्यवाद देते हैं कोर्ट को कि आपने अच्छा किया, हमें भेज दिया और हमारा आपस का झगड़ा खत्म
0: खत्म
1: हो
0: हो
1: गया।
0: गया। जी, तो कितनी आसान तरीका है ना, कि मतलब अपनी बातचीत को आप बजाय की ओर बढ़ाने के, आप मीडिएशन के ज़रिए अपने झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं।
1: जी
0: आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की और उनके लीगल सॉल्यूशंस की। यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें स्टूडियो में डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-234-21080 और 011-234-21084।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज का हमारा विषय है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एंड लीगल सॉल्यूशंस। यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप डिटेल में अपना सवाल पूछना चाहते हैं और लिखकर बताना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। सर, अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो घरेलू हिंसा होती है क्या वो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंतर्गत आती है, और यदि आती है तो किस तरह के कृत्य होते हैं जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं?
1: जी, पति और पत्नी दोनों के साथ ऐसा संभव है कि घरेलू हिंसा हो सकती है, जिसमें कि कानून हमें दोनों को अधिकार देता है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा होती है तो उसमें उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 12 में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं
0: जी।
1: और कंसर्न पुलिस स्टेशन में CAW सेल एक बना होता है, उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और जिस किसी के साथ ऐसा हुआ है उसके अगेंस्ट पुलिस एक्शन लेगी और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को भी देगी अगर ये उसी जगह पर समझौता नहीं हो पाता तो
0: जी।
1: तो सबसे पहला केंद्र समझौते का CAW सेल होता है, जहां पर वार्निंग दी जाती है आगे नहीं होने के लिए। ऐसा पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं आपको वार्न करते हैं, किसी भी पक्ष को, पति हो या पत्नी
0: जी।
1: तो ये पहला स्टेप होता है और इसमें कानून हमें पूरा अधिकार देता है कि हम इस तरीके की हिंसा के खिलाफ जाकर के शिकायत कर सकते हैं।
0: तो सर, जो महिला है मान लीजिए, वो मतलब उसको खुद ही जाना पड़ेगा या उसके तरफ से कोई और भी शिकायत कर सकता है?
1: नहीं, जो विक्टिम है, जिसके साथ ऐसा हुआ है, उसका जाना तो जरूरी है। वो जाएगा तभी अपनी पूरी बात बताएगा और तभी उस पर कानून ठीक से काम कर सकेगा। अगर जिसके साथ ऐसा हुआ है वो नहीं पहुंचेगा तो उसके साथ जो हुआ है कैसे पुलिस को पता चलेगा और वो एक्शन कैसे ले सकती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: अगर उसके साथ मारपीट हुई है तो उसको चोट लगी होगी, उसका मेडिकल कराया जाता है, प्रॉपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जाती हैं जो कि एक विक्टिम को न्याय दिला सकता है
0: जी।
1: अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर न्याय अधूरा रह जाएगा।
0: ओके, एक सवाल भी इससे रिलेटेड पहुंचा है। पैंथर तोमर लिख रहे हैं किशनगंज दिल्ली से, कहते हैं घरेलू हिंसा में अगर महिला डर से कतराकर शिकायत दर्ज नहीं करा पा रही तो क्या एक पड़ोसी होने के नाते मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूँ, और शिकायत की प्रक्रिया क्या है?
1: जी, आप शिकायत जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है उस पर दर्ज करा सकते हैं
0: जी,
1: और वो उस पर पुलिस एक्शन लेती है, वो खुद वहाँ पहुँचती है और सारी प्रक्रियाएं वहीं से शुरू होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम को जाना पड़े, अगर ऐसे हालात हैं कि वो जा नहीं सकती
0: जी, जी।
1: तो कोई भी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार पुलिस में शिकायत कर सकता है और पुलिस वहाँ पहुँचकर इंक्वायरी करेगी और इस जिस भी तरीके का हिंसा हुई है वो पुलिस एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी
0: जी। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को कौन कौन से अधिकार देते हैं?
1: सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन 12, उसमें आपको ये अधिकार है कि आप शिकायत दर्ज कराएं। अगर आपके साथ मारपीट हुई है, शारीरिक शोषण हुआ है, तो उसमें उन धाराओं का, जैसे कि एक नॉर्मल कोर्स में किसी भी घटना को लिया जाता है और सेक्शंस लगाए जाते हैं, वो सेक्शंस भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो भी लगाए जाएंगे
0: जी।
1: जिस तरीके की हिंसा होगी, जिस तरीके की आपके साथ बर्बरता की गई है, उसी तरीके से आपके साथ न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई शारीरिक हिंसा नहीं हुई है, उत्पीड़न नहीं हुआ है, केवल आपको मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है
0: जी।
1: उस स्थिति में भी आपके साथ पूरा न्याय होगा। और वो सेल CSW सेल स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि आपके साथ किसी भी तरीके की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना ना की जा सके इन फ्यूचर।
0: अच्छा, जनरली कहा जाता है कि जो घरेलू हिंसा है वो महिलाओं के साथ होती है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष भी हो रहे हैं, तो क्या इसकी शिकायत पुरुष लोग भी कर सकते हैं?
1: जी हाँ, कानून में अधिकार दोनों के लिए बराबर दिया गया है।
0: जी,
1: पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए वही सेक्शन अप्लाई होते हैं जो कि एक दूसरे महिला के लिए होते हैं।
0: जी,
1: इसमें सेक्शन 12 हिंसा के लिए बनाया गया है। पुरुष खुद जा करके भी कर सकता है, पुरुष के लिए भी दूसरा कोई रिश्तेदार या उसका पड़ोसी भी कर सकता है कि इनके साथ हिंसा की जा रही है।
0: जी, तो कुल मिलाकर आपने देखा, आपने सुना सर से कि किस तरह से आप यदि घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो आप सिर्फ पुलिस हेल्पलाइन पर फ़ोन करके ही आप अपनी शुरुआत की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और उसके बाद पुलिस आकर पूरे कार जो प्रोसेस है वो आपको बताएंगी और आप पुलिस स्टेशन जाकर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और इस केस में यदि महिला खुद नहीं जाना चाहती तो कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त भी उसकी तरफ से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन और आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी RJ रॉकिंग रश्मि। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी परेशानियाँ कई बार मन में चल रही होती हैं, लेकिन हमें लगता है किससे कहें, कैसे कहें, कैसे हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज का रेनबो हेल्पलाइन है, उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी वैवाहिक विवाद से जूझ रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 0112342 1080 और 0112342 1084। हमारे साथ हैं श्री सैयद रेहान जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज के विषय में बातचीत कर रहे हैं।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सर एक कॉल आई है हमारे पास, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो
1: हेलो
0: जी, पूछिए आपका सवाल पूछिए और आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप बोल रहे हैं।
1: जी मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। पहले तो एंकर मैम को नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और वकील साहब को भी सलाम अलैकुम।
2: जी जी नमस्कार।
1: जी मेरे तीन चार छोटे सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि हस्बैंड वाइफ जब उनकी मैरिज हो जाती है तो उनमें डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो, डोमेस्टिक वायलेंस, तो इसलिए क्या या हो ही ना या कम से कम हो तो उनको क्या करना चाहिए, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं अरेंज मैरिज या लव मैरिज आप किस पे फोकस करेंगे, ज्यादा बेटर क्या ऑप्शन है ये बताएं आप। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं ना उसकी गारंटी वारंटी होती है, तो क्या आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान है कि जब शादी होती है नहीं तो लड़की लड़के से शादी के लड़का लड़की से तो इसकी भी कोई गारंटी वारंटी की भाई आप अगर 5-6 महीने।
0: चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब देते हैं सर, आप सुनिए ऑन एयर सुनिए आप।
2: जी देखिए राजेश जी,
0: राजेंद्र जी।
2: मेरा यहाँ पर आपके साथ एक सजेशन ये है कि सवाल आपके डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है, आपके प्री लिटिगेशन की तरह आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो
0: जी।
2: हम यहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका जवाब देते हैं। आपका कह पूछना है कि अगर ऐसा होता है तो उसकी बचाव के लिए क्या किया जाए, उसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि एक दूसरे पति पत्नी में ईगो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बातों को सुने
0: जी।
2: हमारे 50% विवाद यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं जब हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सुनते हैं और उनको एक मौका देते हैं। अगर हम आपस में बिना किसी को मौका दिए और अपनी ईगो को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो यहीं से विवाद की शुरुआत होती है
0: जी।
2: दूसरी चीज़ ये है कि इसमें घर वालों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, चाहे वो इन लॉज हों चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, हमारे पति पत्नी के बीच उनके इंटरफियर की वजह से भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, तो हमें इससे भी बचना चाहिए
0: जी। सर एक सवाल और आया है, वो कहते हैं कोर्ट कैसे तय करेगा कि महिला घरेलू हिंसा का शिकार है अगर महिला के पास कोई ऑडियो या वीडियो ना हो, क्योंकि ऐसा बहुत से केसेस में होता होगा।
2: जी हाँ बिल्कुल होता है। इसमें सबसे पहले उसके साथ की गई हिंसा का दायरा क्या है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि मारपीट होती है लेकिन उसका सबूत नहीं होता, कभी कभी गालियां लोग दे देते हैं लेकिन वो आप रिकॉर्ड नहीं होती
0: जी।
2: तो ऐसे में स्टेटमेंट जो पति का है या पत्नी का है, दोनों के लिए ये मैं कहता हूँ, वो CAW सेल में जा करके दर्ज कराना होता है या आप घर में भी एक कॉल करके पुलिस हेल्पलाइन में उनको दर्ज करा सकते हैं, ऑडियो के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फिर उस पर इंक्वायरी होती है, पुलिस इंक्वायरी करती है और इंक्वा

0: के बाद वो एक उस पे पहुंचते हैं, डिसीजन पे पहुंचते हैं कि आखिर हिंसा ये किस स्टेज की हुई है,
1: जी
0: और उस पे वो आगे केस को बढ़ाते हैं।
1: जी एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और जगह का नाम बताइए।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: जी पूछिए, आपका सवाल पूछिए।
2: तो मेरा वकील साहब, साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि
0: जी।
2: जैसे कि पति पत्नी में विवाद इस तरह से होता है, जैसे कि अगर मान कि अगर पत्नी कहती है कि मुझे हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, लेकिन जो है ससुराल के साथ
1: आपके पीछे ना
2: रहना चाहते।
1: रेडियो चल रहा है, आप रेडियो, थोड़ा रेडियो से दूर हो जाइए।
2: जी। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि अक्सर लड़की ये चाहते कि हमारा छोटा परिवार हो, तो लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे जो पति देव हैं वो उनके माँ बाप है, अगर वो हस्बैंड चाहता कि भाई मैं अपने माँ बाप को ना छोड़ू, तो ऐसे में फिर उनको क्या सलाह देना चाहते, क्योंकि देखो आप बीबी तो है, सब सब सब सदा है माँ बाप ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे।
0: देखें, इसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये कि माँ बाप की सेवा, माँ बाप के जो भी आप वो हैं, रेस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी पत्नी की नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि आपकी पत्नी की जो ज़िम्मेदारी है वो आप तक सीमित है। हाँ, पत्नी की ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि अगर उस घर में रहती है तो वो आपके माँ बाप की इज्जत करे और उनकी जो भी सेवा कर सकती है करे, मगर आप उसको उसकी लायबिलिटी नहीं समझें। जिस
1: जी
0: दिन आपने ये चीज़, ये सोच आपने डेवलप कर ली कि मेरी पत्नी की लायबिलिटी नहीं है मेरे माँ बाप, उस दिन इस समस्या का समाधान हो जाता है।
1: एक और कॉलर है जो कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो,
3: नमस्ते
1: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप?
3: मैम, मेरा नाम कुंदन कुमार, पटना, 100% ब्लाइंड हूँ मैम।
1: ओके, आपका सवाल बताइए। ओके, तो ये तो हमारे कॉलर हैं, मुझे लग रहा है गलती से कॉल इनका लगा है, क्योंकि एक छोटी सी प्यारी सी आवाज़ है, और आज हम बात कर रहे हैं लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। सर, आगे मैं बात करना चाहती हूँ दहेज के ऊपर, क्योंकि दहेज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता है, तो इस मामले में कानून क्या कहता है?
0: दहेज उत्पीड़न कानून की एक धारा है 498A और बी,
1: जी
0: जिसके तहत ये तय किया जाता है कि दहेज कानून का उल्लंघन हुआ है और इसमें जो भी दोषी होता है उसको सज़ा का प्रावधान है।
1: जी
0: मगर आज सच्चाई ये है कि इस धारा का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है,
1: जी
0: और इस धारा में सिर्फ आज तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2% से ज़्यादा सज़ा नहीं हुई है, 98% इसमें सज़ा नहीं मिलती है। और ज़्यादातर इस कानून के तहत हुए विवादों का निपटारा को आउट ऑफ कोर्ट भी हो जाता है और सेटलमेंट के ज़रिए भी हो जाता है।
1: जी
0: तो ये कानून आपको ज़रूर, इस धारा में प्रावधान प्रोविजंस हैं कि आप उस पर केस दर्ज कराइए, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। आज के दौर में इस पर बहुत से जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ़ भी केसेस किए जाते हैं, उनके खिलाफ़ भी केस दर्ज किए जाते हैं जो
1: जी
0: उत्पीड़न करता है।
1: जी

0: संशोधन होना चाहिए और इसमें दर्ज केस दर्ज करने के पहले इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए
1: जी, जी।
0: जिससे कि कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी कम होती है और लोगों को न्याय जरूर जल्दी मिल जाता
1: जी,
0: है।
1: जी। ऐसा ही एक सवाल आया है राजेश कुमार चौहान का जालंधर से, कहते हैं आजकल रिश्ते टूटने का कारण चाहे जो भी हो लेकिन बहुत से लड़के इसीलिए कानून का सहारा नहीं लेते क्योंकि कुछ लड़की वाले दहेज का झूठा केस डाल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है और ये वो मान चुके हैं कि दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग होता है, तो ऐसे में लड़कों को इंसाफ कैसे मिल सकता है?
0: जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जब हम कोर्ट में जाते हैं और हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं और आपका ये कहना है कि ज़्यादातर झूठे एलिगेशंस होते हैं, तो आप कोर्ट के सामने अपने सबूत पेश करें। इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसका सहयोग करें, उसको अपनी बात ज़रूर बताएं।
1: जी,
0: केस से भागना या कानून से भागना ये उपाय नहीं है। आपको कानून का सामना करना पड़ेगा और अपनी बातों को रखना पड़ेगा, उसमें आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा।
1: जी, रणधीर गुप्ता और बबीता रानी गुप्ता ओखला संगम विहार से कह रहे हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और विषय भी अच्छा लिया है आपने और साथ में जो जानकारी सर दे रहे हैं वो भी उन्हें काफ़ी पसंद आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की और उनके लीगल सॉल्यूशंस की। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज का हमारा विषय है लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। यदि आप भी किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फंसे हैं, आपको लगता है कि आपको कानूनी सलाह की ज़रूरत है और आप अपनी बात शायद ढंग से अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सैयद रेहान, जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं और वही आज इस विषय से रिलेटेड आपके सवालों का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हमारा जो अगला सवाल है वो मैं चाह रही हूँ कि आजकल छोटे छोटे झगड़े तलाक तक पहुँच जाते हैं
5: जी।
4: तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे, और यदि कोई आपसी सहमति से तलाक लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है
5: जी? इसमें अगर कोर्ट में ये किसी का विवाद चल रहा है

0: एक मीडिएशन सेंटर है, समाधान केंद्र, जो कोर्ट द्वारा बनाया जाता है। और सबसे पहले इस तरीके के विवाद मीडिएशन सेंटर में भेजे जाते हैं और आपस में जो सहमति हो जाती है तो उसमें उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है
1: जी।
0: और सेटलमेंट एग्रीमेंट में दोनों पक्ष अपनी अपनी कंडीशंस को देखते हुए सहमति दर्ज कराता है और उसके बाद फिर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट में आपसी सहमति से ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है अगर साथ रहना है। या ऐसे ही हिंदू पक्ष है अगर, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग फिर ये सेटलमेंट ख़त्म हो जाता है और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर उनको तलाक लेना है आपस में तो उसका प्रोविज़न है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मोशन की प्रक्रिया होती है जिसमें कोर्ट में जाना होता है, सेटलमेंट एग्रीमेंट उसमें लगाते हैं और उसके बाद वो कोर्ट में फाइल किया जाता है। फर्स्ट मोशन के बाद सेकेंड मोशन, जिसके बीच में कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए दूरी, और उसके बाद फाइनल मोशन में ये केस ख़त्म हो जाता है तलाक की डिक्री के साथ।
1: जी, क्या बिना विवाद, मतलब बिना कोर्ट जाए ये विवाद आराम से सुलझ सकते हैं?
0: जी हाँ, इसके लिए समाधान केंद्र बनाए गए हैं, मीडिएशन सेंटर। आप वहाँ पे अपनी अपनी कंडीशंस के साथ सुलहनामा कर सकते हैं और उस सुलहनामा को लिखित रूप में मीडिएटर आपको देता है और आगे के आने वाले टाइम में ये समझौता एक दूसरे के लिए ढाल बनता है कि इस तरीके की दोबारा विवाद में ना जाए।
1: ओके सर, लेकिन यदि कोई आपसी सहमति से तलाक ना लेकर वो कोर्ट के थ्रू ही लेता है तो इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है?
0: इसमें डाइवोर्स का सेक्शन है, तलाक अधिनियम धारा 13(1)(b) एंड 13(1)(c), उसमें कई धाराएं हैं जिसमें कि क्रुएल्टी आपको साबित करनी होती है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो।
1: जी जी।
0: और वो क्रुएल्टी साबित करने के लिए उसके अंदर उस प्रावधान दिए गए हैं कि इन इन सेक्शंस में क्रुएल्टी साबित होती है और इन इन सेक्शंस में नहीं होती है। वो एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत लंबा समय लगता है और इसमें कभी कभी 10 साल तक लग जाते हैं, 15 साल तक लग जाते हैं और दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के बजाय मैं ये कहता हूँ कि आपसी सहमति से तलाक हो तो आप टाइम बचा सकते हैं अपना और अपना घर भी बचा सकते हैं।
1: और हालांकि मुझे लगता है कि यदि तलाक की नौबत आप आने ही नहीं देंगे तो आपका परिवार सुरक्षित भी रहेगा और इसमें सबसे पहले ज़रूरत इसी बात की है कि आपस में बातचीत करें। संवाद और समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, इसके लिए प्री लिटिगेशन काउंसिलिंग सरकार ने और हमारे वहाँ कोर्ट्स ने शुरुआत कर दी है। इसमें अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कोर्ट में केस करने के पहले आपके आपसी विवाद को प्री लिटिगेशन सिस्टम द्वारा सुलहनामे के साथ ख़त्म किया जा सकेगा।
1: जी,
0: आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इससे आधे से ज़्यादा केसेस उसी समय समाधान केंद्रों पर ख़त्म किए जा सकते हैं बिना कोर्ट में जाए।
1: जी अच्छा सर, जो पति पत्नी होते हैं और जब तलाक हो जाता है या उस प्रोसेस में होता है तो बच्चों के और पत्नी के भरण पोषण के मामले में कानून क्या कहता है? और जो जैसे एक होता है कि उन्हें मेंटेनेंस मिलती है या किस तरह से, वो मतलब क्या उसका प्रॉपर सिस्टम है?
0: जी, भारत के कानून में 125 CRPC हमें मेंटेनेंस का पूरा हक देता है कि हमें और हमारे बच्चों को, पति को भी देता है यह हक और पत्नी को भी देता है और साथ में बच्चों को भी देता है कि हम उनका भरण पोषण करें।
1: जी,
0: इसमें एक अनुभव ये भी रहा है मेरा कि अगर पत्नी कार्यरत है तो ज़्यादातर कोर्ट्स कार्यरत पत्नी को भरण पोषण नहीं देता लेकिन बच्चों को पूरा भरण पोषण देता है।
1: जी,
0: कभी कभी पति कार्यरत नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, पत्नी कार्यरत है तो कोर्ट पत्नी को भी ये डायरेक्शन देता है कि आप अपने पति का भरण पोषण तब तक करें जब तक कि वो दोबारा एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिल जाता।
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेंटेनेंस से रिलेटेड।
1: जी,
0: कभी कभी सेटलमेंट जो हम मीडिएशन के ज़रिए कराते हैं उसमें फ्यूचर सेटलमेंट भी लेकर के आते हैं। फ्यूचर सेटलमेंट बच्चों के लिए कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम उनको ऐसा अधिकार नहीं देंगे, या आज की डेट में हम कोई उनको मेंटेनेंस नहीं देंगे, जबकि ऐसा फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी भरण पोषण का अधिकार

0: अपने कानून का पूर्णतः अधिकार रखते हैं, अपनी अपने पिता की प्रॉपर्टी में, अपने दादा की प्रॉपर्टी में, इसी तरीके से अपनी माता की प्रॉपर्टी में और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज में।
1: सर यहाँ एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, आपने बोला कि जो वर्किंग वाइफ है उससे मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, लेकिन मान लीजिए एक हम आजकल एक शब्द सुन रहे हैं एलिमनी, तो क्या मेंटेनेंस और एलिमनी एक ही चीज है या ये अलग अलग चीज है, और क्या वर्किंग वाइफ की स्थिति में जो वाइफ है वो एलिमनी के लिए बोल सकती है कोर्ट को, ये क्या मतलब दोनों में क्या अलग है?
0: बिल्कुल अलग है दोनों। भरण पोषण अलग होता है, जो आपके नीड्स होती हैं डे टू डे नीड्स पूरी करनी होती हैं वो मेंटेनेंस में आता है, बच्चों के लिए भी और पत्नी के लिए भी। कार्यरत पत्नियों के लिए भरण पोषण का अधिकार कोर्ट नहीं देता है क्योंकि वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। अब आता है एलिमनी का सवाल। एलिमनी स्त्री धन को बोलते हैं और स्त्री धन वो धन है जो कि उसके विवाहिक समारोह में उसको अपने इन लॉज की तरफ से या अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलता है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। एलिमनी लेने का पत्नी का पूरा अधिकार है, कोई उसको रोक नहीं सकता, वो कोर्ट भी नहीं रोक सकता, कोर्ट भी देगा और आपको कानून इस बात की अनुमति देता है कि आप अपनी एलिमनी का सवाल कर सकते हैं।
1: जी, तो ये तो बात हुई एलिमनी और एलिमनी और मेंटेनेंस की। यदि आपकी वाइफ जो है वर्किंग है और तलाक चाहती है तो, लेकिन यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0112342 1080 और 1084 पर।

0: एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर, पूछते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो
1: सर जी, मैं धर्मवीर गंगनी दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी। पूछिए जल्दी से आपका सवाल, पूछिए।
1: नमस्कार, मेरे छोटी छोटी दो बातें मेरी जिक्र है कि जैसे अगर किसी लड़का लड़की की शादी होती है और लड़की की बैकग्राउंड बाद में जाके पता चलती है कि इन लोगों का करेक्टर ठीक नहीं था और उनके कोई बेटा या बेटी हो जाती है, उसके बाद उनका मन मुटाव हो जाता तो वो अपने अलग घर में रहती है, ऐसे में लड़की क्या करे और लड़का क्या करे। और दूसरा एक सवाल और है, अगर किसी लड़की का कोई अफेयर पहले चल रहा है और शादी से पहले अगर शादी हो जाती है तो उसको नहीं पसंद, वो लड़का बैंक मैनेजर है, सरकारी बैंक मैनेजर, ऐसे में लड़की ने उसको पसंद नहीं किया, उससे तलाक ले लिया सरकारी बैंक मैनेजर होने के बाद भी, तो इससे हमें यही समझा जाएगा कि इसका बैकग्राउंड लड़की का पहले से लूज था।
0: ठीक है सर, सर बता रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठीक है,
2: देखें धर्मवीर जी, इसमें आपके दो सवाल हैं कि अगर आपको लड़की के बारे में शादी के पहले मालूम नहीं है कि उसका कैरेक्टर कैसा था, तो अगर आपके पास सबूत हैं तो आप क्रुएल्टी की बेसिस पे 13(1)(b) आप में उसमें सेक्शंस में आप तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं और इसमें आपको कोर्ट से न्याय मिलेगा। दूसरा सवाल है कि अगर उसने शादी होने के बाद भी अपनी चीज़ों को छुपाया और उसने

0: दूसरे से अफेयर किया तो उसमें क्या करना चाहिए। उसमें भी मेरा यही कहना है कि क्रुएल्टी के लिए आप सेक्शन 13(1)(b) में आप कोर्ट में जा सकते हैं, और उस बेसिस पे जिसमें कि आपके पास सबूत हैं कि उसने आप कैरेक्टर के बारे में जो आप कहते हैं कि ऐसा है, तो आप कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं और कोर्ट उसमें उचित कार्रवाई करेगा।
1: सर एक सवाल मेरा, जो हम तलाक और आपसी सहमति की बात कर रहे थे, एलिमनी की बात हमने की, वहाँ पर एक सवाल और आता है कि जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी किस तरह से निर्धारित की जाती है?
0: जी हाँ, इसके अंदर अगर बच्चा लड़की है
1: जी
0: तो उसमें माँ के पास कस्टडी दी जाती है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाती,
1: ओके
0: एटलीस्ट 18 ईयर्स तक,
1: जी
0: ठीक है। और लड़के की कस्टडी कम से कम 9 साल तक माँ के पास होती है,
1: जी
0: 9 साल के बाद ये कस्टडी पिता को मिल सकती है।
1: क्या बच्चों की इच्छा भी निर्भर करती है कि मतलब बच्चे यदि थोड़े से बड़े हैं तो उनसे भी क्या पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं?
0: बच्चों की इच्छा भी पूछी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिता का या माता का अधिकार छीन लिया जाए।
1: जी
0: उनको बीच में एक टाइम लिमिट के साथ दिया जाता है कि वो माँ से मिले या पिता से मिले।
1: जी सर, मैं हमारे पास बहुत थोड़ा सा बचा है, यदि आपकी भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रेनबो हेल्पलाइन के आज के अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। हमारे साथ जुड़े हैं श्री सैयद रेहान, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हैं। सर, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे लिसनर्स को, जो अभी भी अपने मन की बात हमारे साथ शेयर नहीं कर पाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: देखिए, अगर कोई विवाद हो जाता है तो सबसे पहले आप उसमें हेल्पलाइन से शिकायत कर सकते हैं। CAW सेल हर ज्यूरिसडिक्शन में, पुलिस स्टेशन में बनाया गया है, आप वहाँ अपनी बात कह सकते हैं किसी भी घरेलू हिंसा के लिए। और अगर वहाँ पर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में भी अपना केस दायर कर सकते हैं अपने वकील के ज़रिए या इन पर्सन। दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर सेटलमेंट करने का एक मौका दिया जाता है मीडिएशन में, जो कि कोर्ट से आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप समझौता कर सकते हैं। मीडिएशन में आपको समाधान केंद्र के तहत ये सुविधा प्राप्त है, और हमेशा सरकार की तरफ से भी इस मामले में बताया जाता रहा है कि आप अपना विवाद समाधान केंद्रों द्वारा ख़त्म कर लें बजाय कोर्ट में जाने के।
3: जी, तो आज के रेनबो हेल्पलाइन में बस इतना ही। यदि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप बिंदास बोल में बता सकते हैं। तो सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतने सारे समाधान दिए हमारे लिसनर्स के सवालों का, और उन्हें सलाह भी दी कि कोशिश कीजिए कि लड़िए मत, झगड़ा मत कीजिए और जुड़ जाइए आपस में एक बार फिर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
3: थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर संतोष राव पहुँच चुके हैं और प्रोग्राम रहेगा आशियाना।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अब आपके साथ है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों ये समय होता है कार्यक्रम आशियाना का, और आज हम बात करेंगे आशियाना में उन रिश्तों की जो खून से नहीं बल्कि एहसास से बने हैं। जी हाँ, एहसास से बने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन हम आपको बता दें कि आकाशवाणी और हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो इस एहसास को सार्थक करता है, और इसीलिए जब जब बात होती है आकाशवाणी की तो हम यही तो कहते हैं कि ये है आपकी वाणी आकाशवाणी। और यही वाणी जब कानों के माध्यम से दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो बनता है एक प्यारा सा रिश्ता दिल से दिल तक का, है ना। ठीक वैसे ही जैसे फूल का खुशबू के साथ, चांद का चांदनी के साथ और जल का धारा के साथ, यानी ऐसा रिश्ता जो निस्वार्थ भाव से 90 साल के 32,850 दिन और 7,88,000 जी हाँ घंटे नॉन स्टॉप देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहा। जी हाँ, हालात चाहे बाढ़ के हों या तूफान के, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां हो या अंतरिक्ष में जाने का होड़ हो, हर समय यही रिश्ता बांधे रखता है जब स्टूडियो से हम जैसे एंकर की आवाज सुनाई देती है, ये कहते हुए कि ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप हमारे साथ हैं और हम हैं आपके साथ, क्योंकि आप हमारे और हम आपके दिल में रहते हैं, और इसीलिए जमाना इस बात को भी मानता है कि तुमसे अच्छा

जी हाँ, जिस रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी हो और जिसकी नीयत साफ हो तो दिल में प्यार तो बढ़ता ही है, और इसीलिए 90 सालों से आकाशवाणी हर उम्र के लोगों की रही है पहली पसंद। और जब जब इकरार करने का मौका मिला है ना, तो लोगों के लबों पर यही बोल आए कि तुमसे अच्छा कौन है।

दोस्तों, रिश्ते में सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की, और जो इन 90 सालों में आकाशवाणी ने लोगों का विश्वास जीता है वो अपने आप में एक अद्भुत सफर है। और इस सफर में कई ऐसे धुरंधर आए, जी हाँ, कई ऐसे धुरंधर आए जिन्होंने आकाशवाणी की साख पर 4 चांद लगा दिए। और आज के आशियाना प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऐसे 3 धुरंधरों के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज और अंदाज से न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि ये साबित भी कर दिखाया कि जब आकाशवाणी का साथ हो तो आपको मुकद्दर का सिकंदर बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद जब आकाशवाणी पर समाचार बुलेटिनों का सिलसिला प्रारंभ हुआ ना, तो हमारे दिल्ली स्टेशन पर अच्छी और मधुर आवाजें ढूंढने की पहल शुरू हुई और उस वक्त उम्मीदवारों की संख्या थी 3000। जी हाँ, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, 3000। और जब फरवरी 1948 में इन उम्मीदवारों में से समाचार वाचकों का चयन किया गया तो सबसे ऊपर नाम पता किसका था? जी हाँ, नाम था देवकीनंदन पांडे का, जिनकी आवाज जैसे ही समाचारों में सुनाई देती कि अब आप देवकीनंदन से समाचार सुनिए, तो राह चलता हुआ राही भी कुछ मिनट रुककर ना समाचार जरूर सुनता था। जी हाँ, कानपुर में पैदा हुए देवकीनंदन के पिता शिवदत्त पांडे अपने क्षेत्र के जाने माने डॉक्टर थे। मूल रूप से पांडे कुमार परिवार जो था वो कुमायूं का रहने वाला था, और शायद यही वजह थी कि देवकी जी के स्वर में एक पहाड़ी खनक सुनाई देती थी। देवकीनंदन पांडे जी की आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और 40 के दशक में अल्मोड़ा जैसी जो छोटी जगह थी ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल 2 रेडियो हुआ करते थे। एक स्कूल के अध्यापक जोशी जी के घर और दूसरा एक व्यापारी थे शाह जी के घर।

युवा देवकी नंदन पांडे जी को दूसरे महायुद्ध के समाचारों को सुनकर बहुत रोमांच होता था और वे सब कुछ मतलब अपना सारा काम धाम छोड़कर समाचार सुनने बैठ जाया करते थे। और उन दिनों जर्मनी रेडियो के दो प्रसारकों लॉर्ड होहो और डॉक्टर फारूकी का बड़ा नाम हुआ करता था और दोनों लाजवाब प्रसारण करता थे। उनकी आवाज हमेशा देवकी नंदन पांडे जी के दिलो दिमाग पर छाई रही और उन्हीं का अनुसरण करते हुए देवकी नंदन पांडे जी ने आकाशवाणी पर समाचार प्रसारण का शुरू किया एक नया ट्रेंड। दोस्तों, देवकी नंदन पांडे को अपनी शख्सियत की लोकप्रियता का अंदाज उस दिन लगा जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को उनकी समस्या सुनने के लिए अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया था। श्रीमती गांधी से जब देवकी नंदन पांडे का परिचय करवाया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा तो आप हैं हमारे देश की न्यूज वॉइस। इतना ही नहीं, पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल तो एक बार देवकी नंदन पांडे जी का नाम सुनकर उनसे गले लिपट गए थे। नए समाचार वाचकों के बारे में पांडे जी से जब पूछा जाता था तो वो यही कहते थे कि जो भी करो श्रद्धा ईमानदारी और मेहनत से करो, हमेशा चाक चौबंद और समसामयिक घटनाक्रम पर जो है जानकारी उसको रखा करो, जितना ज्यादा सुनोगे और पढ़ोगे उतना अच्छा आप बोल सकोगे, किसी शैली की है ना नकल कभी मत करो, कोई गलती बताए तो उसे सर झुकाकर स्वीकार करो, बताने वाले के प्रति अनुग्रह का भाव रखो, निर्दोष और सोच समझकर पढ़ने की आदत डालो, आत्मविश्वास आता जाएगा और पहचान आपकी बनती जाएगी। और यही सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। सरल स्वभाव के आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वक्ता देवकी नंदन पांडे का वर्ष 2001 में निधन हो गया था। बेशक आज वो नहीं रहे मगर उनकी आवाज और शैली हमेशा आकाशवाणी के गलियारों में गूंजती रहेगी।

0: हाँ हाँ हाँ हाँ यही प्यार है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो विद SR बोले तो संतोष राव। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों जब खत की बात होती है ना तो वो याद आ जाते हैं संस्मरण, जब 1999 में मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया था एज ए रेडियो जॉकी, और उस वक्त है ना ढेर सारे पत्र आया करते थे और पत्रों में दिल की बातें लिखा करते थे। वो खत आज भी मेरे पास है, मौजूद है, बहुतों के पास ऐसे खत मौजूद होंगे और उन खतों को भी जब जब देखा जाता है ना तो याद ताज़ा हो जाती है, आकाशवाणी का धन्यवाद देने लगते हैं, शुक्रिया अदा करने लगते हैं, है ना। और दोस्तों जब अब हम है ना उन धुरंधरों की बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में आशियाना में, जैसे कि अभी देवकी नंदन पांडे जी की बात की है और अब उस धुरंधर की बात हम करने जा रहे हैं जिनको कोई रेडियो जनक कहता है तो कोई आवाज का जादूगर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी जी की। वैसे रेडियो की बारीकियां सीखने का सौभाग्य मुझे उनके साथ मिला है और उनके व्यक्तित्व और बात करने का अंदाज इतना आकर्षक था कि ऐसा लगता था कि वो रेडियो के लिए ही ईश्वर ने उनको तराश कर इस धरती पर भेजा था। आकाशवाणी FM रेनबो पर कुछ साल पहले एक प्रोग्राम आया करता था ऑन एयर मेहमान, जिसमें ये सौभाग्य मिला था कि हम उनसे मुलाकात करके अमीन सयानी जी से हमने लाइव बातचीत की थी उस प्रोग्राम में। तो आइए उनको आपको सुनाते उस बातचीत का कुछ हिस्सा, क्योंकि आकाशवाणी में बहुत से लोगों का योगदान रहा है, उन्हीं में से एक है अमीन सयानी जी। अमीन सयानी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: भाई स्वागत की जरूरत नहीं है, मैं वैसे रेडियो में अपना घर है बिल्कुल
1: जी जी,
2: बल्कि मैं तो 7 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में पैदा हुआ था, करियर मेरा मतलब ये
1: जी बिल्कुल। बच्चा बच्चा जानता है आपकी आवाज से वाकिफ है और हर कोई इंसान जब भी कोई भी आवाज सुनता है तो वो तुलना करता है कि आपकी आवाज से, क्योंकि सबका अंदाज कहीं ना कहीं से आपकी आवाज से जरूर मिलता है।
2: अब क्या है कि आप सवाल पूछे तो मैं जवाब दूं
1: जी। सबसे पहले एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ स्टूडियो आ रहा था तो मैं लोगों से बात कर रहा था कि आज मैं जाकर इंटरव्यू करने वाला हूँ आपका। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने सबने कहा अमीन सयानी जी से आप बात कर रहे हो, तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका नाम है अमीन सयानी।
2: सयानी
1: जी, लेकिन अक्सर सभी लोग कहते हैं सयानी।
2: वो क्या है, इंग्लिश में ऐसे YNI लिखता हूँ ना
1: जी,
2: तो उससे वो सयानी हो गया
1: जी। लेकिन
2: तो मगर जब भी मैं बोलता हूँ रेडियो पर अपना नाम तो सयानी ही बोलता हूँ
1: जी। लेकिन कभी अगर जब गलत नाम लिया जाता है जब आप सुनते हैं, गुस्सा आता है आपको?
2: भाई गुस्सा नहीं आता, मतलब हंसना आता है कि भाई मैं सयानी नहीं हूँ, मैं सयाना हूँ।
1: जी जी,
2: ये नाम मेरा है सयानी
1: जी।
2: तो भाई ठीक है, वो गलती लोग करते हैं, करने दीजिए, कोई बात नहीं, मतलब
1: कोई बात नहीं,
2: सही नाम सयानी है। और संतोष जी से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा सही नाम बोले।
1: बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं भी सर, क्योंकि बचपन से मेरी भी आदत पड़ी हुई है सयानी जी बोलने की।
2: गलत आदतें जब पता चल जाए कि गलत है तो फौरन बदल लेना चाहिए
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश यही करूंगा कि आपसे जब भी मुखातिब होऊंगा तो आपको अमीन सयानी जी बोलूं।
2: आप महज अमीन भाई कहें
1: सर, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे,
2: अमीन अंकल कहें तो भी चल जाए।
1: अच्छा तब ठीक है। अच्छा एक बात, सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे आपसे, अमिताभ बच्चन को एक्टिंग का शहंशाह कहा जाता है तो वहीं आपको आवाज की दुनिया का बादशाह। जब जब आपके लिए ऐसा कहा जाता है तब तब आपका दिल क्या कहता है?
2: मेरा दिल ये कहता है कि लोग क्यों खामखा मुझे इतने इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ाते हैं
1: जी।
2: सवाल ये है कि मैं तो हमारे जितने भी सुनने वाले मेरे हैं उनको अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ, तो मुझे बादशाह वादशाह मत बनाइए भाई, वैसे भी डेमोक्रेसी का जमाना है, मुझे अपना नुमाइंदा बना लें तो भी चलेगा, अपना भाई अंकल जो भी आप कहना चाहें, और उम्र कम हो तो दादाजी भी चल जाएगा।
1: बहुत खूब। अच्छा एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं सर,
2: बोलिए,
1: इस मुकाम को हासिल करने के लिए लगन मेहनत के अलावा ऐसा और क्या है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता रहा है?
2: भाई इसकी जो राज की बात यह है कि मैं पैदा हुआ एक ऐसे परिवार में जो कि हमारी जो आजादी का जो आंदोलन था
1: जी,
2: उसमें बहुत गहरे उतरे हुए था, और उस जमाने के बड़े बड़े लीडर्स से बड़ा संपर्क था हमारे परिवार का, गांधी जी और पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद।

0: सरदार पटेल और ये तमाम लोग, यानी मैं इन सबको मिल भी चुका हूँ जब मैं छोटा बच्चा था, या तो उनके कदमों में बैठा हूँ या उनके करीब खड़ा रहने का मुझे मौका मिला है। और दो ऐसे स्कूल में मैंने पढ़ाई की जो कि बड़े नेशनलिस्ट स्कूल थे
1: जी।
0: एक तो था न्यू एरा स्कूल बम्बई
1: जी जी,
0: जिसमें मैंने गुजराती पढ़ी 7 बरस, और एक था जहाँ आखिरी मेरे 2.5 साल स्कूल के बीते, सिंधिया स्कूल ग्वालियर।
1: अच्छा,
0: ये दोनों स्कूलों में जो मेरे शिक्षक थे, जो माहौल था पूरा वो ऐसे ऐसा बिल्कुल नेशनलिस्टिक था कि भाई भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें, बड़े बड़ों की बातें, संतों साधुओं की बातें
1: जी।
0: और कुछ कहीं श्लोक, कहीं आयतें, कहीं कहावतें, ये सब हमारी तालीम का एक छोटा सा हिस्सा था
1: जी जी,
0: और बल्कि बेसिस था। और सबसे बड़ी बात हमने ये भी सीखी कि भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से करना
1: जी।
0: हालांकि न्यू एरा स्कूल में मैंने गुजराती और अंग्रेजी सीखी, और ग्वालियर में अंग्रेजी में ज्यादातर काम होता था, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी उर्दू हिंदी भी वहाँ ग्वालियर जाकर और जरा पॉलिश होने लगी। और मुंबई में जब मैं रहा, इतने वर्षों में पैदाइश यहीं की है, तो यहाँ तो कई भाषाएं चलती थी ना
1: जी।
0: अब गुजराती तो मैं पढ़ ही रहा था, बहुत अच्छी तरह बोल लेता था, बल्कि लिखता भी गुजराती में था, सोचता भी गुजराती में था, और बल्कि गिनता भी गुजराती में था।
1: अच्छा,
0: और तुर्रा ये है कि आज तक गुजराती में ही गिनता हूँ, लेकिन गिनने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है।
1: अच्छा, इसीलिए
0: बाकी भाषाएं भी यहाँ, अब जैसे रविंद्र संगीत से मुझे बहुत प्यार था, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक शांतिनिकेतन से रहा था, तो ये ऐसे उस्तादों से मैंने बहुत रविंद्र संगीत सुना। फिर मराठी के बहुत सारे शिक्षक थे
1: जी।
0: तो हमने मराठी की आरतियां और मराठी के कुछ गीत सीखे, और इस तरह से बहुभाषी एक माहौल सा बन गया। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरी अम्मा जो थी वो गांधी जी की शिष्या थी।
1: अच्छा,
0: और अम्मा काम करती थी प्रौढ़ शिक्षण में, एडल्ट एजुकेशन में। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि बेटे तुम एक काम करो कि हम हिंदुस्तानी को, सरल हिंदुस्तानी को बनाना चाहते हैं भारत की राष्ट्रभाषा
1: जी,
0: ताकि सब उसे प्यार से बोले, समझे, और ये भाषा आगे बढ़े, फले फूले, और तमाम भाषाओं की जितनी अच्छाइयां हैं वो अगर हिंदुस्तानी के जामे में, पहनावे में अगर वो अच्छी तरह से फिट हो जाए तो उसको भी आने दें
1: जी।
0: ताकि ये जैसे कि अंग्रेजी जबान भी कई भाषाओं से मिलकर फली फूली है
1: जी,
0: और बंगाली और मराठी का भी यही हाल है कि इन्होंने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए
1: जी जी,
0: खुले रखे
1: जी,
0: इसलिए बहुत सारे और भाषाओं के शब्द ही इसमें आते रहे। तो वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा बने, हिंदी उर्दू का सरल रूप, और उसमें जितनी भी चीजें आराम से हिंदुस्तानी में ढल सके ढल जाए। और यही देखिए, आप सोचें, यही भाषा थी जो कि हिंदुस्तानी फिल्मों और फिल्मी गीतों की भाषा थी
1: जी जी जी।
0: तो ये भाषा, इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने अम्मा से कहा कि बेटे तुम एक अखबार, एक फोर्टनाइटली जर्नल शुरू करो घर से
1: जी,
0: जो कि एडिट भी वहाँ हो, पब्लिश भी वहाँ हो, और जो 3 लिपियों में अलग अलग जिसकी प्रतियां हो, देवनागरी यानी हिंदी स्क्रिप्ट, उर्दू स्क्रिप्ट और गुजराती स्क्रिप्ट
1: जी जी,
0: लेकिन तीनों में भाषा लाइन टू लाइन एक ही हो, सरल हिंदुस्तानी।
1: अच्छा वाह,
0: अब तो वो शुरू हुआ, बाद में प्रिंट भी होने लगा घर पर ही, छोटा सा प्रेस भी आ गया। तो हम मुझमें ये शौक पैदा हुआ कि यार गुजराती बहुत पढ़ी, अंग्रेजी बहुत पढ़ी, अब जरा हिंदी भी तो जरा ज्यादा पढ़े। वो मैंने कहीं हिंदी उर्दू सीखी नहीं थी।
1: अच्छा,
0: तो फिर वहीं से सीखते सीखते जानते जानते बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीजें उसमें आती थी, बड़े अच्छे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, तो धीरे धीरे मुझे हिंदी का ज्ञान होता रहा और सरल हिंदी का
1: जी।
0: और इस तरफ से मैंने अपनी भाषा को संवारा, बिल्कुल सीधी सादी, आम फहम, सरल हिंदुस्तानी से।
1: आपका अंदाज, आपकी प्रस्तुति हमेशा लोगों को भाई है, और आप बातचीत में जिस तरह से

0: हिंदी उर्दू अंग्रेजी गुजराती भाषा का मिश्रण करते रहे हैं और बखूबी करते रहे, लोगों को भाते रहे हैं, आज इसका आधार हमारी समझ में आया है।
1: मैंने कोशिश ये की कि जो भी बोलूं कम से कम सही बोलूं,
0: सही बोलूं
1: और आसान बोलूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझे
0: जी।
1: तो ये अगर सब लोग आजकल के जितने भी अनाउंसर हैं और खासकर रेनबो के
0: जी,
1: उनसे उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि बेटों और बेटियों जरा जम के भाषा बोलना सीखो, सही और सीधी सी आसान सी प्यारी सी मीठी सी भाषा बोलो तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर। एसआर बोले तो संतोष राव। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 2:45 और 40 सेकंड। प्रोग्राम है आशियाना। और दोस्तों अभी आपने गीत सुना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और ये गीत है ना ये तुझे देखा तो ये जाना सनम। दूरदर्शन पे जब ये आवाज आती थी इंग्लिश न्यूज में तो वही सब लोग कहते थे वाह क्या बात है। लुक वाइज भी देखा जाए और आवाज भी है ना मधुर आवाज थी। जी हाँ, क्योंकि ये प्रोग्राम है आशियाना और हम आपको बता देंगे प्रोग्राम क्यों है खास, क्योंकि आज के हमारे आशियाने में उन धरंधरों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने आकाशवाणी के 90 सालों के सफर में निभाई है अहम भूमिका। और जिसकी बात मैं कर रहा था वो है रिनी साइमन खन्ना, हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, धन्यवाद।
0: नमस्कार रिनी जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इस वक्त आकाशवाणी की सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार देना चाहती हूँ, और खास उन सभी साथियों के लिए है ये बहुत बड़ा तोहफा या आप कहेंगे जिक्र जो हम करना चाहते हैं, जिनकी हम आवाज शायद कभी नहीं सुनते हैं और चेहरे तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, पर उनकी वजह से ही आप और हम आज घर घर में आने जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो अच्छा रिनी, थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
0: जी रिनी जी, क्योंकि आपका तो चेहरा दूरदर्शन पे दिखाई देता रहा है और काफी, हम तो बहुत बड़े फैन आपके रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ा सा कट कट कर आ रही है, तो अगर थोड़ी सी आप इधर हो जाएं ताकि सिग्नल थोड़ा सा और क्लियर हो जाए और हम आपसे ढेर सारी बातें कर सके।
1: जी, बट बिफोर यू टॉक अबाउट दूरदर्शन, संतोष जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी नींव, मेरी फाउंडेशन आकाशवाणी में ही हुई थी, और आकाशवाणी में मेरा पहला पहचान हुआ, उसके बाद दूरदर्शन आया।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि जब 13 साल की आप थी तो आपने ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी कार्यक्रम से अपने करियर की शुरुआत की थी, सही?
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल सही।
0: अच्छा वो सन कौन सा था?
1: शायद 80 या 79, इस टाइम पे मैं स्कूल में थी और मेरी एक्चुअली सबसे पहला पब्लिक शो हुआ था जहाँ पे लोगों ने मेरे को मतलब बहुत बधाई दी। और उन दिनों में एक कंपटीशन होता था, नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता था कॉल्ड शंकर्स इंटरनेशनल, और ये ज्यादातर पेंटिंग के लिए होता था पर स्पोकन वर्ड के लिए भी एक भाग था। तो उस स्पोकन वर्ड में मेरे को गोल्ड मेडल।

0: ऐसा कार्यक्रम है आकाशवाणी में जिसमें युवाओं को चांस दिया जाता है और शुरुआत भी वही होती है। हम कह सकते हैं कि पहला पायदान जो होता है ना, फर्स्ट स्टेप जो होता है रेडियो में आने का, वो युवावाणी प्रोग्राम होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मुझे भी याद है,
1: मुझे
0: भी याद है जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था तो एक टॉपिक के साथ किया था। आपको याद है वो टॉपिक?
1: प्रोग्राम शुरू हुआ था बाय डूइंग अ फीचर और उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर दिए जाते थे हमारे को। छोटा सा एक बक्सा था जिसमें आप टेप डाल के आप माइक्रोफोन, आपको एक एक्सटेंशन जैसे होता था वो मिल जाता था और उसके ऊपर आपने रिकॉर्डिंग्स करके वापस आकाशवाणी के स्टूडियो में आके उसको एडिट करके स्क्रिप्ट लिखना सीखते थे आप। और आपको ये कहा जाता था कि भई ये पढ़ के आप सुनिए ताकि टाइम के अनुसार आप स्क्रिप्ट लिखोगे। तो आपने जो प्रोग्राम बनाया उसको कैसे आप अरेंज करोगे, उसमें इंटरव्यूज हैं, साउंड बाइट्स हैं, ये सब आप सीखने को मिलता था और ये प्रैक्टिकल तौर पे सीखने को मिलता था। सिर्फ आप गेस्ट बन के और कोई और प्रोग्राम बना रहा वो नहीं होता था। तो इसलिए कि भाई आप इफ यू हैव टू बी अ गुड ब्रॉडकास्टर यू मस्ट नो दी निटी ग्रिटीज ऑफ पुटिंग अ ब्रॉडकास्ट टुगेदर। मतलब अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैटरी कहाँ होता है, आपको टायर के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए, पेट्रोल कहाँ डाला जाता है, स्टार्ट कैसे करते हो, बंद कैसे करते हो, एक्सेट्रा। तो ये सब इंफॉर्मेशन और नॉलेज और ट्रेनिंग दिया जाता था आपको युवावाणी में।
0: जी, तो अच्छा, आपने जो कार्यक्रम शुरू किया था वो हिंदी भाषा में किया था या अंग्रेजी भाषा में?
1: नहीं, मैं हिंदी आपके साथ बोल रही हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और मैं जानती हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर पढ़ती हूँ, लिखती हूँ कभी कभार और काफी वॉइस ओवर्स किए हैं मैंने हिंदी में। तो हिंदी मतलब कोई भी भाषा सीखने में इतनी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ ये है कि आप जब इस्तेमाल नहीं करते हो इस तरह से, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप उसमें ना प्रवेश करें तो अच्छा है। तो इंग्लिश में ही मैं प्रोग्राम्स करती हूँ और इंग्लिश में ही मेरा ज्यादा पकड़ है। आप कह सकते हैं।
0: अच्छा रीनी जी, आकाशवाणी के साथ आपका बहुत लंबा सफर रहा है और आज भी आप जुड़ी हुई हैं। जब आप इस सफर को देखती हैं तो बहुत सी यादें जहन में आ जाती होंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपका एक बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे को ऐसा एक प्रोग्राम में आमंत्रित किया जहाँ आपने देश के सबसे ऊंचे कद के प्रसारकों में से दो का उल्लेख किया और दोनों के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य हुआ था। तो मैं ये तो मेरे लिए सचमुच बहुत बड़ा सम्मान है कि मेरा नाम उनके साथ भी लिया जा रहा है। और एज फार एज मेमोरीज आर कंसर्न्ड, देखो एक एक चीज मेमोरी है और आकाशवाणी के स्टूडियोज में जब हम काम करते हैं तो वहां पे इतने बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने काम किया, उन्हीं के साथ आपने कंधा मिला के काम किया, तो बहुत बड़ा यू नो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और उनके कदमों में चलना और उनके साथ सीखना वो कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो कैसे एक प्रोग्राम को अप्रोच करते हैं, वो उनके टूल्स क्या है। देखो आप और हम के टूल तो यही है ना, हमारी आवाज। तो आप अपनी आवाज को कितना मधुर बना सकते हो, कितना अच्छा आप बोल सकते हैं और लोगों के दिल में समा सकते हो, वो एक आर्ट है। और वो कला सीखने के लिए अगर आपके पास उस्ताद हैं या मास्टर्स हैं तो इससे बड़ा देन तो है ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए न्यूज रूम में हो या स्टूडियोज में हो जहाँ पे अनाउंसमेंट होती थी या हम कमेंट्रीज करते थे, हर एक प्रोग्राम में, हर एक भाग में मौका मिला कि भाई हम दूसरों से सीखें और अपनी कला को पॉलिश करें, अपनी कला को होन करें कि भाई हम भी उन सब दिग्गजों के साथ गिने जा सके।
0: जी, क्योंकि
1: जी
0: जी बोलिए बोलिए।
1: नहीं, मेरा ये कहना था कि इवन अ सिंपल गुड मॉर्निंग जो होता है, या इवन अ सिंपल दिस इज ऑल इंडिया रेडियो कहने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, एंड टू मेक श्योर कि आप वही टोन

0: में वही अंदाज में लगातार 90 साल बोले और उसमें भी आपका एक अलग पहचान हो, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट
1: होता है।
0: जी, जी,
1: और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म आकाशवाणी देता है उन उभरते हुए कलाकारों को भी जिनके अंदर हुनर होता है, और इसीलिए हर कलाकार गर्व करता है आकाशवाणी पर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: अगर आकाशवाणी का रेडियो या दूरदर्शन नहीं होता तो आज रिनी अपने आप को कहाँ पाती?
0: कहीं ना कहीं जहाँ लोगों के साथ मैं जुड़ पाऊँ, क्योंकि आई थिंक वी ऑल आर बॉर्न विद अ पर्पस, और मेरा पर्पस तो सिर्फ ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ूं। आपको ये भी शायद पता होगा कि आकाशवाणी के साथ और दूरदर्शन के साथ तो मेरा मतलब करियर जुड़ा ही है, पर मैं लोगों के दिलों के साथ इस तरह से भी जुड़ी हूँ कि सारे मेट्रोज में इंग्लिश की अनाउंसमेंट जो होती है वो मेरी आवाज में होती है। एयरटेल जब आया था, सबसे पहले जो सेल्युलर टेलीफोन सिस्टम आया था उसमें भी मेरी आवाज ही थी। तो एयरटेल की आवाज में मेरी थी, MTNL में है, BSNL में है, कई कई कंपनियों में है मेरी आवाज। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक हम्बल टोकन है कि भाई मैं किसी भी सर्विस के लायक हूँ, और लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला। दे आर वेरी पेशेंट to listen to me and they are very fond of listening to me. मुझे कभी कभी लगता था कि भाई हर जगह, जैसे कभी कभी मेरा बेटा जो है वो बोलता था कि माँ आपकी आवाज हर जगह है, आप पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? मतलब मैं टेलीफोन उठाता हूँ तो आप हैं, मैं मेट्रो में जाता हूँ तो आप हैं, कभी कभार तो एयर इंडिया की फ्लाइटों में भी आपकी आवाज आती है, फिल्मों में भी आपकी आवाज आती है, तो मैं थक चुका हूँ। तो इस तरह से मैं कभी कभी सोचती थी कि क्या लोग इस तरह से सोचते हैं, और कभी मैं पूछती भी थी कि भाई आप थक तो नहीं गए हो मेरी आवाज सुन के? और लगातार कोशिश ये रहती है कि आपकी आवाज लोगों को बोर ना करे।
1: बिल्कुल,
0: आप जो कहते हो वो लोगों को अच्छा लगे और बुरा ना लगे,
1: और सब का क्रेडिट जाता है आकाशवाणी को, है ना?
0: और भगवान का
1: जी जी भी।
0: अच्छा, तो बहुत बड़ा दान,
1: बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज हम बहुत सुनते रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो क्योंकि समय हमारे पास अब कम बचा हुआ है, तो दिल्ली मेट्रो की थोड़ी सी उद्घोषणा हो जाए जैसे आप करती हैं।
0: दिस इज दिल्ली मेट्रो। आई होप दैट योर जर्नी विद आकाशवाणी हैज बीन वंडरफुल। प्लीज माइंड द गैप बिटवीन दिस स्टेशन एंड द नेक्स्ट।
1: वाओ, क्या बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी पे न्यूज पढ़ा करती थी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि जो पहली आवाज होती थी, जैसे देवकी नंदन पांडे जी कहते थे, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। मैं नकल करता हूँ ऐसे ही बोलने की, ये आकाशवाणी है, अब आप संतोष राव से समाचार सुनिए। आपकी वो अंदाज, आपका जो मधुर आवाज थी, वो हम सुनना चाहते हैं जाते जाते।
0: दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय रीनी साइमन खन्ना।
1: वाओ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा रीनी जी आज आपसे बातचीत करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आकाशवाणी एफएम।
0: थैंक यू संतोष, थैंक यू वेरी मच।
1: तो दोस्तों, ये सारे थे आज के धुरंधर जिनसे हमने बातचीत की, और आकाशवाणी ने ऐसे ऐसे धुरंधर दिए हैं हम सब के लिए जो एक मील का पत्थर बने, कोहनूर है हिंदुस्तान के लिए। आज थे हमारे साथ देवकी नंदन पांडे जी की हमने बातचीत की, अमीन सयानी जी से कि उनकी बातचीत हमने आपको सुनाई, और साथ ही साथ लाइव बातचीत की रिनी साइमन खन्ना से। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है विदा आपसे, लेकिन 4:05 पर फिर आपसे मुलाकात करेगा अल्फा जैन में। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। आज रेडियो डॉक्टर में, क्योंकि आज वर्ल्ड आईबीडी डे है और इसलिए ये कार्यक्रम आज का स्पेशल होगा। आईबीडी क्या है, इन सब के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब स्टूडियो में।
3: थैंक यू मैम फॉर वेलकमिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर।
2: थैंक यू सर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी, और आप अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार हुई, हमें फोन करने के लिए तैयार रहिए। मैं डॉक्टर की पसंद का एक गीत आपको सुनवा रही हूँ।
4: मैंने

0: एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर और आज वर्ल्ड आईबीडी डे है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, आज का ये दिन खास है बिकॉज कई वर्षों से इसको ऑब्जर्व किया जाता है आज के दिन। बहुत से लोग तो पहले यही जानना चाहते होंगे कि आईबीडी क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में बताएं।
1: जी मैम, ये एक बहुत ही अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है। ऑन 19th ऑफ मे वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड आईबीडी डे। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ दिस डिजीज। आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि हमारे आंतों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनमें लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आ जाता है तो उनको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। बाउल मतलब आंत, डिजीज मतलब उसकी बीमारी। तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर दो तरीके के आंत होती है, एक स्मॉल बाउल होती है, एक लार्ज बाउल होती है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। जब कोई बीमारी उसके इन्फेक्शन कर देती है लॉन्ग टर्म, उसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं।
0: ओके, बहुत सारे फोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए डॉक्टर साहब, बिकॉज जैसे ही लोगों ने सुना कि आज का विषय ये है, तो सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं और आप यहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे, तो हम किस लिसनर से बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, अनूप कुमार फ्रॉम रांची।
0: जी सर, बताएं।
2: सबसे पहले तो हैप्पी वर्ल्ड आईबीडी डे। और सवाल पूछना था।
0: जी पूछे।
2: अमीबाइसिस डस्ट कॉज्ड बाय वाटर, अमीबाइसिस,
1: हाँ जी,
2: इसका क्योर कैसे?
1: देखिए, अमीबियासिस जो होता है ये एक कीटाणु होता है जिसके वजह से बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर ये फूड एंड वाटर में कोई कॉन्टामिनेशन हो तो उसके वजह से हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका जो है पैरासिटिक के लिए दवाइयां आती हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी,
1: प्रॉब्लम इनके साथ होती है कि बार बार अमीबियासिस हो जाता है तो इसलिए बार बार इन्फेक्शन हो सकती है। बट ये किसी ऑलरेडी पेशेंट जिसको आईबीडी है, उसको अगर वो गलत खान पीन से होता है, उसको बार बार अमीबियासिस हो सकता है, बार बार फ्लेयर अप हो सकता है। ही इज मोर प्रोन ये बीमारी से, क्योंकि इनकी बड़ी आंत कमजोर होती है, इन्फेक्शन के ग्रस्त होती है, तो बार बार ये इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो ऐसे मरीजों को अपने खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन वे में देखना चाहिए और फूड एंड वाटर का जो है खास ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी जगह से लें और उनका केयर करें।
0: यानी कि इन्फेक्शन जो होता है, इससे जो इन्फेक्शन लगने के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है डॉक्टर साहब, इज इट दैट?
1: नो, ये प्रॉब्लम पहले से ही होती है। हो सकता है
0: पहले से, मतलब जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी होता है?
1: नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी हो सकती है। बट ये है कि जब मालूम पड़ता है हमें, तो बेसिकली हमें ये डिस्टिंग्विश करना होता है, एक एंटिटी होती है जिसको एक्यूट कोलाइटिस कहते हैं। एक्यूट कोलाइटिस मतलब एक ऐसी कोलाइटिस या इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज बाउल जो कि 6 महीने से कम

0: ड्यूरेशन की है। अगर कोई इन्फेक्शन या डिजीज प्रोसेस लार्ज बावल की होती है जो कि 6 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है, उसको हम क्रॉनिक कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज का नाम देते हैं। कभी कभी कोई भी डिजीज जो होती है धीरे धीरे धीरे बॉडी में पलपते रहती है और एक टाइम आता है जब वो सामने आती है। जो ये सामने आती है ये ऐसा हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन के टाइम में वो सामने आए, जैसे डायबिटीज़ भी, हाइपरटेंशन भी। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये डायग्नोज होती है उसी दिन ये बीमारी बॉडी के अंदर पैदा हो गई, ये पहले से होती है लेकिन किसी कारण से बॉडी भी फाइट करती है डिजीज़ को दबाने में, बट एक टाइम आता है कि बॉडी नहीं कर पाती और वो अपने फ्लेयर अप करके सामने आ जाती है। ऐसे ही होता है कि कोई किसी ने खाना पीना खाया और उसको इन्फेक्शन हो गया और फिर वो सामने आई, फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया, ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है 1-2 हफ्ते में एंटीबायोटिक्स या कुछ वो करके ठीक हो जाती है, बट अगर वो नहीं ठीक होती, कभी कभी 2-3 वीक, 3-4 वीक तक ब्लीडिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती हैं, अर्जेंसी हो सकती है, तो ये सिम्टम जब 2-3 हफ्ते तक एक्सटेंड करती है तब हमें शक होता है कि ये पेशेंट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त है, फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन इन टर्म्स ऑफ मेजर इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी मतलब कोलोन की एग्जामिनेशन। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो कि जैसे हमारे गार्डन पाइप्स होते हैं पानी देने के लिए पाइप होता है, वैसे ही पाइप होती है, उसमें लाइटो कैमरा होता है। तो पेट को साफ करने के बाद डॉक्टर्स या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये पॉटी के रास्ते हम उस पाइप को करते हैं और हमें बड़ी आंत देखने को मिल जाती है। बड़ी आंत से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली 3 mm का बायोप्सी होता है, उसको फिर लेके हम लैबोरेट्री में भेजते हैं। लैबोरेट्री में वो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन होता है और तब हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त पेशेंट है। ज्यादातर कभी कभी पेशेंट शॉक हो जाता है कि मैं जो अभी तक पता नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम हर चीज का होता है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन हर चीज का होता है, तो उसमें ये पता चल सकता है। इसीलिए हमारा ये रिकमेंडेशन है किसी को भी अगर सिम्टम्स हो इन टर्म्स ऑफ लूज मोशंस, ब्लीडिंग पीआर, पॉटी के रास्ते में ब्लड आ रहा हो, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हो, मोर देन 2-3 वीक्स ही शुड और शी शुड गो टू हिज विजिट अ डॉक्टर एंड गेट हरसेल्फ और हिमसेल्फ एग्जामिन फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और IBD।
1: सो यू सजेस्ट कि अगर 2-3 हफ्ते तक आपको लगातार पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में दर्द है या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आप यकीनन समझें कि कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर को जरूर देखें। यहां पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के साथ।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इसके बारे में।
1: और आजकल हम ये देख रहे हैं दैट आईबीजी का एज जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ भी जा रहा है।
0: डाउनवर्ड
1: ट्रेंड मीन्स पहले हम यूजली ये सोचते हैं कि जो ये बीमारियां हैं 40 से 60 साल की उम्र में होती हैं, पर आईबीडी वैसे भी बीमारियां एक्टिव एज ग्रुप्स की हैं जो कि 25 टू 45 एज ग्रुप की है। एंड आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि इवन बच्चे और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, विच इज इम्पोर्टेंट टू रिकोगनाइज, बिकॉज इस एज ग्रुप में जब ये सिम्टम्स आते हैं क्योंकि लूज मोशंस होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो इन बच्चों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसिस बहुत आ जाती हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसिस के साथ साथ बच्चों में ग्रोथ फेलियर्स एंड अदर थिंग्स आ जाती हैं, और इनकी जो दवाइयां होती हैं वो काफी स्ट्रांग दवाइयां होती हैं, कभी कभी इम्यूनो सप्रेसेंट चलती हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक ये चलती हैं और ये आजीवन चलती है। तो बच्चों में जब दवाइयां देंगे तो ऑब्वियसली कोई 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा होगा तो उसको ऑल नेक्स्ट 40-50 इयर्स तक ये दवाई लेनी है। तो ऐसी चीजें आती हैं और थोड़ा सा डिफरेंट होता है आईबीडी का प्रोफाइल बच्चों में।
0: आपने कहा आजीवन चलती हैं, तो ये क्या ठीक नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं होता?
1: नहीं मैम, जैसे मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, ये डिजीज भी एक क्रॉनिक डिजीज है, इसमें दवाइयाँ कंट्रोल कर सकती हैं बट क्योर नहीं कर सकती। क्योर मतलब हम समझते हैं हमारी भाषा में, हमारे डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर वो डिजीज चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन टूबोक्लोसिस में भी 6 से 9 महीने तक दवाई देते हैं, उसके बाद टीबी खत्म हो जाती है, उसके बाद और देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जैसे डायबिटीज है, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई से कंट्रोल हो सकती है लेकिन आज तक साइंस, इंग्लिश साइंस में वो क्योर नहीं हो सकती। मेडिसिन हाइपरटेंशन, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई लेंगे तो कंट्रोल होगा, दवाई नहीं लेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे ही आईबीडी में भी दवाइयां चलती रहती हैं। एंड इनफैक्ट धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी की भी एज होती है, आपकी भी एज होती है, तो बीमारी की भी एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी आगे आगे आएंगी, तो दवाई की डोज भी बढ़ेगी, डिफरेंट दवाइयां भी यूटिलाइज होंगी और आगे आगे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। इसीलिए आपको डॉक्टर्स की निगरानी में रहना चाहिए। पर अच्छी बात ये इसके साथ ये है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी होती है, इसमें दवाई लेंगे तो यू विल बी परफेक्टली ओके, आप एकदम

0: हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारे पेशेंट्स क्या 2-3 साल बाद जब ठीक हो जाते हैं तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं क्योंकि इतने अच्छे हो गए। बट आमन ऐसा होता है कि वो फिर 6 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद दोबारा उनको सिम्टम्स आ जाते हैं, दे कम बैक टू अस अगेन।
1: तो इसका मतलब कि अगर इतने लंबे समय तक आजीवन की बात कर रहे हैं आप, तो दवाइयां लेने का बाकी इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज मेडिसिन तो अफेक्ट करते हैं अगर आप लंबे समय तक लेते हैं, और कोई बीमारी भी हो जाने का डर होता है?
0: ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया। जब हम लंबे देते हैं तो नॉट ओनली दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस बट दवाइयों का खर्चा भी होता है, ये भी मन में रखना पड़ रहा। बट अच्छी बात यह है कि अल्सर्टिव कोलाइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं मिसिलामीन, ये बहुत अच्छी दवाई है। 99% पेशेंट्स में स्टेबल रहती हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सिर्फ इसमें साइड इफेक्ट फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो जाता है, इसलिए हम हमेशा इस दवाई के साथ फोलिक एसिड देते हैं और ये चलती रहती है। लोग 5, 10, 20, 30 साल तक लेते रहे। आई हैव मेनी पेशेंट्स हु हैव टेकन टिल 15 to 20 years विदाउट एनी प्रॉब्लम्स।
1: डॉक्टर साहब, फॉलिक एसिड से भी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है?
0: फॉलिक एसिड तो एक विटामिन है मैम। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अच्छी चीजों का भी एक्सेस अच्छा है।
1: बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम में तो जरूर खिलाते हैं ये,
0: यस यस,
1: और बहुत सी वेमेन को होता है ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं ये बात जानती थी कि फॉलिक एसिड से हो जाता है
0: थोड़ा। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी इज ए डिफरेंट साइंस क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉजेज होते हैं, सो टुडे टॉपिक नहीं है बट
1: कॉन्स्टिपेशन वो भी एक बॉबल प्रॉब्लम
0: डेफिनेटली प्रॉब्लम है।
1: चलिए हम यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारे एक दो लिसनर्स फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते मैम, मेरा नाम जतिन है, मैं आंखों से दृष्टि बाधित हूँ।
2: जी, सवाल पूछे।
3: जी, सवाल ये है, हमारे पापा के 2 दिन से लेटरिन आ रही है मैम। ठीक, हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे, वो जैसे खिचड़ी भी खाते हैं, दवाई भी ले रहे हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो उसके पश्चात भी नहीं बंद हो रही है सर,
2: लूज मोशन हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं?
3: जी जी जी जी जी मैम, ऑफ कोर्सली।
4: कितने दिन से हो रहे हैं?
3: जी सर, डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको नमस्कार।
4: नमस्कार जी।
3: जी, 2-3 दिन से हो रहे हैं सर।
4: 2-3 दिन से हो रहा है। स्टूल में ब्लड वगैरह भी आ रहा है क्या?
3: नहीं नहीं, हाँ हाँ सर, एक बार आया था लेकिन आँव बन गया था।
4: तो ये तो अगर 2-3 दिन से ही आ रहे हैं, क्या ये अभी 2-3 दिन से आए या बहुत मतलब पहले भी रिपीटेड आ रहे हैं कि हर 15-20 दिन में ऐसे 2-3 दिन बार आ रहे हैं?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं हर 2-3 दिन में
4: सुबह शाम आ रहे हैं। कितने 2-3 दिन से ही आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हर महीने 2-3 दिन आता है?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं सर, ओके, 2-3 दिन से आ रहे हैं। 2-3 दिन से,
4: ठीक है।
3: 2-3 दिन
4: तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है, इसमें आप पेशेंट को ORS दे दीजिए, लोकल किसी ORS का घोल दे दीजिए और स्टूल टेस्ट करा लीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि किस तरह सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई और बीमारी है। ज्यादातर ये 2-3 दिन आप और ORS देंगे और उनको दलिया, खिचड़ी, पोहा, चिरुआ, तरल पदार्थ दे देंगे तो उसी से ठीक हो जाएंगे।
2: थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हेलो।
5: हेलो
2: जी, कौन?
5: हाँ जी मैडम,
2: अपना सवाल पूछे।
5: मैडम, हमें ये पता करना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो आए हुए हैं, कि हमें सुबह सुबह मैं एक टैबलेट लेता हूँ खाली पेट, काफी लंबे समय से ले रहा हूँ, उसके बारे में पूछना है क्या लेना उचित है?
4: हाँ, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कुणाल बोल रहा हूँ।
5: अच्छा, ना डॉक्टर साहब नमस्कार।
4: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, ऐसा है, एक तो मेरे को प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद मेरा खाना ऊपर आता है
4: जी,
5: और दूसरी प्रॉब्लम है मेरे को डकारें बहुत आती हैं
4: जी,
5: तो मैं ये जब टैबलेट लेता हूँ तो मेरे को रिलीफ रहता है, सुबह खाली पेट लेता हूँ, उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाना पीना होता है
4: जी,
5: उससे रिलीफ जरूर रहती है मुझे
4: जी,
5: तो लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है, खाना भी ऊपर आता है
4: जी,
5: और खैर डकारें भी बहुत आती हैं, लेकिन पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए मैं क्या करूं, यदि कुछ बता दीजिए।
4: ठीक है, ठीक है। तो ये आपको जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं GERD या गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, ये आम भाषा में एसिडिटी और गैस एसिडिटी की बताते हैं। इसमें दो मेन, एक तो आप दवाई ले रहे हैं, दूसरा है ये जो पेंटोप्रोजोल की दवाई आप ले रहे हैं, तो ये बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब दवाई है और जो डोज में आप ले रहे हैं, एक ही दवाई ले रहे हैं, ये आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बट जिस टाइम लिमिट में कॉम्प्लिकेशंस आती है वो लंबी है, जब 4-5 साल ले लेंगे तो इसमें किडनी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, अगर 10 साल तक लेंगे तो बोन्स वीक हो सकती है। आप मेन दवाई के साथ साथ डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखें, खट्टी चीजें का सेवन ना करें, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, दूध ना ले और ज्यादा फ्राइड चीजें और ऑयली और स्पाइसी चीजों का सेवन ना करें।
2: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, मैं एक ये मैसेज शामिल कर रही हूँ। इनका नाम अंगद यादव है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं कि मेरी उम्र 34 वर्ष है, मुझे गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर ने कहा था दूध नहीं खाने के लिए, मीठी चीजों को भी मना किया था, कहा कि मीठे से एलर्जी है, मैं 6 महीने बाद दूध पिया, मुझे चक्कर

0: लगा, 5 मिनट बाद ठीक हो गया, ये क्यों हुआ क्या आप बता सकते हैं?
1: ये जो दूध नहीं पीना जो मना करना है, ये ज्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टोज शुगर होता है जो कि दूध में होता है। जब बच्चे होते हैं, ये माना गया है रिसर्च के द्वारा दैट आफ्टर 10 ईयर्स ऑलमोस्ट 73% ऑफ द एशियन पीपल मे बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो हमारे अंदर एक एंजाइम होती है रेनिन, जो छोटे बच्चों में तो होती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो नहीं होती, इसलिए हम दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आज इनके डॉक्टर्स ने मना किया हुआ होगा।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और भी कुछ मैसेजेस हैं उसे मैं शामिल कर लूं। ये संध्या गुप्ता जी का है, गजरौला उत्तर प्रदेश से, लिखती है सर, आर सार्कोइडोसिस और अमाइलोडोसिस आर डिजीज ऑफ लिवर एंड इंटेस्टाइन।
1: Yes, they may be, but they are mainly diseases of the lung.
0: Okay. And ye pucha hai, if I eat anything spicy, then I have to rush to the restroom. Is it a symptom of IBD? Naam aapne apna likh ke nahi bheja hai.
1: Yes, they may be a symptom of IBD. It needs to be investigated by a proper gastroenterologist doctor.
0: मुझे हाइड्रोजन ब्रीदिंग टेस्ट में मैलअब्सॉर्प्शन एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन फाइंडिंग हुई है एंड एंडोस्कोपी में इसोफेजियल बल्जिंग फाइंडिंग हुई है। 3-4 सालों से भूख नहीं लगती है और बोवल मूवमेंट हार्ड होता है। बताने के लिए कृपा करें, मेरी उम्र 47 है, क्या आईबीडी से लिंक है? नरेंद्र सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से।
1: ये आईबीडी से बहुत ज्यादा लिंक नहीं लगता बिकॉज इन्होंने जो मैलअब्सॉर्प्शन सिंड्रोम बताया है, एक बहुत छोटे तरीके में क्रोन्स डिजीज जो भी आईबीडी का होता है, स्मॉल बावल, ये हमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा बाय टर्म्स ऑफ सीटी एंट्रोग्राफी और एंड मे बी स्पाइरल एंट्रोस्कोपी करके, बायोप्सी करके, कि इनको क्या डिजीज है।
0: ओके, इकोलाई होने से क्या ये बीमारी होने का खतरा है और इस बीमारी ये किस लिए होता है, आईबीडी क्यों होता है? ये तो बताया अभी आपने बहुत ही अच्छे से।
1: इम्यून डिजीज होती है आईबीडी एंड इकोलाई से एक्सेसिबेशन हो सकती है, लेकिन मतलब बीमारी बिगड़ सकती है बट ये बीमारी कॉज नहीं करती। इकोलाई डजंट कॉज आईबीडी।
0: ओके, और ये पूछा है ककरोला द्वारका से शंकर लोध ने कि सर, माय क्वेश्चन इज, इफ आई हैव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देन आई हैव सीवियर हेडेक, देन व्हाट एल्स इज टू बी डन बाय माय सेल्फ? सरदर्द बहुत होता है, दैट्स व्हाट ही
1: सेड। इट इज वेरी कॉमन, जैसे मैंने गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में लाइट हेडेडनेस, हेडेक या वो माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकता है। तो इट इज अ चिकन एंड एग सिचुएशन दैट हेडेक कॉजेज गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्राइटिस कॉजेज हेडेक। तो यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट फॉर बोथ एंड सी कंट्रोल वन ऑफ देम एटलीस्ट एंड ऑल्सो डाइट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे डाइट में अगर गैस्ट्राइटिस है तो दूध ना लें, ज्यादा चाय कॉफी ना लें, खट्टी चीजें ना लें, खट्टे में नींबू, संतरा, मौसम्बी, अचार, आमला, इमली, इन सेवन ना करें। ज्यादा फ्राइड फूड्स, बटर, घी का सेवन ना करें। राजमा, छोले, फूलगोभी ना लें, ऑयली एंड स्पाइसी फूड ना लें। ये इनको कंट्रोल करें तो शायद आपके गैस्ट्राइटिस कंट्रोल हो जाए, तो हो सकता है कि हेडेक भी कंट्रोल हो जाए।
0: बहुत बढ़िया, एक लिस्नर से जुड़ते हैं मुंबई से। हेलो।
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: सदाशिव पालकर, नई मुंबई सानपड़ा
0: जी। क्या सवाल है आपका?
2: मेरा सवाल है, लूज मोशन का तकलीफ है। डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जी, सदाशिव जी।
2: डॉक्टर साहब, मुझे लूज मोशन की तकलीफ ऐसी है कि लूज मोशन ये होता नहीं है, एक दिन छोड़ के होता है तो कड़क पत्थर के जैसे तो ऐसा होता है। अगर एक दिन मैंने त्रिफला नहीं लिया तो दूसरा होता ही नहीं, दूसरे दिन त्रिफला लिया तो हो जाता है, त्रिफला न लो तो दूसरा दिन टॉयलेट होता ही नहीं। क्या समस्या हो सकती है?
1: तो ये आपको जो समस्या है कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। इसमें आप त्रिफला ले रहे हैं लेकिन आपको नेचुरल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले फूड एंड वाटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। वाटर आप करीब करीब 10 से 12 ग्लास लें और साथ में फाइबर खाने में ज्यादा लें। फाइबर होता है सलाद, फ्रूट्स, इन सब में होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप तीनों टाइम, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों टाइम खाने के साथ एक कटोरी सलाद का लें। इससे आपके बॉडी में फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, हो सकता है कि अपने आप से ठीक हो जाए।
2: साथ क्या कटोरी लेना है सर? सॉरी,
0: सैलेड सैलेड क्या
2: सैलेड एक कटोरी लेना है।
1: एक कटोरी तीनों टाइम, सुबह दोपहर रात को, तीनों टाइम खाने के साथ एक कटोरी।

0: सिराज का ले, और आप एक छोटा सा डायबिटीज और थायराइड के लिए अपना ब्लड टेस्ट करा ले, क्योंकि ये दोनों सबसे कॉमन डिजीजेस होते हैं जिससे कि ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है।
1: नहीं मुझे सर, ये मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, कोई भी समस्या नहीं मुझे।
2: बहुत बढ़िया, आप सैलेड खाइए एंड जैसा डॉक्टर ने बताया कि आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, आप डायबिटीज और इसकी बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया आपसे पूछूं कि आईबीडी मुख्य रूप से किन बीमारियों की तरफ इशारा करता है, जैसे एक तो ये आपने बताया तो मुझे लगा।
0: जी एक्चुअली ये आईबीडी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है डायबिटीज के साथ भी और थायराइड के साथ भी, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑटो इम्यून डिजीज कहा के कॉन्टेक्स्ट में आता है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे बॉडी में कुछ तत्व होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ज्यादातर इनका काम होता है कि बाहर से एक्सटर्नल जो बीमारियां या डिजीजेस आती है उनको रोकना, उनके साथ फाइट करना। बट कभी कभी कुछ कारणवश, जो अभी भी पूरी तरह से शोध नहीं पता है, बट ये लिम्फोसाइट्स बॉडी की ही डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो आईबीडी में लार्ज इंटेस्टाइन या बाउल को डैमेज करती है तो उनका नाम इन्फ्लेमेटरी लेवल डिजीज हो जाता है। अगर वही लिम्फोसाइट्स हमारे थायराइड ग्लैंड होता है जो कि एक हार्मोन थायराइड हार्मोन बनाता है उस ग्लैंड को इफेक्ट करती है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म के संदर्भ में आ जाता है। और पैंक्रियाज हमारी एक और ग्लैंड होती है जो कि स्टमक और इसके बीच में होता है, इंटेस्टाइन के बीच में, जो कि आम ज्यादातर ये शुगर कंट्रोल करने में रहती है। अगर उनको हम वो ऑटोइम्यून डिजीज इफेक्ट करती है तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इनका कॉन्टेक्स्ट है,
2: ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो
0: कॉम्प्लिकेशंस एंड इन सब में जो इनको आईबीडी भी होती है उनको ये डायबिटीज भी ज्यादा हो सकती है, थायराइड की बीमारियां भी ज्यादा हो सकती है, और जिनको आईबीडी है इन बीमारियां होती हैं तो वो ज्यादा सीवियर भी हो सकती है आईबीडी पेशेंट्स में।
2: क्या पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो जा सकता है इसे डॉक्टर साहब या नहीं?
0: एक्चुअली पाइल्स और आईबीडी का एक ही कॉमन चीज है, वो है सिम्टम कि दोनों में ब्लड आता है, बट अदरवाइज बेसिक चीज में इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाइल्स हम जो टेक्निकली समझते हैं वो हेमोरॉइड्स के वजह से होता है। हमारे एनस के आसपास कुछ ब्लड वेसल्स होती है, कॉन्स्टिपेशन में वो एंगॉर्ज हो जाती है और ब्लीड करती है, उसको हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स इज यूजली पेनलेस, उसमें लूज मोशंस नहीं होते, इनफैक्ट उसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, स्टूल्स ज्यादा हार्ड आती है, उन्हीं को पाइल्स होता है। अदर देन द ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में पेट में दर्द होता है, पाइल्स इज पेनलेस। इसमें लूज मोशंस होती हैं, पाइल्स में स्टूल्स हार्ड होती हैं। तो एक्सेप्ट फॉर ब्लीडिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली रिवर्स।
2: ओके, हम और भी बहुत सारे सवाल डॉक्टर से करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: जिंदगी भले ही रुलाए लेकिन अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे ना तो उतना रोना नहीं पड़ेगा, कम से कम जिंदगी थोड़ी आसान जरूर रहेगी, है ना डॉक्टर साहब? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक मैसेज आया हुआ है एडवोकेट वारिस अली खान साहब का, संजय नगर ऐश बाग लखनऊ से। पूछते हैं कि क्या कोलाइटिस पेशेंट को मीठा नहीं खाना चाहिए, एक सवाल है। दूसरा है, कोलाइटिस पेशेंट को क्या कब्ज भी होता है? और उन्होंने एक सिरप का नाम लिखा है कि वो ले सकते हैं क्या, जो ये नाम हम यहाँ नहीं ले सकते डॉक्टर साहब?
2: देखिए ऐसा है, कोलाइटिस पेशेंट को हम जो डाइटरी एडवाइस है वो सिंपल रखते हैं कि आपको दूध और सलाद नहीं लेना है। तो दूध इज अवॉइडेड, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक, विच इंक्लूड्स मिठाई ऑल्सो, खोया ऑल्सो, एंड सलाद नहीं लेना है, वो मना करते हैं। सेकेंड आपका सवाल था कि क्या कोलाइटिस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी होता है। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो कोलाइटिस में वर्चुअल होता है, इन द सेंस। मैं क्यों वर्चुअल कह रहा हूँ, इसलिए वर्चुअल कह रहा हूँ क्योंकि जब हम जाते हैं कभी कभी कोलाइटिस में म्यूकस आता है, लेकिन कभी कभी अर्जेंसी होता है एंड देयर इज अ नो शो। एंड इसमें क्या है, क्योंकि कोलोन के पता लार्ज बाउल के सतह में इन्फ्लेमेशन होता है तो वो सिग्नल्स देते रहता है कि उसमें कुछ आएगा, लेकिन देर इज नो स्टूल देयर टू एक्सपेल। इसीलिए पेशेंट को बार बार पॉटी में जाना पड़ता है एंड सिर्फ गैस के अलावा और थोड़ा म्यूकस के अलावा उसको निकलता नहीं है, तो इसको हम अर्जेंसी कहते हैं। एंड ये कॉन्स्टिपेशन जो टिपिकली हम समझते हैं कब्स, क्योंकि स्टूल हार्ड हो जाता है, एक्सपेल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, पत्थर जैसे मार्बल पैलेट्स रहता है, वैसा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता आईबीडी में। इट्स अ डिफरेंट कि आपको अर्जेंसी आती है स्टूल जाने की एंड व्हेन यू गो देयर इज अ नो शो कि कोई स्टूल निकलता नहीं है।
1: एक ये मैसेज है, प्लीज टेल अस अबाउट एसजीओटी टेस्ट एंड वेदर देयर इज एनी कनेक्शन विद लॉस ऑफ एपेटाइट इफ दिस टेस्ट रिपोर्ट इज हाई। दिल्ली से नाम नहीं भेजा।
2: एसजीओटी जो है ये एक लीवर एंजाइम है जिसको हम सीरम ग्लूट एएसटी कहते हैं। ये एक लीवर का एंजाइम होता है जो कि लीवर डैमेज, लीवर डिजीज में ये एलिवेटेड होता है। तो डेफिनेटली अगर किसी को लीवर डिजीज है, एक्यूट लीवर डिजीज है, उसमें एक ऑफ सिम्टम लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जॉन्डिस होता है, जनरल इनएबिलिटी, जनरल मलेस होता है, तो डेफिनेटली हो सकता है एंड इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एंड डॉक्टर के पास जाए, उनको बताए, पूरी सिम्टम्स बताएं, कंप्लीट सिम्टम बताएंगे, तभी इनका पूरा डायग्नोसिस सही तरीके से हो पाएगा।
1: डू स्ट्रेस एंड एंजाइटी आल्सो ट्रिगर आईबीडी?
2: यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस दैट यू हैव टेल। आईबीडी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन एंड टेंशन, सो स्ट्रेस डेफिनेटली, एंजाइटी डेफिनेटली इसको प्रभावित करती है। एंड ये कहा भी जाता है कि ये टाइप ए पर्सनैलिटी जो कि ड्रिवन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। एंड ज़्यादातर ये देखा गया है कि कोई भी स्ट्रेस पॉइंट आपके लाइफ में आएगा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम्स आ रहा हो, या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, या फैमिली में कोई अघटन हो गया हो, या ग्रीफ हो गया हो, तो भी ये जो बीमारी है ये बिगड़ जाती है।

0: जो जिसको हम टेक्निकली कहते हैं फ्लेयर अप, अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्लेयर अप हो जाता है, आईबीडी फ्लेयर हो जाता है, देन ऑफकोर्स यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर मेडिकेशंस वो फॉर दैट फ्लेयर अप ऑल्सो.
1: ओके डॉक्टर साहब, क्या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, आईबीडी जिनको होता है?
0: जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादातर जो इसकी दवाई होती है वो स्टीरॉइड्स होती है, और कभी कभी हमें लंबे टाइम तक स्टीरॉइड्स देनी पड़ती है. क्रोन्स डिजीज जो एक स्मॉल बाउल काउंटर पार्ट होता है, उसमें एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक स्टीरॉइड्स देनी पड़ती है. उनमें ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड वी शुड गेट आवर सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड इन टर्म्स ऑफ विटामिन डी का टेस्ट करना चाहिए, और एक होता है बोन डेंसिटोमेट्री और बीएमडी, वो भी टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का और बोन बीएमडी अगर वीक है तो दोनों का सॉल्यूशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है अगर बोन्स सपोज वीक हो गई एंड कहीं पे आप गिर गए एंड फ्रैक्चर हो गया, देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली बिकॉज आईबीडी जो है एक्टिव, इकोनॉमिकली एक्टिव ग्रुप में होता है, 25 to 45 ग्रुप में ज्यादा देखा गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस चीज को ख्याल रखें एंड टेक केयर करें.
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब. एक और मैसेज है चाणक्य चौक गाजियाबाद से, पूछते हैं कि गर्मियों में ड्राई फ्रूट या जो व्यक्ति 3 या 4 बार चाय पीता है या कॉफी पीता है, क्या उसको भी आईबीडी जैसी समस्या हो सकती है?
0: डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट यह है कि कॉफी या उससे गैस्ट्राइटिस हो सकती है, बट आईबीडी का होना कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा गया है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि कॉफी से आईबीडी हो जाएगा. सो इट्स नॉट पॉसिबल.
1: ओके एंड ही 70-year-old पर्सन फ्रॉम रांची, उपेंद्र मिश्रा. वो जानना चाहते हैं कि मुझे करीब 15-20 दिनों से सुबह नाश्ते के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, लूज नहीं होता है, नॉर्मल होता है, कृपया कारण और निदान बताएं.
0: देखिए, ये एक हमारे मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है वो 3 per week to 3 per day एक नॉर्मल रेंज है, जैसे हर चीज का एक नॉर्मल रेंज हुआ करता है. एक ये मिथ है सोसाइटी में कि अगर हम रोज फ्रेश नहीं हो रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो ये नहीं है ऐसा. इट्स नॉट दैट रोज आपको फ्रेश होना है. हर इंसान की अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को ऑल्टरनेट डे आती है, किसी को दिन में 2 बार आती है, सो दैट इज नॉट अ एबनॉर्मल थिंग एट ऑल. जैसे किसी भी बच्चे का एज ग्रुप या वेट ग्रुप होता है, एक रेंज होता है, तो इसमें भी एक रेंज है जो 3 per week to 3 per day. तो इस केस में प्रॉब्लम तब आती है जब इस रेंज से बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी है कि आप 3 या 4 बार से ज्यादा जा रहे हैं पर डे, या हफ्ते में एक ही दिन जा रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल है. लेकिन और दूसरा है कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी क्या है, एक सिंपल आकार में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर वो हार्ड आ रहा है, मार्बल्स की तरह आ रहा है, पत्थर की तरह आ रहा है, यस इट्स अ प्रॉब्लम, अगर वो पानी की तरह आ रहा है, दलदल की तरह आ रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम. तो इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, कंसिस्टेंस नॉर्मल है, सो ही शुड नॉट वरी एट हिज एज. ओनली कैवियट इज अगर वेट लॉस हो रहा है 70 साल के एज में, देन ही मस्ट गेट इन्वेस्टिगेटेड.
1: तो आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं अगर आपको लगता है कि आपका वेट भी कम हो रहा है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया. हम लेते हैं ब्रेक.

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और हमारे एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कलकत्ता से, तो हम जल्दी से उनसे बातचीत कर लें। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछ लें।
1: मुस्तफा कमल
0: जी, क्या सवाल है आपका?
1: मेरे बवासीर हुआ है या क्या हुआ है, मेरे लेटरिंग के रास्ते में परेशानी है, लेटरिंग मेरा कोना होके आ रहा है।
0: पूछना क्या चाहते जी? ये सब सुन लिया क्या?
1: हाँ, यही समस्या है मेरा, इसीलिए पूछना था इस बीमारी से मैं कैसे रिलीफ पाऊंगा और क्या क्या मुझे खाना चाहिए।
0: सुन लीजिए, डॉक्टर बता रहे।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: आपका जो ब्लड में स्टूल में ब्लड आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है?
1: ब्लड नहीं आ रहा है सर, 3 साल से यही बीमारी है, मेरा ब्लड नहीं आ रहा है।
2: क्या आ रहा है?
1: मैं से अंदर कोई फूल गया होगा शायद, लेटरिन कोना होके आ रहा है।
2: लेटरिन क्या हो रहा है?
1: कोना होके आ रहा है, बिल्कुल ही
2: कोना होके आ रहा है। अच्छा
1: हाँ।
2: ये आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आप बांग्ला में बोल लीजिए, मैं बंगाली समझता हूँ, बांग्ला बुझते भर। आपने बांग्ला में बोलने की असुविधा होती है एक बार।
1: हाँ, আমার ওই যে লেটিন কে রাস্তাটা আছে না, যেরকম ওই ফোড়ার মতন হয়ে গেছে, আর ডাক্তার বলেছে যে ওষুধের জেরিয়ায় মনে হয় ভালো হয়ে যাবেন। এখন আমি ৬-৭ ডাক্তারকে দেখাচ্ছি, আমার হয়নি এখন।
2: আপনার কোলোনোস্কোপি হয়েছে?
1: হ্যাঁ, কোলোনোস্কোপি করেছি, যে ডাক্তারটা বলেছে, শিলিগুড়ির ডাক্তার বলেছে আপনার ফিশার হয়েছে।
2: फिशर तो ये जो आपको हुआ है, इनको टट्टी के रास्ते फिशर हुआ है। फिशर होने पे आपको इसका अगर दवाई से नहीं ठीक हो रहा तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा।
1: एक बार ऑपरेशन किया था एक डॉक्टर ने, हुआ नहीं।
2: अच्छा, फिर आपको मैं ये बता सकता हूँ अपने नॉलेज से, दैट वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल PG हॉस्पिटल है कलकत्ता में। हाँ, वहाँ जाके किसी अच्छे सर्जन को दिखाइए और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।
0: तो बिल्कुल आप ऐसी कोशिश करें, जाकर वहां पे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, उन्होंने बता दिया PG हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या खाने पीने में कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की बीमारी से आप दूर रहें, और ट्रीटमेंट, ये दोनों चीजें आपसे जानना जरूरी है।
2: जी, आपने बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं। ये खाना पीना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन IBD, और हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि और बताया है कि दूध और सलाद थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। मिल्क हैज़ टू बी अवॉइडेड, प्योर मिल्क, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक, जैसे आप पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, छाना ले सकते हैं। प्योर मिल्क हैज़ टू बी अवॉइडेड। सेकेंड इज सैलड हैज़ टू बी अवॉइडेड, कि सलाद ना ले, उसके अलावा सब कुछ ले सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, रॉ फूड तो आपने कहा कि बहुत जरूरी है खाने में,
2: नहीं, जिनको IBD है उनको नहीं लेना। इन जनरल जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फॉर हेल्दी लाइफ इट इज रिक्वायर्ड, बट IBD में नहीं करना। क्योंकि एक इनका IBD का पार्ट होता है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है कि स्मॉल बाउल में छोटी

0: में स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, रुकावट बन जाती है. तो सलाद अगर आप लेंगे तो उस एरिया में जाके फंस जाते हैं एंड दे लीड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. दैट इज वाई हम इनको मना करते हैं कि आप सलाद मत ले, फाइबर ज्यादा नहीं ले. दूसरा जो है आप हेल्दी डाइट ले, यू कैन टेक गुड सीरियल्स फूड्स, ये सब आप लेते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड जो आपने बताया ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें ट्रीटमेंट हमें ज्यादातर दवाइयां चलती हैं और बहुत ही 5-10% में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, बहुत ही लिमिटेड केस में. वो मैं अभी 2 मिनट में आके बताऊंगा. नॉर्मली हम जो फ्लेयर अप जब होती हैं तो हमें यूज करनी पड़ती है स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन. और स्टेरॉइड्स आप जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोविड में बहुत लोगों ने स्टेरॉइड्स लिया, सबको पता है स्टेरॉइड्स के बारे में. बट हमें स्टेरॉइड्स लेनी है, शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स लेते हैं. यूजली हम 2 वीक्स का स्टेरॉइड्स देते हैं और फिर स्टेप डाउन थेरेपी करते हैं, धीरे धीरे करके स्टेरॉइड्स को विद इन 6 वीक्स कम कर देते हैं. और ज्यादातर ये दवाइयां जो है होती है मिसलेमिन दवाई होती है जो कि चलती है एंड ये लंबे टाइम तक 1.2 ग्राम ट्वाइस ए डे या थ्राइस ए डे करके हम यूज कर सकते हैं. इट्स ए वेरी वेरी स्टेबल मेडिसिन. बट कुछ और दवाइयां भी होती है जिनमें कि जैसे ये दवाई नहीं काम करे तो सेकेंडरी कॉज में हम इम्यूनोसप्रेसेंस एजाथायोप्रिन यूज कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन यूज कर सकते हैं. और कुछ एक नई जनरेशन की दवाइयां आ रही हैं जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल्स, जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज होती हैं
1: जी,
0: वो यूज कर सकते हैं. तो आजकल बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं एंड इट इज डेफिनेटली कंट्रोलेबल वेरी वेल. एंड कुछ ओनली टू मिनट्स लूंगा और कुछ बहुत सीवियर केस में फल्मिनेंट कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्रोन्स कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है.
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतने अहम विषय पे इतनी सारी जानकारी देने के लिए. दोस्तों हमारे साथ थे डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट. इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अगेन.
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई विल एंड बाय ओनली थिंग, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोहर स्टोर्क के अलावा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टोडेटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योर फ्रॉस्टोडेटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा, आर्थिक बिखराव के इस समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और ब्यौरा रोम में मौजूद हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आयोजित भारत व्यापार सुधार सम्मेलन में कही। श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि व्यवसायों को उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्विक विकास को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे किवला झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चिंगलपट्टो दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज, बुरी तरह बीमार या खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन देने की भी अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 5वें और लखनऊ 10वें नंबर पर है। प्लेऑफ के मद्देनजर ये मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान लगाया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी, और आकाशवाणी पर आपकी वाणी के साथ अपनी वाणी मिलाने आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राम। और दोस्तों, समय हो गया 4:05, यानी ये प्रोग्राम है अल्फा जैन का, मतलब एक ऐसा शो जिसको डिजाइन किया गया है हमारे अधिकारियों द्वारा उन लोगों के लिए जिनका जन्म 2010 के बाद हुआ है। वैसे 2010 से पहले जन्मे जनरेशन जी वाले, जिनको 1997 से 2012 का माना जाता है, या बेबी बूमर्स 1946 से 1964 वाले, जनरेशन एक्स 1965 से 1980 के बीच जन्मे वाले, या मिलेनियन या जनरेशन वाई 1981 से 1986 वाले, ये सब भी हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर गौर से सुनिए, क्योंकि आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे एआई जनरेटेड जॉब्स की। और आप बने रहिएगा हमारे साथ पूरे इस घंटे, क्योंकि जानकारियां भी होंगी और मनोरंजन भी। तो जाइएगा मत, बस चिपके रहिए एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

दोस्तों गर्मी का कहर सभी को दिख रहा है और परेशान भी कर रहा है ना। वैसे मीका के इस गीत से थोड़ी ठंडक तो जरूर पहुंची होगी आपके दिल तक, है ना। वैसे अल्फा जेन वाले बच्चे हैं ना, जो प्रैक्टिकली बहुत होते हैं, उनको चाहिए होता है तुरंत समाधान। अगर सावन अभी नहीं आया तो कैसे आ सकता है, अल्फा जेन जनरेशन इस पर सोचने लगती है। हम जेन एक्स वालों की तरह नहीं होते कि जो मैथमेटिक्स की तरह मान लिया या सपोज करके ही कुछ हो गए। अब इस जनरेशन को चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI वाला भविष्य, और उनकी इस तरह की सोच भी बिल्कुल सही है। जनरेशन अल्फा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का भविष्य बेहद उज्जवल है, और आने वाले वर्षों में AI केवल तकनीक तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई बड़ी बड़ी और ऊंचे लेवल की नौकरियां भी पैदा करेगा। और दोस्तों अगर आप भी जनरेशन अल्फा के लिए AI जॉब्स की तलाश में है तो किस तरह की जॉब आप पा सकते हैं, कैसे आप इनके लिए तैयारियां कर सकते हैं और कहां कहां आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं सब बताऊंगा। लेकिन AI का संदेश मेरे पास अभी आ गया है कि ऐसा रात के समोसे खाने का टाइम आ गया है, तो पहले मैं वो खा लेता हूं फिर आपको सब बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर, और आप आनंद लीजिए इस मधुर गीत का आकाशवाणी FM।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन। अभी आपको हमने गीत सुनाया सिटी लाइट फिल्म का, जीने की मुस्कु, क्या है वो गीत है ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो। देखिए मेरा ध्यान है ना समोसे की तरफ इतना है कि बस उसे देख देख कर मैं मुस्कुरा रहा था। बहरहाल आप इस गीत को सुनकर न जाने कितने लिसनर्स हैं, पता नहीं किसको सोच सोच के बारे में वो मुस्कुरा रहे होंगे। वैसे AI ने सही समय पे है ना टाइम मुझे बताया और कहा समोसा खा लो, और मैंने समोसा खाया, बड़ा मजा आया। वैसे मेरी बात सुनकर आपके मुँह में पानी तो आ गया हो गया है ना। कोई बात नहीं, आप लोग बाद में समोसे का आनंद ले लीजिएगा, लेकिन अभी इन बातों पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप AI जनरेटेड जॉब्स पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप क्या बनकर AI जनरेटेड नौकरियां पा सकते हैं। पहला चांस है कि आप AI एंड मशीन लर्निंग विशेषज्ञ बन सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप नई AI प्रणालियों और जटिल एल्गोरिथम को डिजाइन करना होता है। दूसरा होता है आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं। इसमें AI टूल से सटीक और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए भाषा और निर्देश को सेट करना होता है। तीसरा, आप साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी बढ़िया आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, आप बन सकते हैं, क्योंकि इसमें AI आधारित हमलों से बचाव और सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना सिखाया जाता है। चौथा, अगर आपका इंटरेस्ट हेल्थ केयर और बायोटेक की तरफ है तो आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं और आप चिकित्सा और रोबोटिक सर्जरी में AI का उपयोग करके बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है आपके पास सस्टेनेबिलिटी मैनेजर बनने का। जी हाँ, इसमें पर्यावरण सुधार और ऊर्जा प्रबंधन के लिए AI का उपयोग करके आप एक नई क्रांति ला सकते हैं। तो ये कुछ वो ऑप्शन थे जो आप चुन सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं।

अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हम इन नौकरियों को पाने के लिए कैसे तैयारियां करें, तो हम इसका भी जवाब आपको दे सकते हैं। लेकिन अभी एक इंस्ट्रक्शन हम तक पहुंचा है एआई से नहीं, बल्कि हमारे सीवीएस डिपार्टमेंट से, कि एड और प्रोमो प्ले करने का वक्त आ गया है। तो चलिए पहले कुछ कॉमर्शियल और प्रोमो प्ले करते हैं, फिर आपको वो भी बताएंगे कि आप एआई जनरेटेड जॉब्स पाने के लिए कैसे तैयारियां करें। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है।

अल्फा जैन और मैं हूं एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। दोस्तों, इस ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं जिनको चुनकर आप अपना करियर चुन सकते हैं जनरेटेड आईएआई जॉब्स में, और इन बातों के लिए हमने आपको बहुत सी जानकारियां भी दी थी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इन नौकरियों को, मतलब इन कैसे आप पा सकते हैं, या हम यूं कहें कि इन नौकरियों की तैयारियां आपको कैसे करनी है। यदि आप जनरेटेड एआई के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, जैसे पाइथन, मशीन लर्निंग और ट्रांसफार्मर्स का बुनियादी ज्ञान जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको टूल्स और तकनीक के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना है, या हम यूं कह सकते हैं इसका ज्ञान होना बेहद बेहद लाजमी है, जरूरी है। डॉकर और राग जैसे रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसको हम जरूर सीखें। आपको व्यवहारिक प्रोजेक्ट बनाने वाले एप्स होते हैं ना, उनको डेवलप करना सीखना होगा। थोड़ा कठिन काम है मगर मुश्किल नहीं है। आपकी थोड़ी सी चाहत और मेहनत आपको जरूर कामयाब बनाएगी इस फील्ड में। कोशिश करके देखिए, आपका भविष्य ऊंची उड़ान भरेगा। अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप इन नौकरियों के लिए किन किन प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम अल्फा जैन। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। और दोस्तों, अल्फा जैन में आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई से जुड़ी नौकरियों के बारे में। कंप्यूटर विज्ञान, डेटा साइंस या गणित में स्नातक होना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि यही क्वालिफिकेशन है इसकी। अगर आप स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं तो कंप्यूटर साइंस से आपको करना है डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या अप्लाइड मैथमेटिक्स में बीटेक, बीसीए और बीएससी की जरूरत होती है। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए तकनीकी रूप से मजबूत पदों के लिए एमटेक, एमसीए या एमएससी AI डेटा साइंस को प्राथमिकता दी जाती है। और प्रमुख विषय 12वीं में विज्ञान यानी PCM और गणित की मजबूत पृष्ठभूमि बहुत बहुत आवश्यक है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इस तरह की नौकरियों को ढूंढ सकते हैं। कहां पर ढूंढ सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस प्यारे से गीत के बाद। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा था अल्फा जैन, और हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में एआई से जुड़ी नौकरियां और इंटर्नशिप के लिए आप naukri.com आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जॉब्स पर, या टेक्निकल करियर के लिए आप अमेजोन जॉब्स पर एआई पर, या कई और टेक कंपनियों में जनरेटिव एआई से जुड़े करियर के विकल्प तलाश सकते हैं। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, और हम आपको बता दें कि 5:05 से आपके साथ जुड़ जाएंगी सुषमा शर्मा लेकर सिटी लाइट्स। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए। इसी के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो से आपसे थोड़ी देर के लिए विदा लेता है आपका दोस्त एहसास यानी संतोष राव। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्टडॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली NCR के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, KL राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर आ गई है सुषमा की वाणी प्रोग्राम लेकर सिटी लाइट्स आपके लिए। तो 5:05 तो हो गए और ये वक्त है कि मैं आपसे कहूं कि जुड़ जाइए मेरे इस प्रोग्राम से जो है एक घंटे का आपके लिए। एक घंटे, हाँ 55 मिनट्स तो है ही ना आपके पास, फिर क्या है, इंजॉय करिए। और बहुत अच्छे अच्छे गाने लेकर आई हूँ आज आपके लिए। गर्मी की बहुत ज्यादा तपिश हो रही है, सिर्फ दिल्ली वाले नहीं पूरा उत्तर भारत परेशान हो रहा है इस वक्त। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिटी लाइट्स प्रोग्राम में।

सीजन का सबसे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बताइए कितना गर्म रहा है सीजन का सोमवार का दिन, और आज भी कुछ कुछ ऐसा ही है। 44 डिग्री सेल्सियस आज भी रिकॉर्ड किया गया और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री। और 20 से लेकर 22 मई तक भी लू चलने की संभावना बताई जा रही है, और इस दौरान भी अधिकतम जो तापमान है वो 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब अपने आप को अपना ख्याल तो खुद ही रखना पड़ेगा। क्या करना है, पानी की थोड़ी मात्रा बढ़ा दीजिए और क्या, और सीधे अनावश्यक जाने की जरूरत नहीं है धूप में। अगर जा भी रहे हैं तो छतरी ले जाइए, गॉगल्स लगा दीजिए अपने चेहरे पर, और हाँ अगर आप फीमेल हैं तो स्टोल को बिल्कुल तो मत छोड़ के आइए, जैसा कि आज मैं भूल गई स्टोल लेना, बस अदाबाजी में निकल पड़ी टी काटी एक दोपहरी में और आ गई यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए। लेकिन हाँ, अपना ख्याल जरूर रखिए, सिर को हमेशा ढक कर रखें।

अभी पुरवैया तो चलने में थोड़ा सा समय लगेगा, अभी तो इस समय लू चल रही है, इसे पुरवैया का नाम बिल्कुल मत दीजिए और डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाइए। बच्चों को खूब लिक्विड देंगे तो बेहतर होगा जी हाँ। और अपना ख्याल रखिए, बुजुर्गों का रखिए, और अगर कोई बीमार है तो उसका जरूर ख्याल रखिए। और बच्चे और बूढ़े बिल्कुल एक समान होते हैं और आपकी जिम्मेदारी है अगर आप बड़े हैं घर में तो। 5:15 हो गए और ये वक्त है कि आकाशवाणी के 90 वर्षों का यहाँ पर जो सफर चल रहा है उसको सुनी। एपिसोड 28 ये रहा आकाशवाणी @90 पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला यानी आकाशवाणी एच 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात होगी क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन का आगाज कैसे हुआ। 15 अप्रैल 1953 को आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। इसी दिन लखनऊ से हिंदी और नागपुर से मराठी में पहले क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भाषाई बाधाओं को दूर कर स्थानीय श्रोताओं तक उनकी अपनी भाषा में सटीक सूचना पहुँचाना था। वर्ष 1954-55 के दौरान मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में रीजनल न्यूज यूनिट्स स्थापित की गईं। तो श्रोताओं, ये बात थी क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन के बारे में, और अगले अंक में हम जुड़ेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में जानकारी लेकर। तो रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: बिल्कुल, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, और FM रेनबो पर इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम सिटी लाइट्स, आपकी अपनी दोस्त सुषमा के साथ।

0: बिल्कुल दिल का सुकून है ये इंतजार मोहब्बत की तड़प, क्या बात है। थोड़ा सा इंतजार तो मैं भी करा सकती हूँ आपको, एक छोटा सा ब्रेक जो लेने जा रही हूँ, तो इंतजार कीजिए मेरा भी।
1: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाए और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं इस समय प्रोग्राम सिटी लाइट्स, जहां बात होती है ट्रैफिक की भी। देखिए हर तरफ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और आप सबसे यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों का जो पेट्रोल है उसकी कीमतें बढ़ने से थोड़ा सा बचा लीजिए। क्या होगा, अरे भाई थोड़े पैसे बच जाएंगे आपके, आपकी फ्यूचर सेविंग हो जाएगी। तो चलिए मैं ये बता देती हूँ, अगर आप अभी भी अपनी पर्सनल कार से या कहीं किसी भी उससे आ रहे हैं तो आपको ट्रैफिक मिल सकता है। ये लाल किले वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। चांदनी चौक अगर अंदर जा रहे हैं तो यहाँ तो ट्रैफिक मिलना लाजमी है, और कहाँ पर सफदरजंग सदर बाज़ार की तरफ भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है, सिद्दीपुरा की तरफ भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, पहाड़गंज की साइड जाएंगे तो वहाँ अक्सर आपको ट्रैफिक मिल जाता है। तो थोड़ा सा अवॉइड करें, जनपद मार्केट में भी घूम रहे हैं लोग, शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा जो गोल चेक करें ना उस साइड थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है। मंडी हाउस की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो लेडी इरविन कॉलेज वाला जो गोल चक्कर है ना मंडी हाउस का, वहां तो हमेशा ट्रैफिक होता है, तो कोशिश करें उस रास्ते से ना जाएं, अवॉइड करें। लेकिन

अगर जाना ही है तो थोड़ा इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा। विकास मार्ग की तरफ बढ़ें, अगर पूर्वी दिल्ली की तरफ तो यहाँ पर भी ट्रैफिक हो सकता है। प्रगति मैदान की तरफ भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है इंद्रप्रस्थ की तरफ, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ जो गोल चक्कर आता है तिलक मार्ग की तरफ, यहाँ पर लंबा लंबा ट्रैफिक आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा बचिए ट्रैफिक से, भागने की कोशिश मत करिए, रुकना तो पड़ेगा। आखिर आपका वाहन जो है आपको भगा के नहीं ले जाने वाले, हाँ लेकिन दिल जरूर भाग सकता है कुछ इस तरह से, जो ये गाना है ना मैं जो प्ले करने जा रही हूँ, सुनिए। पांच बजकर 26 मिनट हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी में, आप भी नोट कर लीजिए। सुन रहे हैं सिटी लाइट्स अपनी दोस्त सुषमा के साथ, ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो।

बिल्कुल, मन जो है ना बहुत दूर दूर तक भागने लगता है। कोई भी फेस्टिवल आए, त्योहार हो, कुछ भी हो, बस तैयारियां शुरू कर देता है। अब ट्रैफिक से ही जुड़ी और बात आपके लिए ये हो सकती है कि आप जानते हैं कि गंगा दशहरा की तैयारियां कर रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु, और इसी को देखते हुए 23 से 26 मई तक दिल्ली गाजियाबाद के जो रास्ते हैं गढ़ मुक्तेश्वर में NH9 पर ट्रैफिक का रूट डाइवर्टेड कर दिया गया है और 4 दिनों में वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से होकर भी गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, और आप जानते ही हैं कि इस रास्ते से लखनऊ और उत्तराखंड जाने वाले लाखों वाहन चलते हैं और प्रतिदिन गुजरते हैं बहुत सारे, और 25 मई को गंगा दशहरा एवं जो पर्व है ये मनाया जाएगा। और 23 मई आपको तारीख बता दूं, 23 मई सुबह 8 बजे से लेकर 26 मई रात 12 बजे तक ट्रैफिक जो रूट है वो बिल्कुल डाइवर्टेड किया जाएगा, और जरूरत पड़ने पर हो सके तो क्या होगा, जीरो ट्रैफिक व्यवस्था भी की जा सकती है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर जाएं और रास्ते देखकर, थोड़ा मुश्किल है बट हो जाएगा।

करना आपको? क्या आपका बच्चा भी सारे दिन मोबाइल पर लगा रहता है? हाँ है ऐसा, क्योंकि अक्सर चल रहा है। एक आर्टिस्ट है, अगर उसके अंदर परफॉर्मर है, कॉन्फिडेंट है, पर्सनालिटी है उसकी, तो क्या करना है आपको? गेट रेडी टू दिल्ली। यस, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संस्कार रंगटोली थिएटर इन एजुकेशन कंपनी लेकर आए हैं आपके बच्चों के लिए समर थिएटर वर्कशॉप। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और ज्यादातर स्कूल्स में छुट्टियां हैं, और ये वर्कशॉप जो होगी वो आपके बच्चों के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाएगी, बहुत सारी चीजें, कॉन्फिडेंस भी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाने वाली है, फोकस, क्रिएटिविटी एंड सोशल इंटरेक्शन को भी स्ट्रांग बनाया जाएगा। दिल्ली के 20 स्कूल्स में से होने वाली इस एक्साइटिंग वर्कशॉप में 8 से 16 साल के बच्चे ही बनेंगे इस क्रिएटिव जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और आपके आसपास का सेंटर भी हो सकता है शामिल इसके अंतर्गत। आपका बच्चा भी बन सकता है इस अमेजिंग समर एक्सपीरियंस का हिस्सा। बिल्कुल 22 मई से 21 जून तक ये चलेगा, तो देर मत कीजिए। क्या करना है आपको? हमारी एनएसडी की जो वेबसाइट है वहां जाइए, www.nsd.gov.in पर सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी।

0: बिल्कुल तुमसे ही है और आपसे ही है ये प्रोग्राम भी, और आकाशवाणी का सारा जो हमारा आरजेस का जो ग्रुप है ना, वो सब लोग कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: बिल्कुल सुनिए मन की बात ये प्रोग्राम, और ब्रेक के बाद स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आप जाते हैं दिल्ली के जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हमारे स्मारक होते हैं घूमने फिरने के लिए, वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पर डालते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है ना, होता है ना। ऐसे में दिक्कत आती है कि आप क्या करें भाई। आप ही जैसे लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएँ जो है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लेकर आ रहा है, बहुत सारी जगहों पर आपके लिए चार्जिंग पॉइंट, यानी अब इस दिक्कत का सामना आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए क्या है, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला समेत एंट्री टिकट वाले सभी 11 स्मारकों पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। अलग अलग स्मारकों में करीब 30 चार्जिंग जो पॉइंट है वो बनाए गए हैं। तो इंजॉय करिए अपना घूमना फिरना।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

बिल्कुल, आपको भी मुझसे प्यार है और मुझे भी आप लोगों से बहुत प्यार है, और ये जो प्यार है ना, इसे हमेशा बनाए रखिएगा। किसके साथ? रेनबो के साथ।

बिल्कुल, अब सिटी लाइट्स की नैया तो हमने लगाई है पार, लेकिन अब आने वाला प्रोग्राम जो आपके लिए होगा मैसेज मसाला मिक्स, वो सीमा होंगी आपके साथ, तो आप उनके साथ भी रह सकते हैं इस प्रोग्राम में। और मैं आपसे लेने वाली हूँ विदा, यानी जल्दी मिलूंगी आपसे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सिटी लाइट। टिल देन टेक केयर। बहुत गर्मी पड़ रही है, अब जो गर्मी है ना वो भी लगने लगी है मिर्ची की तरह, तीखी तीखी, जो आपको परेशान करेगी अभी और आने वाले दिनों में। तो टेक केयर, गुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फिर मिलेगी सुषमा आपसे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और

0: नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री चिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सात्रक्राम शुरू हो चुका है, मिसेज मसाला मिक्स, और यही कह रही हूँ मैं, नहीं जीना तेरे बिना, बिल्कुल नहीं जीना। और प्रोग्राम हमारा मैसेज मसाला मिक्स, मैं तो आ गई हूँ, आप भी आ गए, आ गए हैं तो आ जाइए प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए और मैसेज करना स्टार्ट करते हैं। 9868107070 आज का नंबर रहेगा, टॉपिक तुरंत इस गीत के बाद।

और आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझको, क्योंकि मैं सब कुछ समझती हूँ, सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में। और पता है, जब गर्मियाँ चल रही होती है ना, तो हमें क्या याद आता है? याद आता है अपना पुराना ज़माना, याद आता है वो नानी मामा का घर, याद आता है ना। तो चलिए आज हम एक बार फिर से याद करते हैं अपने समय को, याद करते हैं उन लम्हों को, जो शायद हमारे बच्चे वो लम्हे उनके ज़िंदगी में आ ही नहीं रहे हैं, या फिर आते हैं तो वो वाला फील नहीं लेकर आते हैं, है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं, आज का जो हमारा विषय रहेगा, गर्मियों में वो पुरानी याद जो आज तक आपको याद है। गर्मियों में वो नानी के घर जाते थे ना, बैग पैक करके जाते थे और वापस आने का नाम ही नहीं लेते थे। तो आज बात करनी है कुछ ऐसी ही, बात करनी है कुछ ऐसी ही कि कौन सी याद है, कौन सी बात है जो आपको आज भी याद है। तो चलिए आप तो चलिए शुरू कीजिए और मुझे बता दीजिए कि कौन सी बात है, कौन सी याद है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे, कौन सी वो बात है। मैं भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत पसंद आती थी। मुझे याद आता है कि वो सब जब हमारी नानी हमारे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, और जब हम जाते थे सारे मामा मौसी के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, धमाल करते थे, लेके जाते थे हम कॉपी किताबें, लेकिन पढ़ते नहीं थे। लेकिन चलिए आपको मुझे बताना है गर्मियों की वो यादें, वो बातें। 9868107070 पर इंतजार कर रही हूँ मैं, आपकी दोस्त सीमा सती।

और वो प्यार और वो प्यार ही होता था जो हमें मजबूर कर देता था वहाँ जाने पर, वहाँ से लौट कर न आने पर। वो प्यार ही होता था, है ना। गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना किसी त्यौहार से कम नहीं लगता था। सुबह आम के बगीचे में खेलना, दोपहर में नानी के हाथ का खाना खाना और शाम को दोस्तों के साथ खेलना कितना अच्छा लगता था ना। रात में छत पर सबके साथ सोते हुए नानी की कहानियाँ सुनना आज भी याद है।

बिजली चली जाती थी, फिर भी सब लोग हंसते बोलते रहते थे। अब वो दिन तो नहीं रह रहे, लेकिन नानी का प्यार, वो गांव की गर्मियाँ आज भी याद है, आज भी दिल को खुश कर देती हैं और खुश कर देती हैं। मोहम्मद सरफराज आलम, आपका ये जब भी मैसेज आता है तो सच में हमें ऐसा ही फील होता है, वो प्यार प्यार प्यार।

और ये प्यार भरा मैसेज हमारे पास जब आ जाता है आपका आपका मैसेज जो MMM में दिल से स्वागत है, आपकी प्यारी आवाज़ महफिल में नई रौनक लाती है, लबों पे मुस्कान बातों में प्यार लाई, आज फिर महफिल में सीमा जी आई, क्या बात है, और रेडियो की दुनिया महक उठी है, खुशबू बन गए दिलों के लिए ढेरों खुशियाँ संग लाई हैं। थैंक यू सो मच सरफराज, और इतने अच्छे मैसेजेस कहाँ से लिख लेते वो आप, और गुड इवनिंग दोस्त सारा बने जाके मैसेज के साथ हमारी गुड इवनिंग हो चुकी है। इसके साथ किशन विंजनी, नीलम, स्वाति और केशु भी हमारे साथ रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि वेलकम जी शो मैसेज मसाला मिक्स, हम भी शामिल हो गए हैं, हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए, पहले गीत बहुत ही शानदार, मैं तन्नू समझावा की, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं तन्नू समझावा की और तेरे बिना नहीं लगता जी, जब आपके मैसेज आते हैं ना तो फिर वो सारी जो टेंशन्स होती हैं, सारा फुल ऑफ माइंड हमारा होता है ना, वो सारा न जाने कहाँ पर यहाँ पे आके एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है बिल्कुल, और फिर सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रहती है, आपका प्यार, बहुत बहुत बहुत प्यार। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज आ गया है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगला बहन शाह, राजेंद्र जी शाह, ये हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा हमारे पास सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, SPS के पपी खुराना भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। और ये अगला मैसेज हमारे पास किसका आया है, मैम जो टॉपिक चाहे जो भी हो, सच में गर्मी का मौसम है, आपकी गोल्डन वॉइस, हाय हाय आपकी गोल्डन वॉइस सुनकर सारी थकान दूर हो जाती है, मैं राकेश ओरा बुराड़ी से, और बताएं राकेश आपका ऐसा मैसेज आता है ना, हमारी भी सारी थकान दूर हो जाती है, और जब गर्मियों की छुट्टियों में केवल ये लिख रहे हैं कि मामा जी के घर जाना नहीं होता था, और भी कुछ होता था, घर पर पढ़ के पढ़ाने के टेंशन, और वाह मस्त और मज़ा होता है, अब पॉसिबल नहीं है, राकेश्वरा बुरावी से मैसेज आ गया है। इसके अलावा हमारे पास संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का भी मैसेज आ गया है, और यहाँ पर पुराने दिन ताज़ा करने के लिए दिल से धन्यवाद, मैं अपनी बुआ के यहाँ जब मैं 8 साल का था तो बुआ के यहाँ जाकर बुआ के लड़के और मैं, और आप सोचते पड़ोस के लड़के तालाब में नहाने जाते थे, तालाब में घंटे 2 घंटे नहाते रहते थे, एक दूसरे के ऊपर मतलब गिराते थे, बैठते थे और फिर से तालाब में डुबकी लगाते थे, और आज भी बहुत याद आते हैं। ये मैसेज किया है सोनू ने बिजनौर से, तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि कितना सारा चीज़ें हैं जो पता नहीं न जाने कहाँ, हमारे पास तो है लेकिन हमारे बच्चों के पास नहीं है, ये वाला मज़ा उन्होंने नहीं लिया, हमने लिया है, हम जब उन्हें बताते हैं ना उन्हें यकीन ही नहीं आता है, उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आता है कि ऐसा भी होता था क्या, ये कैसी बातें कर रही है मम्मी पापा हमारे लेकिन ऐसा होता था, तभी तो वो दिन वो यादें आज भी हमारे दिल में हैं, जैसे ही हम वो याद करते हैं ना चेहरे पे इतनी बड़ी सी स्माइल आ जाती है ना, और फिर से एकदम से हम रिवर्ट वहीं जाते हैं सीधा नानी मामा के घर, बुआ के घर, है ना, जाते हैं ना, तो चलिए आपको ले चलते हैं एक बार फिर से एक ऐसे गीत के पास जो आपने बहुत दिनों से नहीं सुना होगा, जब बात पुरानी हो रही है तो आज गाना भी तो पुराना बजना चाहिए ना, तो चलिए मैसेज मसाला में एक साथ की अपनी सीमा के साथ

और दिल तो लग ही रहा है आपके साथ, है ना? आप हो तो दिल लगता रहेगा हमारा, और आपके साथ टाइम कैसे कट जाता है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो अभी जल्दी से ले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपके मैसेजेस और एक बहुत सुंदर सा ट्रैक आपके लिए लेकर आऊँगी। तो कहीं नहीं जाना है, सुनते रहना है आपके अपने प्रोग्राम सारे, जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
6: पता का चाय गजब का स्वाद।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: जी एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैसेज मसाला में, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त सीमा। चलिए हम बात कर रहे हैं आज का जो विषय है, हम एक बार बता देते हैं, अभी भी हमारी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि गर्मियों की पुरानी यादें आपको मेरे साथ बतानी है, जो वो याद जो आज भी आपको बहुत याद है, वो बात जो आज भी आपको बहुत याद है और जिसे आप भुला ही नहीं पाते कभी भी, और उनको कहानियों के माध्यम से अपने घर परिवार में बताते हो। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से, गुड इवनिंग शुभ संध्या सीमा, हमारी बचपन की सबसे प्यारी यादें हैं वो छत पर जाकर शाम को ड्रेनेज पाइप बंद करके उसमें पानी भरकर स्विमिंग किया करते थे। वैसे ये ना हम बहुत करते थे ये वाले काम, जब कई बार होता ना बारिश आती थी, खूब बारिश आ जाती थी और आंगन जो होता था उसमें पानी भर जाता था, अरे हम उसको ही स्विमिंग पूल बना लेते थे, कितना मज़ा आता था ना। और कितनी सारी बातें हैं ना जो पता नहीं, हमारा जो मुझे लगता है कि शायद हमारा जो बचपन था ना वो बेस्ट बचपन था, उसमें इतनी सारी बातें हैं कि, और

क्या बताऊँ मैं। अब यहाँ पे मेरठ से कैंट से दिग्दर्शन और कविता कह रहे हैं, इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी गर्मियों की छुट्टियों में। ये मामा के घर गए थे और एक दिन हमारी मामी ने हमें दोपहर 1 बजे तक खाना नहीं दिया और उसके बाद हमने छोटी मामी की जगह बड़े मामा के घर जाना शुरू कर दिया। हाँ पता है कितना होता है ना, जब हम वहाँ जाते हैं ना तो शैतानियाँ भी बहुत करते हैं, शैतानी करती हैं, तो भाई मामा मामी थोड़ी नाराज़ भी हो जाते हैं कई बार, है ना। तो ना मना लेते हैं प्यार से थोड़ा बहुत काम करके, और थोड़ा सा कहते हैं ना हगी पुची कर लो, थोड़ा सा खुश कर दिया करते थे तो वो खुश हो जाती थी। और यहाँ पर मैसेज आ गया हमारे पास हीरामणि वर्मा का, भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से। गर्मी के दिनों की छुट्टी वो नाना नानी के घर, आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हम चार भाई और 2 बहनों में कुछ ज़्यादा ही नटखट था, ये जो अपनी बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नटखट थे। ननिहाल में नाना जी के साथ पास के गाँव में हम सभी साप्ताहिक बाजार जाते थे, पैदल पगडंडियों के रास्ते, बहुत मज़ा आता था। मैं फील कर पा रही हूँ वो मज़ा, वो खुशी मैं फील कर पा रही हूँ। अगला मैसेज हमारे पास आ गया है अनिल शर्मा सरिता विहार से। ये लिख रहे हैं कि बचपन गर्मियों के दिन बहुत याद आते हैं। जब गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे ना, तब उनके चारों यहाँ बकरी थी, जिसके लिए नाना जी के साथ हरा चारा उसके लिए बाजार से साइकिल पर बैठ कर लाते थे, और बाहर गर्मी में खेलते खेलते पसीने में भीग कर जल्दी से मटके का ठंडा ठंडा पानी पिया करते थे। अब बदले ज़माने, दिल्ली में ऐसी मौज कहाँ मिलती है। बिल्कुल सही कहा, कहाँ ऐसी मौज मिलती है, कहाँ आजकल के बच्चों को मटके का ठंडा पानी अच्छा लगता है। लेकिन हमारे लिए तो वही कहते हैं ना, इतना चिल्ड कूल, और वो टाइम। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, गर्मी के दिनों में मुझे बचपन में मामा के घर जाना अच्छा लगता था और छुट्टी की कोई समस्या नहीं थी, जितना दिन रहना चाहते थे उतने दिन रहते थे। मामा के घर जाते ही सबसे बड़ी खुशी नाना नानी को होती थी, तो मामा तो बाज़ार से खाने की चीज़ें लाते थे और गाँव में नदी में नहाना तो बहुत ही अच्छा लगता था। दिन भर नदी में दोस्तों के संग नहाते मस्ती करते, और समय मेरे गांव में नदियों में पानी रहता था, लेकिन आज के समय नदी सूख गई हैं। हाँ ये बात भी है भाई कि आज के समय में नदियाँ सूख गई हैं, पानी का जो लेवल है बहुत कम हो गया है। पता है मैं भी अपने गांव गई थी ना, तो मैंने भी वहाँ देखा जहाँ पे वो रामगंगा बहती थी, इतना पानी होता था, इतना डीप वाटर होता था, डर लगता था उस टाइम पानी में, लेकिन अब पानी बहुत कम हो गया है। सच्ची चेंज तो हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, लेकिन जो प्यार है ना वो चेंज नहीं हुआ है, जो हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना वो चेंज नहीं हुई है। सत्तू भी प्रोग्राम के साथ आ गए हैं, तो मैंने कहा ना कि जो मोहब्बत है ना वो चेंज नहीं हुई है, चाहे कुछ बदले ना बदले, लेकिन प्यार लगातार हमारा वैसा ही है। तो चलिए, तो कहते ना किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार तो कर ही दो, कहीं देर ना हो जाए, और देर तो मैं होने नहीं दूंगी, 7 बजे तक मैं हूँ, तब तक इंतजार कर दो। 9868107070 पर इंतजार कर रही हूँ आपका।

मैंने जो बोला था कि कहीं ना फिर देर हो जाए, मुझे लग रहा है कि सबने इसे बहुत बहुत सीरियसली ले लिया है, है ना? तभी तो इतने सारे मैसेज आ गए कहीं ना फिर देर हो जाए, क्योंकि सबको लगा कि नहीं भाई, टाइम 7 बजने वाले हैं, उससे पहले हमें कर देना चाहिए मैसेजेस। और चलो आ गए हैं तो हमें लेना होंगे जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे ले लेते, नमस्ते, मैं राजौरी से एकता शर्मा हूँ। मुझे अपनी छुट्टियों का वो किस्सा आज भी याद है जब हम सारे कजिन्स मस्ती करने के लिए नदी के पास गए थे। वहाँ जाकर पता नहीं हमें कौन सा जोश चढ़ गया और हमने कुछ मछलियाँ पकड़ ली, फिर बड़े गर्व से उन्हें घर ले आए। सोच रहे थे आज तो हीरो वाली एंट्री होगी, लेकिन घर आते ही पूरा सीन फिल्म से सीधा फैमिली ड्रामा बन गया। तारीफ की जगह सबकी धुलाई हो गई और कहा गया कि जहाँ से पकड़ कर लाए हो वहीं छोड़ कर आओ। उस दिन समझ में आ गया कि नदी की मछलियाँ पकड़ना आसान है, लेकिन घर वालों से बचना नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने एकता, और ऐसी शैतानियाँ हम सब करते थे। मुझे याद है हम मेंढक भी पकड़ते थे। जब बारिश में मेंढक आ जाते थे उछलते कूदते, तब उन्हें भी पकड़ लेते थे। लेकिन आज तो मेंढक अगर बहुत दूर भी दिखाई दे जाए ना, तो हम ही उछल जाते हैं। तो ये सब मुझे लगता है ये शैतानियाँ तो सब ने करी है। आई एम बंटी फ्रॉम बनका बिहार, एंजॉय योर वॉइस, आई लव रेनबो। ये थैंक यू बंटी। और इसके अलावा हमारे पास

मैसेज आ गया है। कैसी हो दोस्त, मैं कपिल यादव बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। और सीमा, तुमने नानी का नाम लिया और दिल के तार झनझना आ गए। हम तो नानी के घर जाने के लिए पूरा साल इंतज़ार करते थे। उस टाइम गांव में लाइट नहीं आती थी, पर रोशनी भी खूब थी। लालटेन की रोशनी में दादी नानी की कहानी, आंगन में खाट, ऊपर तारों भरा आसमान। एसी कूलर नहीं था, पर आम के पेड़ की छाँव में जो नींद आती थी ना, वो 5 स्टार में भी नहीं आती। सुबह उठते ही बाग में भागते थे, कच्चे पके आम तोड़ना, नमक मिर्च लगाकर खाना, वाह मुंह में पानी आ गया। न बिजली का बिल, ना फ़ोन का टेंशन, ना ऑफिस की फाइल, बस मस्ती मस्ती। और अब तो सब याद बनकर रह गया है। अब लाइट 24 घंटे है, एसी है, फ्रिज है, फ्रिज में आम है, पर वो सुकून नहीं है। लाइफ ऐसी भाग रही है कि नानी के गांव तो छोड़ो, अगली गली में जाने का टाइम नहीं है। बस तुम्हारे शो पर नानी का नाम सुना तो दिल भर आया। हाय रेडियो आशिकाना वालों को बोलना कभी नानी स्पेशल शो रखना, हम सब श्रोता अपने किस्से सुनाएंगे। और कपिल और पुराने गाने बजा रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। और तुम्हारा मैसेज पढ़ के ना कपिल, बहुत मेरे भी दिल के तार झनझना गए सच में, वो सच में याद आ रहे हैं जब लाइट नहीं होती थी। याद आ रहा है किसी को जब लाइट नहीं होती थी और हम पहले छत पे सोते थे तो छत को पानी से गीला कर लेते थे फिर उसके ऊपर बिस्तर लगा लेते थे, फिर बिस्तर पे भी पानी के छिड़काव कर देते थे फिर खुद पे भी पानी का छिड़काव कर लिया करते थे और फिर सोते थे ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए। सच में एसी भी फील है उसके आगे, कूलर भी फील है उसके आगे, और नानी का नाम लेते सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना नानी दादी। और ये बिल्कुल ठीक कहा, वो कच्ची केरी नमक मिर्च लगा के खाना, हाय क्या बोलूँ मैं। इस टाइम तो यही याद आया कि ये कुमार शानू का गाना, और सच में याद करोगे, याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और याद कर रहे हैं हम आपके मैसेजेस को, याद कर रहे हैं हम आपको। आपके इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उम्मीद कर रही हूँ पढ़ लूँगी पूरे नहीं पढ़ पाई तो आप समझ जाना कि आज तो याद वाला माहौल चल रहा है भाई। तो यादों में बातें तो सबकी एक जैसी हैं, और मुझे लगता है हम सब की यादें भी एक जैसी हैं, है ना। तो चलिए सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका मैसेज मुझे। राजकुमार के संतानी अंकोला महाराष्ट्र से भी आ गए हैं हमारे पास। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ये सभी हमारे साथ हैं। कोमल चंद साहू छत्तीसगढ़ से, और इसके अलावा हमारे पास कौन है मुझे याद है, जब हम गर्मियों के दिनों में घर से दूर अपने दोस्तों के साथ आम के पेड़ के पास बैठा करते थे, हम सब मिलकर कच्चे आम तोड़ते और पतासी बनाते थे। हाय रंजीत कुमार मंडल सीकरी अररिया बिहार से। या

याद तो कर रहे हैं हम, बहुत याद कर रहे हैं, और वक्त निकलता चला जा रहा है इस याद के चक्कर में। जी हाँ, 6:48, इनफैक्ट बिल्कुल 48 मिनट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैसेज बहुत सारे हैं, इन्हें ले लेते हैं आप, नहीं तो आप याद करोगे कहाँ चली गई सीमा। मैसेज भी नहीं लिए तुमने मेरे, है ना। और इतनी सारी बातें हैं भाई आज, तो भाई सबके दिल का जो है ना गुबार निकल रहा है, सबकी यादें बाहर आ रही हैं, और कॉमन यादें हैं। पता है सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि सबकी कॉमन यादें हैं हमारी, कॉमन बातें हैं हमारी, यानी हम सब एक एज ग्रुप के हैं, इसका मतलब हमने वो समय जिया है, है ना। जम्मू कश्मीर से मैसेज आ गया है यहाँ पे जोगिंदर सिंह का, और ये भी जोगिंदर सिंह ने भी जम्मू में लिखा है, और ये लिखने कि आपका प्रोग्राम मैं 6 महीने के बाद सुन रहा हूँ। और जोगिंदर थैंक यू सो मच, लेकिन 6 महीने बाद क्यों सुन रहे हो, इसके लिए तो बड़ी लड़ाई होने वाली है मेरी, कट्टी कट्टी कट्टी पक्की वाली कट्टी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पर रवि जोशी मेरठ से आ गए हैं, और ये लिख रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में जब नानी के घर जाते थे ना, तो उनके हाथों से खाना खाया करते थे, ऐसा दुलार प्यार मैं नहीं भूल पाया हूँ अभी तक। आपकी आपकी मखमली आवाज़ भी ना भुलाने वाला एहसास है। हाय, क्या करूँ मैं। इतनी ज़्यादा तारीफ हो जाती है ना, स्पीचलेस से हो जाती हूँ मैं बड़ी। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आ रहा है, क्या बात। धमाल। अच्छा, माय बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट वर द रमज़ान टाइम विच आई स्पेंट विथ माई फैमिली। We all brother and sisters used to collaborate together to prepare food to open. I fast in evening. How those 15-16 hours have gone past, could not get to know. I never heard that sort of Ramzan since I have left my family. Yes. और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज किसका है, नूरबी का, नूरबी खान फ्रॉम लखमीपुर खेरी उत्तर प्रदेश से हैं। मैम

चाचा के घर गए हों, दादी दादा के घर गए हों, किसी फ्रेंड के घर जाते थे। पहले फ्रेंड के घर जाना भी तो अपने आप में बहुत अच्छा होता था, पता है, अपने आप में बड़ा अमेजिंग होता था, बड़ा मज़ा आता था। वहाँ जाती थी जब भेजती नहीं थी मम्मी, पता है, साथ में भाई को साथ भेजती थी, कहीं भी जाती थी तो इसको साथ में लेके जाना, साथ में वापस आना। तो एक बॉडी गार्ड हमारे पास हमेशा रहता था। तो इसके अलावा हमारे पास मैसेज आ गया है कि आपकी सेहत कैसी है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, आपकी वॉइस सुनकर ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मोहम्मद कासिम कीरतपुर से, और आपका मैसेज आते ही ना हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और इसके अलावा गुड इवनिंग हसीनापुर से अंशी भी आ गई हैं, और कह रही हैं आज के टॉपिक पर ये कहना चाहूँगी, जब मैं समर वेकेशन में अपने मामा के घर जाती हूँ तो हमारे नाना जी के साथ हम आम के बाग में, यानी सबके नाना जी के घर के आम के बाग थे क्या, मेरे नाना जी के घर के बाग आम का बाग नहीं था। ये सब आम तोड़ तोड़ के लाए, मैंने नहीं तोड़े। आम तोड़ने के लिए हमें गांव जाना पड़ता था पहाड़ों पर। भुवनेश भी आ गए हैं। भुवनेश, मुझे लगता है कि इतने सारे मैसेजेस, और मुझे लग रहा है कि सारे मैसेजेस कॉमन से हो रहे हैं। तो ये लिख रहे हैं कि I went to my cousin's house every summer, but after my 12th board results, when I went to my cousin's, it was special. We had a great party. It was very memorable for me. And now you are, your sweet voice is adding new memories. Oh wow, great, thank you. और राम राम जी, राहुल नाथूपुरा से, गर्मी की छुट्टी में नानी नाना के घर जाना, वो खेलना मस्ती करना, वो दिन आप कहाँ। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। और नानी के घर बचपन और गर्मी की, स्कूल की छुट्टी, ये सब दूसरे से जुड़ा होते हैं। बचपन हर इंसान का गोल्डन पीरियड होता है, बिल्कुल। गुलफाम खान भी हमारे यहाँ शाहदरा से, प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है गुलफाम, थैंक यू सो मच। राहुल ऑस्टिन भी आ चुके हैं, और ये लिख रहे हैं, मैनी मेमोरीज अबाउट समर, द कॉलर स्टोरीज, द 90s टीवी शोज, टाइम टेबल, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। यस, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। एंड अब अगला मैसेज भी ले लेते हैं। अरे बाप रे, बहुत सारे मैसेज बचे हुए हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से ट्रैक ले रही हूँ, साथ साथ मैसेज भी लेती रहूँगी। आप सुनते रहिए प्रोग्राम आपका अपना, मैसेज मसाला मिक्स, मैं भी आपकी अपनी सीमा, भूला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ही मधुर गीत सुनाया कार्यक्रम में। भेरूलाल वागतरिया धाकड़ ये लिख रहे हैं, कार्यक्रम में देर से जुड़े हैं लेकिन गाने बहुत मस्त हैं। इसके अलावा राजौरी से एकता शर्मा का फिर से मैसेज, और इसके अलावा हमारे पास प्रेमचंद प्रेमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।

और यहाँ पे जल्दी से मैसेज ले लेते हैं मंजू भाटिया जी का, और वो लिख रही हैं कि हम नानी और दादी के घर आते हैं और रास्ते में खाने के लिए मम्मी से ढेर सारे स्नैक्स बनवाते थे, बहुत मज़ा आता था। बिल्कुल। और इसके साथ हमारे पास उद्घोषिका जी के पास मैसेज आ गया इकबाल राय का, गुलाटी पीपली कुरुक्षेत्र से, गर्मियों की छुट्टियों में जब नानी के घर जाते थे तो हमें मामू फिल्म दिखाने लेके जाते थे।

चलिए, सबको बहुत बहुत प्यार हो गया है, मुझे लगता है प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, सबकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। गुड्डू धाकड़ का भी हमारे पास मैसेज आ गया है, इसके साथ साथ हमारे पास ये किसका मैसेज है, सभी को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, क्या करूँ मेरी आवाज़ है ही इतनी अच्छी। विशाल का भी मैसेज आ गया है हमारे पास, इसके अलावा राकेश ठाकुर भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और हमारे पास अजय कुमार मोहाली पंजाब से हमारे साथ हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा सरफराज जी भी हमारे साथ हैं जो कि हाट दशना बाजार अररिया बिहार से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और मैसेज मसाला मिक्स से अभी लेती हूँ इजाज़त, बहुत जल्द मुलाकात करूँगी आपके साथ, लेकिन हाँ 8 बजे म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम में आपके साथ बने रहेंगे, सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम। और आप सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज।

0: नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ऑर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Welcome back, dear listeners. This is AIRFM Rainbow 102.6 MHz. It's the frequency, and you are listening to our Tuesday evening session of requested music. We call it "You Asked for It." We have received a request for a classic from the 1960s, End of the World by Skeeter Davis, a very emotional ballad going out for Katie in New Delhi.

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Quick reminder, dear listeners, this is FM Rainbow 102.6 MHz and you're listening to your program of your requested music called You Asked For It. The next program of Western Music will be at 10:05 p.m. tonight. Next requested track, a Bruce Springsteen number, Dancing in the Dark, going out for Mr. Sumit in Noida.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: Welcome back. 11 more minutes to go. This is AIRS FM Rainbow 102.6 megahertz. And the program you're tuned into right now is the program of Requested Musical. You asked for it. Well, dear listeners, American DJ and record producer Christopher Comstock, professionally known as Marshmello, celebrating his 34th birthday today. Would like to wish Marshmello a very, very happy birthday. Keep making the world dance one beat at a time.

प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका अपना म्यूजिक मस्ती और शुरुआत हो चुकी है डांस नंबर्स की और बस अब शुरू हो जाइए बिल्कुल और नॉन स्टॉप डांस म्यूजिक और मैं आपकी अपनी सीमा आपके अपने आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। बस क्या करना है, रहना है बस चिपक के फेविकॉल से।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम आपके अपने आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: केले का छिलका सड़क पे ना भाई ना, चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
4: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
5: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
4: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
5: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर आपके साथ है आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि गर्मियों में थोड़ी सी लग रही होगी आपको कि प्रॉब्लम है, लेकिन गर्मी के साथ साथ आपके साथ है ना आकाशवाणी एफएम रेनबो, 24 घंटे आपके साथ रहता है दिल से दिल तक। दोस्तों, जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती, मिलना हमारी तकदीर में था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती जी हाँ इत्तफाक नहीं होती।

जी हाँ, मैं एक दिन आऊंगा। आपने याद किया, दिल से दिल तक। और आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर तमन। आपका तह दिल से स्वागत है। वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ, यही जिंदगी है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, यूं ही आशियाना नहीं बन जाता। और जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, हार जाते हैं,

जिंदगी से सोचते हैं कि इतनी मुश्किलें, इतनी कठिनाइयां क्यों हैं जिंदगी में, इतनी तकलीफें क्यों हैं। लेकिन तकलीफें ना हो तो वो जो मंजिल पाने की खुशी होती है ना, वो उसका एहसास ही नहीं होगा। कहते हैं ना कि समझ ना आया है जिंदगी तेरा ये फलसफा, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बस यही जिंदगी का फलसफा है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और सब्र का फल मीठा होता है। तो करें तो क्या करें, सब्र करें या जिंदगी के साथ आगे चल दें।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। और आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन।

तेरी यादों का दिया दिल में जलाए बैठे हैं, रात की तन्हाइयों को भी सजाए बैठे हैं। लोग कहते हैं भुला दो उसे वक्त के साथ, हम तो हर सांस में उसका नाम बसाए बैठे हैं। ये खूबसूरत पंक्तियां हमें लिखकर भेजी हैं मोहम्मद सरफराज आलम, जौकीहट दर्शना बाजार अरिया बिहार से। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। अगर आपने ये खुद लिखकर भेजी हैं तो बहुत ही उम्दा है। वो कहते हैं ना कि जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले की उड़ान होती है।

एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनी पार ली। लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं, आपकी याद आती रही। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं था। तन्हाई में या रब जलता हूँ, रात भर मोम की तरह पिघलता हूँ। रात भर तेरा दिया ये दर्द सलामत रहे, सदा यूं मैं शोलों पे तेरी याद के चलता हूँ। रात भर चलता हूँ रात भर। प्रेमचंद प्रेमी जैत्रा धामपुर बिजनौर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोग्राम हम भी सुन रहे हैं और हमारे सभी गांववासी सुन रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और इन खूबसूरत पंक्तियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप सुन रहे हैं, आपकी याद आती रही आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। और हमारे साथ कई हमारे और दोस्त, हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं। किशु बंजानी, किशन, नीलम स्वाति रेलवे कॉलोनी नंद विहार से यहाँ से जुड़े हुए हैं। सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथ रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम सुंदरम गुप्ता ओखला संगम विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथ कई और लिसनर्स जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। कहते हैं कि जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, और जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। क्योंकि जो सफलता है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करती, बस आपको झट से उसे पकड़ना होता है। और ये जो गम है, सन्नाटे हैं, ये जिंदगी में हर

के हिस्से में बने हैं। ये कहते हैं ना कि ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सभी को बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ा धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, तू क्यों ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। अब ये मत पूछना कि ये अल्फाज कहां से लाता हूं, कुछ चुराता हूं दर्द दूसरों के, कुछ अपने सुनाता हूं, तभी तो आपकी महफिल में चला आता हूं। आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर चल रहा है आपकी याद आती रही।

और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश भल्ला, एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से। तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और मास्टर राधेश्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं कासगंज से, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और जोया हमारे साथ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमारे दोस्त कहाँ कहाँ से जुड़ जाते हैं, दिल से दिल तक। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और कस्बा गनौर यूपी से आदिल कमार, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। वीरू बख्शी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कहती हैं कि अभी अभी ट्यून किया है और अभी आपकी आवाज़ सुनी तो प्रोग्राम चल रहा था, आपकी याद आती रही। क्या बात है, बहुत खूब, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और एक बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हमें भेजी हैं, ये भेजी हैं मोहम्मद सरफराज आलम ने। लिखते हैं कि चांद की चांदनी में रात गुजर जाती है, तेरी हर बात दिल को बहुत याद आती है, दूर रहकर भी तेरा असर कम ना हुआ, तेरी आवाज़ मेरी रूह को सहलाती है, जब भी तन्हाई में दिल अश्क बहाता है, तेरी तस्वीर निगाहों में उतर जाती है, वक्त बदला मगर चाहत नहीं बदली, वक्त बदला मगर चाहत नहीं बदल दी है, तेरी याद मेरी सांसों में महक जाती है। क्या बात है, बहुत खूब मोहम्मद सरफराज आलम साहब, आपने बहुत खूब पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। और कहते हैं ना कि कभी कभी एक पुरानी याद पूरे दिल को रोशन कर देती है, भले ही वो शख्स दूर हो आज, पर उसकी याद पास रहने का एहसास देती है।

0: जी हाँ, हमारे दिल को भी क्या हो गया, क्योंकि वक्त जो है ना, वो वक्त का पहिया जो है ना, रुकता नहीं है, वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। और 9:53 हो चुके हैं और कुछ ही देर में हम इस प्रोग्राम से आपसे विदा लेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी 11:05 पर रंगे महफिल में। और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश गुप्ता लोनी गाजियाबाद से, और हमारे साथ और भी कई, हमारे दानिश खतौली से जुड़े हुए हैं, और भी कई दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ फारूक अली खान, फैजिया फराज, फरीन फरहान, फरिया ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और तुम्बा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने जगह नहीं बताई है कि कहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का, थोड़े से अंतराल का, छोटे से अंतराल का, तो आप कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो, दिल से दिल तक। और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से हमें उन्होंने एक तस्वीर भेजी है। लिखते हैं कि आज कोर्ट परिसर में एक अंकल जी से पूछा, ये आवाज़ किधर से आ रही है? तो उन्होंने एक छोटा सा FM अपने काउंटर पर निकाल कर रख दिया जिस पर FM रेनबो चल रहा था, और जानकारी और मनोरंजन से भरपूर है रेनबो, वो कहने लगे। बड़ा ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इस प्यारी सी तस्वीर जो आपने सर की भेजी है। और ये तस्वीर मेरे ख्याल से 80-90 साल के होंगे जो जिन्होंने ये मतलब इतने शिद्दत से आकाशवाणी के ये FM रेनबो सुनते हैं सच में। और ये आपका प्यार ही है जो हम

में लगता है कि हमारा जो मकसद है प्रोग्राम करने का वो पूरा हो रहा है, आपके मैसेजेस के जरिए पता लगता है। और जैसे कि आपको पता ही है, आकाशवाणी ने राष्ट्र की सेवा में 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था, और जिसे बाद में आकाशवाणी के रूप में अपनी ऐतिहासिक यात्रा जारी रखी। और इस साल 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं आकाशवाणी में, तो आपको ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और अब दोस्तों, मेरा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते इतना ही कहूँगा कि कभी कभी एक पुरानी याद पूरे दिल को रोशन कर देती है, भले ही वो शख्स दूर हो आज, पर उसकी याद पास रहने का एहसास देती है। अब अपने दोस्त वीर धवन को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा 11:05 पर रंगे महफिल में। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने के लिए फैसला लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की नई पहलों की तलाश करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट UG की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकोई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाकर कथित नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2021-31 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रैबिस से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय RG कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार में विशेष पैकेज की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ में रातों में अधिक गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR में भीषण लू चलने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट और 1 दिवसीय फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटक

संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

महफिल सजी थी, लोग भी थे, बातें भी थी, फिर भी कहीं अधूरापन सा था। शायद कुछ रिश्ते आवाज से नहीं बस एहसास से पूरे होते हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम रंगे महफिल लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन सिंह। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।

रंगे महफिल में हर कोई मुस्कुराता मिला, कोई अपनी जीत पर कोई हालात छुपाता मिला। अजीब दौर है दोस्तों, चेहरे के पीछे हर शख्स थोड़ा कुछ ना कुछ छुपाता मिला।

जिंदगी एक एहसास है, जिंदगी तो तेरे पास है, जो मिल गया वही अपना है, जो नहीं मिला वो सपना है। मत गिनो जिंदगी के पल को, जियो जिंदगी के हर पल को, हर पल जी भर के जियो, मुस्कुरा कर हंस कर जियो। और आज जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने लेकर आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी महफिल रंगे महफिल में, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6। जी हाँ, 102.6 पर, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। मैंने वक्त को पूछा मेरा कसूर क्या था, वो हंसा और बोला तूने हर किसी को अपना समझा। और दोस्तों, कुछ हमारे दोस्त इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम पाठक भागलपुर से, और कहते हैं कि ये ज़मीन चांद से बेहतर नज़र आती है हमें। क्या बात है, जब हम रंगे महफिल में आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ज़मीन चांद से बेहतर नज़र आती है। वाह, बहुत खूब, आपका तहे दिल से स्वागत है। और फारूक अली खान, फैज़िया फरहाज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और श्याम सुंदर गोवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, मालूम भी है कि ये मुमकिन नहीं, मगर एक आस सी रहती है कि वो याद करेगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जगजीत सिंह की आवाज़ में एक खूबसूरत गज़ल आपके नाम सभी सुनने वालों को।

बीत गई सारी और हम बस रूठते गए रूठते गए। वो कहते हैं ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल आपके लिए चला रहा हूँ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: जी हाँ, वक्त तो लगता है, कुछ भी अच्छे काम करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में भी वक्त लगता है। और आपके साथ हम बैठते हैं तो समय का पता नहीं चलता। समय हुआ है 11:36 और समय है एक छोटे से अंतराल का, तो कहीं मत जाइएगा। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर चल रहा है रंगे महफिल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

कहते हैं कि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। है ना दोस्तों, आपका क्या मानना है? आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। कहते हैं एहसास करा देती है रूह जिनकी बातें नहीं होती। एहसास करा देती है रूह जिनकी बातें नहीं होती। इश्क तो वो भी करते हैं जिनसे मुलाकातें नहीं होती।

और प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि नींद की झपकी लग गई थी बीच में, और लेकिन जब रंगे महफिल शुरू हुआ तो नींद खुल गई। क्या बात है। बारिशें अश्क दर्द का सैलाब ले आई, जिसमें छिपे थे जख्म वो किताब ले आई, और मुमकिन नहीं है दोस्त तुमसे हमारा मिलना, मेरे प्यार की हवा अब ये जवाब ले आई। क्या बात है। प्रेमचंद प्रेमी जी ने धामपुर से लिख कर भेजी हैं हमें पंक्तियाँ। आगे लिखते हैं कि राह में हम जिनकी पल पल फूल सा बिखर गए, दिल की हर एक किताब को वो अनसुना सा कर गए, मुस्कुराहटों पर हमारी उनको देना था सिला, शायद मेरी आंखों को यूं आंसू से भर गए। क्या बात है प्रेमचंद प्रेमी जी, दिल से लिखते हो और दिल तक पहुंचते हैं। ये पंक्तियां जो है ना, सच में दिल तक पहुंचती हैं। थैंक यू सो मच। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। और हमारे साथ जोया जुड़ी हुई हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। लिखते हैं कि इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं प्रोग्राम सुन रही हूँ रंगे महफिल। 22 अप्रैल 2026 से हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, और आज इन प्रोग्राम्स और आपके शो सुने बगैर हमारा दिन नहीं कटता। सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है, बहुत अच्छा लगता है, और पता ही नहीं लगता कि समय कैसे बीत गया। रेडियो की यही तो खासियत है। और इस बार 90 साल सेलिब्रेट कर रहा है 8 जून को हम आकाशवाणी के पूरे 90 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्नौर से आदिल कमार तस्दीक अली मुजफ्फर अली, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। और फिलहाल आपके लिए खूबसूरत गीत लेकर आया हूँ फिल्म पापा कहते हैं से, कुमार सानू की आवाज़ में, दिल तक जाता है, दिल से सुनिएगा। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक।

जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई, इंसान बहुत हैं। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है, वो अनजान बहुत है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, और सनी कपूर जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक

जी हाँ, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। और कहते हैं ना कि मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। अब अपने दोस्त वीर दमन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा। अब अपने दोस्त वीर दमन को दीजिए इजाजत, तब तक बाय, शुभ रात्रि।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले की आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय के में दायर याचिका को में से एक में से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और तीन एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की भी कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। उधर आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में जीत हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंदी पर रात 9 बजे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी।

0: इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जो राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा से कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा और डॉ. निशिकांत दुबे को समिति में शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से विनोद श्रीधर तावरे, सुजीत कुमार और उज्जवल देव राव निकम समिति के सदस्य हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जो राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 66 श्रेणियों की नई सूची अधिसूचित की है। इसके साथ ही ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की चेतावनी है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं। यहां आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार जुराव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।

भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष के आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 25 रन बनाए। आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:55 और लीजिए आप आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन,
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक

0: 1-1-7-8-0-0 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1-9-2-2 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मिडनाइट मेलोडीज के अंतर्गत आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलेगी। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 4:05 और लीजिए आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम सारेगामा। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.com

0: cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बहुत

सारेगामा ये कार्यक्रम अभी श्रोता सुन रहे थे, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 5 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, बनी रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा की आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रांड गेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। ये योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 5:55। लीजिए अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रजा का नमस्कार और साथ ही हार्दिक अभिनंदन।

0: अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।